सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। मंगल कामना के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही।

0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भगवान आपके हृदय की पुकार को सुनते हैं, उनके सिवाय पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। आज तक जिसने आपको संभाला है वही आगे भी संभालेगा, इसलिए निश्चिंत रहो और पूर्ण समर्पित हो जाओ प्रभु के चरणों में।

निरंतर यह अनुभव करते रहना चाहिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर अनवरत अपार रूप से बरस रही है।

आज के वंदना कार्यक्रम में आपने जो आवाजें सुनी वो थी किशोरी अमोनकर, डीवी पलुस्कर, कविता कृष्णमूर्ति, यशुदास और साथियों की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देशगान।

0: इस देशगान के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज का विषय है विक्रम साराभाई के विचार और व्यक्तित्व। आलेख और वाचन है डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा का।
1: अम्बालाल साराभाई व्यक्ति नहीं विचार थे, यह देश के प्रति उनका समर्पण भाव ही था कि विदेशी सुख सुविधाओं के मोहजाल में न फंसते हुए उन्होंने अपनी धरती पर एक नए दृष्टिकोण के साथ शिक्षा के नव आयाम स्थापित किए। 12 अगस्त 1919 ईस्वी को गुजरात के अहमदाबाद में जैन परिवार में जन्मे साराभाई ने 12वीं तक की शिक्षा स्वदेश में प्राप्त करने के बाद 1937 में कैम्ब्रिज इंग्लैंड से प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोज उपाधि प्राप्त की। साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे और अपनी इस सेवा को इन्होंने राष्ट्र सेवा का बेहतर विकल्प माना। चित्त की एकाग्रता, जिसे हम ध्यान भी कह सकते हैं, साराभाई का मूल मंत्र था। हकीकत में लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए बिना हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुख नहीं हो सकते। आखिर गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष जब कौरव एवं पांडव शिष्यों का प्रतिभा प्रदर्शन चल रहा था तो अर्जुन को केवल उस पक्षी की आंख ही दिख रही थी जहां लक्ष्य भेदन करना था, जबकि और शिष्यों को पेड़ पर बैठे पक्षी से संबंधित तमाम दृश्य दिखाई दे रहे थे। अंततः अर्जुन विजयी हुआ। साराभाई इस एकाग्रता के पक्षधर थे। उन्होंने एक बात भी कही थी, जो शोर शराबे

0: के मध्य भी संगीत सुन सकते हैं, वे महान चीजें हासिल कर सकते हैं। सारा भाई राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर मजबूती दिलाना चाहते थे, जिसके लिए वे स्वयं तो प्रयासरत रहे भी और उन्होंने लोगों को भी इस ओर प्रेरित किया। डॉक्टर साराभाई का उद्देश्य जीवन को स्वप्न बनाना और उस स्वप्न को पूर्ण करना था। उनके अनुसार जीवन में असंभव शब्द कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने इस बात के प्रति लोगों को प्रेरित किया कि सतत संघर्ष, निरंतर उत्साह और सामुदायिक भावना से बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति सहज ही संभव है। डॉक्टर साराभाई ने स्वयं और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 86 शोध परक लेख लिखे थे, जो कार्य अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव के बिना संभव ही नहीं था। डॉक्टर होमी जे भाभा की 1966 ईस्वी में मृत्यु के बाद साराभाई ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला सरकार के अनुरोध से। सही अर्थों में इन्होंने भारत में संचार, मौसम विभाग और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खोज की दिशा में सार्थक कार्य करते हुए राष्ट्र को जो सेवाएं दी, वह स्वयं में अद्भुत हैं। वैज्ञानिक होने के उपरांत भी साराभाई व्यापक व्यक्तित्व के धनी थे। इतिहास, पुरातत्व, संगीत, फोटोग्राफी और ललित कलाओं के प्रति उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा, जिसका मूल कारण यह भी रहा कि संपन्न औद्योगिक घराने एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित होने के कारण तत्कालीन अनेक महान विभूतियां जैसे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियतों का आगमन इनके घर पर होता रहता था और इनकी परिचर्चाओं का व्यापक प्रभाव युवा साराभाई पर पड़ा। भावी पीढ़ी राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता कैसे सुनिश्चित करे, यह विचार साराभाई की शिक्षा जगत में उल्लेखनीय सेवाओं से पल्लवित दृष्टिगोचर होता है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना जो इन्होंने की, इस बात का ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें अहमदाबाद का प्राकृतिक योजना एवं तंत्र ज्ञान विश्वविद्यालय, नेहरू विकास संस्था NED, साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर आदि का नाम प्रमुखता से है। सहजता और धैर्य साराभाई के व्यक्तित्व की प्रमुख पहचान थे। उन्होंने न केवल इस वैशिष्ट को स्वचरित्र में अंगीकार किया, बल्कि लोगों को भी वे इस ओर प्रेरित करते रहे। इस संदर्भ में उनके द्वारा स्थापित महात्मा गांधी विज्ञान अन्वेषण शाला अहमदाबाद का एक वाकया प्रसिद्ध है। वर्ष 1948 में इस प्रयोगशाला में भौतिक विज्ञान के कुछ विद्यार्थी अपना प्रयोग कर रहे थे। उसी दौरान अवांछित विद्युत प्रवाह के चलते एक बहुमूल्य यंत्र जलकर नष्ट हो गया, जिसके चलते आगामी कई प्रयोग स्थगित करने पड़े उन विद्यार्थियों को। कुछ ही देर में वहां साराभाई का आगमन होना था। सभी लोग डरे हुए थे। उस दौरान जब विक्रम साराभाई वहां आए और उन्होंने उस वाक्य को समझा और बोले, विद्यार्थी अक्सर गलतियों से ही तो सीखते हैं। वे बड़ी सहजता से बोले, अगली बार प्रयोग आरंभ करने से पहले अच्छे से जांच कर लेना। वास्तव में एक श्रेष्ठ गुरु के रूप में साराभाई ने उन्हें एक अच्छी नसीहत ही तो दी थी।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विक्रम साराभाई के विचार और व्यक्तित्व के बारे में। आलेख और वाचन था डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा का। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है महेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह का, संगीत है सतीश भाटिया का।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर

फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना, अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर थे महेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह के, संगीता सतीश भाटिया का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा मूली की खेती। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गाने सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे। सुबह 7:31 पर कार्यक्रम होगा ब्रज माधुरी, जिसमें आज आप सुनेंगे ब्रज की माटी तोहे प्रणाम श्रृंखला, और इसमें जानिएगा नंद भवन मंदिर नंदगांव के बारे में। आलेख और प्रस्तुति सहयोग होगा रश्मि शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता होंगे ओपी सिंह। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप तक पहुंचेगा सुबह 8:30 पर। 9 बजे हिंदी वार्ता के अंतर्गत मुद्दे की बात में विषय है मिशन शक्ति कार्यक्रम उद्देश्य एवं लाभ। वार्ताकार होंगी प्रियंका श्रीवास्तव, एंटी रोमियो स्क्वाड मथुरा, इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। कार्यक्रम आबो

हवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर विषय होगा वन्य जीव संरक्षण में जनमानस की भूमिका। आलेख और वचन होगा वी के सालवान का। ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण सुबह 9:30 पर। पूर्वान 11:00 फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसे प्रस्तुत करेंगी रश्मि शर्मा। मध्याह्न 12:00 कार्यक्रम होगा गीत बात और SMS। 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं श्री बाबू कौशिक। दोपहर 1:15 पर महिलाओं का अपना कार्यक्रम होगा वनिता लोक, जिसमें चर्चा के विषय होंगे हरियाली अमावस्या और दूसरा विषय होगा सुरक्षित मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल। साथ ही सुनिएगा कहानी गुमनाम खत, कहानीकार होंगी नीलम सिंह। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय अपराह्न 2:30 पर। शाम 5:30 पर कार्यक्रम होगा युववाणी, जिसमें आज की बात में विषय होंगे विक्रम साराभाई जयंती और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। साथ ही विज्ञान वार्ता सुनिएगा इंटरनेट का प्रयोग युवाओं के लिए उपयोगी, वार्ताकार होंगी बबली। ब्रज साहित्य कार्यक्रम शाम 6:15 पर सुनिएगा ब्रज काव्य सुधा, कवि होंगे दाऊदयाल शर्मा मामा हाथरसी। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन शाम 6:30 पर। शाम 6:50 पर हेलो ब्रज ग्रामीण फोन इन कार्यक्रम सुनवाया जाएगा, जिसमें विषय होगा उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य एवं उचित देखभाल। वार्ताकार और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर उदय भान सिंह। शाम सुहानी कार्यक्रम शाम 7:31 पर। सुहाने तराने कार्यक्रम राति 9:15 पर और रात 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण किया जाएगा।

0: ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, विषय है मूली की खेती। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, मूली की खेती सालों भर की जाती है, लेकिन गर्म मौसम में इसकी जड़ें खाने के योग्य आकार की होने से पहले ही कड़ी और तीखी हो जाती हैं। लेकिन मूली की व्यावसायिक खेती शरद काल में ही की जाती है। इसकी वृद्धि और विकास के लिए छोटे और कम तापमान वाले दिन ज्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। मूली की दो तरह की किस्में होती हैं, यूरोपियन किस्म और एशियाई किस्म यानी कि देसी किस्में। यूरोपियन जो किस्म होती हैं, इनका आकार छोटा होता है, खाने में स्वादिष्ट होती हैं, चिकनी भी होती हैं और कम चरपरी होती हैं। इसकी जो खेती है विशेष रूप से अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक की जाती है, या ये कहें कि अक्टूबर से और फरवरी तक इसकी बुवाई भी हम कर सकते हैं और इससे 30 दिन में मूली खाने के योग्य मिल जाती है। जिसमें किस्में हैं व्हाइट आइसकिल, रैपिड रेड, व्हाइट टिप्ड और पूसा हिमानी। एशियाई जो किस्म हैं मध्यम से लंबे आकार की होती हैं, चिकनी होती हैं, ठोस होती हैं और चरपरी होती हैं, जिसमें पूसा रश्मि एक किस्म है जिसको कि सितंबर से नवंबर तक बोया जाता है। जापानी सफ़ेद को 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक बो सकते हैं। पूसा देसी किस्म को अभी के समय में यानी कि अगस्त से अक्टूबर

0: के महीने में बोया जाता है, और इनमें जो चरपरापन है आइसोथायोसाइनेट की वजह से आता है। जहाँ तक बीज का सवाल है तो एक हेक्टेयर में 8 से 10 किलोग्राम बीज लगता है। बीज को 2 ग्राम थीरम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करके बोया जाता है। बोने के तरीके इसके दो तरह से हैं, एक तो इनको कतारों में बो सकते हैं, दूसरा मेड़ों पर। अगर इसको हम कतारों में बो रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखते हैं, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, और बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर गिराया जाता है। अगर हमने मेड़ बना ली हैं और मेड़ जो है 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए, और ये करीब 25 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई होनी चाहिए, और इन्हीं मेड़ों पर 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम बीज को बोते हैं। लेकिन बीज को बोने से पहले खेत की तैयारी करना जरूरी है। 150 से 200 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है, और खेत की अंतिम जुताई के समय 30 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिला देना चाहिए। शेष जो नत्रजन की 30 किलोग्राम मात्रा रह जाती है, इसको बुवाई के करीब 25 से 30 दिन बाद पौधों के चारों ओर बिखेर करके दें, लेकिन नत्रजन पत्तियों पर नहीं गिरना चाहिए, इस बात का ध्यान भी रखना होगा। 3-4 पत्तियां निकलने पर या 6-7 सेंटीमीटर की ऊंचाई की होने पर इसमें सिंचाई की जाती है। सिंचाई आवश्यकता के अनुसार समय समय पर करनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, विषय था मूली की खेती। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और श्याम की आवाजों में। फिल्म का नाम है आन। गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने और धुन बनाई है नौशाद ने।

राम गांगुली के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे शैलेश और शमशाद बेगम को। फिल्म का नाम था आग। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आर पार फिल्म से। आवाजें हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

सुजाता फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज़ में। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी एसडी बर्मन ने। इस गाने के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने पारित किया अधिकरण सुधार विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा। विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा अंतिम निर्णय। और ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। इससे पहले विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने

0: ने एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है इस विधेयक पर विचार किया जाए।
1: विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
1: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस बीच प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के सभी मदरसे भी भाग लेंगे।
3: इस अभियान से उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे वो भी जुड़ेंगे। हमने मदरसा के तमाम छात्रों से भी अपील की है, अपने प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया है, डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया है। उत्तर प्रदेश के हर मदरसे इस अभियान से जुड़े, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस अभियान को हम ले जाएं और हर व्यक्ति देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हो। इस अभियान का जो मकसद है उसको हम धरातल पर ले जाएंगे।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया।
4: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की नियुक्ति के लिए कल से साक्षात्कार शुरू हो गया। इस पद के लिए करीब 5,200 आवेदन आए थे, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद 18 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण के लिए चुना गया है।
5: राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए राम मंदिर परिसर स्थित पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर में 9 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। बाकी बचे 9 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 3 सदस्यीय चयन समिति इंटरव्यू के बाद चयनित व्यक्ति की जानकारी ट्रस्ट को सौंपेगी। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल इस एक्सपो का अनौपचारिक शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 684 करोड़ रुपए की लागत वाली 201 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच से खलीलाबाद तक बन रही रेलवे लाइन संत कबीर नगर के विकास का आधार बनेगी।
6: तो ये सड़कें बन रही हैं, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खलीलाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी। और हम लोगों ने तय किया है लैंड बैंक जैसे ही यहाँ का तैयार होगा तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सनोली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से माधोपुर बंधे तक 2 लेन मार्ग

0: लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मार्ग की कनेक्टिविटी से अब वाराणसी, लखनऊ, नेपाल, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर आदि स्थानों पर जाने वालों को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी।
1: अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग चार लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं।
0: सावन माह की शिवरात्रि के पावन अवसर पर कल प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। बागपत के ऐतिहासिक श्री परशुरामेश्वर महादेव मंदिर, वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम और हापुड़ के श्री गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर सहित प्रदेश के कई प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दर्शन पूजन कर जलाभिषेक किया।
2: जनपद हापुड़ में सावन मास की महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से ही भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे वातावरण सुमय बना रहा। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव, कल्याणपुर के कल्याणेश्वर महादेव, प्राचीन शिव मंदिर सबली, सरावा के झारखंडी महादेव के अलावा जनपद के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र, आग, धतूरा, चंदन आदि से भगवान आशुतोष का अभिषेक किया। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल से जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने पारित किया अधिकरण सुधार विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू, 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा अंतिम निर्णय। और ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

0: भैयाओं, यह कार्यक्रम में आज आपको सुनवाए रहे हैं ब्रज की माटी तुहे प्रणाम श्रृंखला में नंद भवन मंदिर नंदगांव के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आलेख और प्रस्तुति सहयोग है रश्मि शर्मा को, प्रस्तुत करता है ओपी सिंह।
1: जय श्री कृष्णा। तो श्रोताओ, आज के ब्रज की माटी तोहे प्रणाम कार्यक्रम में हम आपको लिए चल रहे हैं नंद भवन नंदगांव।

0: भगवान श्री कृष्ण और इनकी बाल लीला प्रत्येक श्रद्धालु को आनंदित करे हैं और भगवान के प्रति यही आनंद भक्तन को बिन के निवास ब्रज धाम तक ले आए हैं और ब्रज धाम में विशेष रूप से यह स्थान जानो जाए है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वास करो हो। मथुरा से लेकर नंदगांव बरसाना तक कन्हैया के बाल्यकाल की लीला इन स्थानों से जुड़ी भई है।
1: ये कहते हैं कि जग जाकी गोद में, जो पूरा संसार जिसकी गोद में विराजता है वो यशोदा की गोद में, यानी कि जो भगवान कृष्ण है, जो ब्रह्मांड नायक है, जो युग पुरुष है और जो इस सृष्टि के रचयिता है, तो पूरा जो संसार जो चल रहा है वो उनकी गोद में बैठा हुआ है। वो उन्होंने ही उसकी उत्पत्ति की है, वो उनके संतान है। लेकिन वो कहाँ बैठे? वो यशोदा जी की गोद में बैठे हैं। जग जाकी गोद में सो यशोदा की।
0: नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज को निवास स्थान नंद भवन हो और मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदगांव नंदीश्वर पहाड़ी के समीप स्थित है। नंद भवन एक पर्वत शिखर पर बनो भयो है, जाके चहुं ओर हरियाली है। पृष्ठभूमि में लुढ़कते भय पहाड़ या स्थान को विशिष्ट बनामे है। ब्रज में नंद भवन के दर्शन करनो भगवान कृष्ण के बचपन को फिर से देखवे जैसो है। नंद भवन की भव्यता दिव्य है। मंदिर परिसर बहुत बड़ो है और कछु सीढ़ी को चढ़ने के बाद प्रवेश द्वार तक पहुँचो जा सके है। नंद भवन अपने स्वरूप में समृद्ध है। या महल में पिता नंद बाबा, माता यशोदा, माता रोहिणी, श्री कृष्ण, बलदेव, श्री राधा और बिन के सखान के विशेष रूप से दर्शन कराए गए हैं।
1: ये मंदिर करीब 875 साल से पूजा हो रही है और इसको जो बना हुआ है ये इस रूप में जो दिख रहे हैं इसको 350 साल हुए और अभी इसका करीब 25-30 साल पहले इसका फिर रिकंस्ट्रक्शन हुआ, पुनर्निर्माण हुआ।
0: मंदिर में रसोई गृह, भोजन कक्ष, भंडार कक्ष बने हुए हैं जिनमें ठाकुर जी की प्रसादी तैयार हुई है। नंद महाराज के यह भवन को निर्माण लाल बलुआ पत्थर ते भयो है। 19वीं सदी में

0: था सफेद संगमरमर पत्थर से भयो है। 19वीं सदी को यह भव्य मंदिर तीर्थ यात्रियों के काजे मुख्य आकर्षण को केंद्र है।
1: ये वास्तुशैली क्योंकि ये राजस्थान के नजदीक है और जो पत्थरों का निर्माण है वो राजस्थान शैली का है और जो पत्थर उपयोग में लिए गए वो भी राजस्थान शैली के, जो संगमरमर है वो भी आपका किशनगढ़ और राजस्थान के वहाँ से लिया गया। तो ये जो मंदिर का जो निर्माण
2: है
1: ये जयपुर वाले राजाओं के द्वारा इसका जो निर्माण किया गया है वो जो है राजस्थान शैली में।
0: मंदिर की छत सुंदर चित्रण ते भरी भई है जिनपे आध्यात्मिक रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलान को दर्शायो गयो है। भित्ति चित्र और पेंटिंग इतनी मनमोहक है कि बिन दर्शन को देख के भगवान श्री कृष्ण की लीला जीवंत है उठे हैं। मंदिर के विषय में जानकारी देते भए आप हैं मंदिर के सेवायत श्री हरि बाबू गोस्वामी जी।
1: नंदगांव धाम नंदीश्वर पर्वत पर स्थित नंद महल जिसमें भगवान अपने पूरे परिवार के साथ नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण बलराम और संत सखा और राधा रानी जी के संग विराजमान। जब भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के राक्षसों की वजह से गोकुल चले गए, रात में ही जो है बसदेव जी उनको लेकर गोकुल गए। गोकुल में जो कंस के राक्षस थे वो उन्हें बार बार जाके परेशान करते थे, पूतना अगासो सत्तासो बगासो ये सभी राक्षस वहाँ जाते थे और भगवान को मारने के उद्देश्य से वहाँ पहुँचते थे और उनका वध होता था, भगवान उनका वध करते थे। लेकिन नंद बाबा बहुत चिंतित थे कि छोटा बच्चा है मेरा और ये कंस के राक्षस यहाँ आके परेशान करते हैं। तो दुर्गाचार्य जी भी वहाँ पर आए तो उन्होंने नंद बाबा ने पूछा कि मैं क्या करूँ कि कंस के जो राक्षस हैं दुर्गा भाव से मेरे बच्चे को मारने के लिए यहाँ आते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत है वहाँ का आशीर्वाद है भगवान शिव का, कोई भी बुरी आत्मा किसी बुरी उद्देश्य या किसी भी चीज़ से आएगी तो वो सिरा बन जाएगी। तो आप नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत पर जाके वहाँ पर आप रहो। तो नंद बाबा अपने सभी परकर के साथ सभी द्वार वालों के साथ उनके पूरे अपने गायों के साथ में और कृष्ण बलराम को साथ लेके पूरे परिवार के साथ पूरे वालों के साथ नंद बाबा में आके और नंदीश्वर पर्वत पर नंद महल बनाया जहाँ पे नंद बाबा रहने लगे। इसलिए जो वर्तमान मंदिर है इसका इतिहास करीब 875 साल पुराना है। जब यहाँ पे आनंदगढ़ बाबा जो है जिनको सेवा का सेवायत का अधिकार मिला वो यहाँ पे आए और उन्होंने कृष्ण बलराम की निधि स्वरूप को उन्होंने स्थापित करके और यहाँ पे सेवा की शुरू। इसके पूर्वज जो है आज वर्तमान में उन्हीं के वंशज यहाँ पे सेवा करते हैं।
0: प्रातःकाल से रात्रि तक अर्थात मंगला से शयन आरती तक ठाकुर जी के विशेष भोग विशेष आरती के दर्शनों हो में है। बिन दर्शनन के विषय में और भोग परंपरा के विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं मंदिर के सेवायत श्री उमेश गोस्वामी जी।
3: हमारे यहाँ मंगला सवेरे ठाकुर जी मंगल भोग में ठाकुर जी को लड्डू का प्रसाद आता है, उसके बाद जो है श्रृंगार के ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, श्रृंगार में माखन मिश्री का भोग लगता है और फिर राजभोग, राजभोग में ठाकुर जी को खीर फुलका कढ़ी दाल इत्यादि चीज़ का भोग लगता है, फिर शाम को उत्थापन का भोग होता है उसमें भी लड्डू भोग लगते हैं और शाम को संध्या आरती में मछली वगैरह लड्डू वगैरह को शयन है, शयन में ठाकुर जी को पूरी सब्जी हलवा वगैरह इत्यादि किया जाता है। ये यहाँ का भोग रहा है, सुबह मंगला आरती 5 बजे का और श्रृंगार आरती 7 बजे का, राजभोग है 1:30 बजे या 2 बजे होता है इससे, और शाम को उत्थापन में आरती नहीं होती, संध्या आरती होती है, संध्या आरती 7:45 बजे होती है और रात को 9 बजे शयन।
4: ठाकुर जी के भोग के विषय में आपने बताया, आप विशेष रूप से ठाकुर जी के भोग की हम बात करें तो ऐसा क्या कौन सा विशेष पदार्थ है, कौन सी ऐसी सामग्री है जो विशेष रूप से ठाकुर जी को पसंद है या आप

0: सभी उनको निवेदित करते
1: हैं। माखन मिश्री भावे
0: जी,
1: या माखन मिश्री को
0: जी
1: ठाकुर जी को, यहाँ ठाकुर जी गौशाला है, वहाँ से दूध आता है, वो चलाया जाता है, उससे माखन निकलता है
0: जी। समाज गायन की परंपरा के विषय में भी जानना चाहूंगी, यहाँ समाज गायन कब कब होता है, क्या विशेष पर्वों पर ही होता है या प्रतिदिन यहाँ पर ये होता है?
1: वैसे समाज गायन तो फुटकर के तो होते ही है, और दो परंपराएं हमारी, एक तो बसंत पंचमी जो होली का ढाड़ा लग जाता है, और वो 40 दिन का उत्सव होता है बसंत पंचमी से धुले की तरह, और सावन में श्रावण मास से और नंदोत्सव का 40 दिन का ये उत्सव होता है, इसमें समाज गायन
0: जी।
1: समाज गायन में जन्माष्टमी पे जो है ठाकुर जी की बधाइयां होती हैं। रक्षाबंधन से आठ दिन, यहाँ खुरगंती से रक्षाबंधन मनाई जाती है जन्माष्टमी, तिथियों से मतलब नहीं है
0: जी,
1: यहाँ रक्षाबंधन के 8 दिन बाद जन्माष्टमी मनाई जाएगी, देश में कभी मने उससे कोई लेना देना नहीं।
0: आज प्राय मंदिरों में जो भोग परंपरा है, आज भी वहाँ पर प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाता है, चूल्हे इत्यादि पर भोजन बनाए जाते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से ठाकुर जी की जो भोजन की भोग की सामग्री है?
1: यहाँ चूल्हे पे ही बनती है ठाकुर जी की सामग्री जी, हम यह ऊपर रसोई है
0: जी,
1: बहुत बड़ा चूल्हा है, ये चूल्हे हैं, उसमें खीर बनती है, सब उसी में
0: जी, प्राचीन पद्धति से।
1: और जब बनाते हैं रसोईया, हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे यहाँ लेडीज रसोई में नहीं जाती
0: जी,
1: हमारे यहाँ गोसाई पर करी जो हमारा समाज है, गोस्वामी पर हमारा ब्लड है, वही रसोई में जाएगा, वही रसोई बनाएगा।
2: जन्माष्टमी यहाँ को प्रमुख पर्व है, किंतु यहाँ के अतिरिक्त होली के अवसर पे भी यहाँ विशेष आयोजन देखने को मिले हैं। जहाँ प्रकार से बरसाने की होली हुए है, वही प्रकार से बरसाना की होली के दूसरे दिन नंदगांव में भी होली आयोजित करी जाए है, जामे बरसाना ते हुरिहारे यहाँ होली खेलवे आमे है। या प्रकार से ये परंपरा वर्षन ते यहाँ चली आ रही है, जाके संदर्भ में जानकारी दे रही हैं मंदिर के सेवायत श्री हरि बाबू गोस्वामी जी।
3: यहाँ पे मुख्य जो है नंदगांव बरसाने की होली प्रसिद्ध है, जो की रंग की होली होती है दिन में और शाम को रंगमार होली होती है, पहले नंदगांव वाले बरसाने जाते हैं, जो जिस भाव से वहाँ सत्य राधा जी अपनी सखियों के साथ में भगवान के संग होली खेलते हैं, और शाम को फिर लठामार होली है, फिर बरसाने वाले नंदगांव आते हैं, नंदगांव में होली होती है, वो बरसाने होती है होली, उनका जो है वो भी भाव में भगवान लेने के लिए वो नंदगांव
4: जिस होली का आनंद ले रहे हैं वह भगवान राधा कृष्ण के द्वारा खेली गई होली है, 5.5-4 वर्षों के बाद भी वही आनंद और वही रस आज हम सभी को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। कृपया करके एक दूसरे का आप ध्यान रखें, जो छतों पर है वो धक्का मुक्की ना करें, जो रास्ते में गुलाल लिए दौड़ रहे हैं वो गुलाल का प्रयोग ना करें।
5: अरे

ठाकुर जी ने नंदगांव में

0: रह के विविध लीला करी हैं, जिनको दर्शन आज भी विशिष्ट तिथिन पे विशेष लीलान के माध्यम से करायो जाए है।
1: यहाँ की जो मुख्य लीला है वो है गाय चराने की लीला, जो दीपावली से आठवें दिन गर्गाचार्य ऋषि जी ने उनका मुहूर्त निकाला। आज भगवान जो है 7 साल के हो गए और ये गाय चराने के लिए आज मुहूर्त, तो उस दिन गौचारण की लीला होती है और भगवान गाय चराने के लिए सखों के संग कदम के रूप में जाके गाय चराते हैं। ये आपकी मुख्य लीला।
2: रात काल उठिए जसोदा मैया।

0: तो भैया आपको ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं, ठाकुर जी के और ठाकुर जी के भैया के। देखिए ठाकुर जी को लोग माखन खिला रहे हैं, ग्वाल वाल। तो ये ठाकुर जी की झूठन माखन है ये। जय हो,
1: जय हो।

0: बाकी की जन्म का जो धनुत्सव है वो भी चंद्रगांव में मनाया जाता है।
1: प्राचीन काल में मंदिर तक आयवे के काजे विशेष रूप से भक्तन को सीढ़ी चढ़ के यहाँ आनो पड़तो, किंतु अब मार्ग सुगम है गयो है। अब यदि आप अपने निजी साधन से यहाँ आनो चाह रहे हैं तो आपकी कार मंदिर के समीप ही यहाँ आ सके हैं, और पार्किंग के बाद आप कुछ ही दूरी पर स्थित नंद भवन के दर्शन यहाँ आए के कर सके हैं।
0: गाड़ियाँ भी मंदिर के नजदीक तक पहुँच जाती हैं, तो सड़क वगैरह बनाई गई मंदिर के लिए और कुछ रास्तों का निर्माण किया गया है, और भक्तों के बैठने के लिए बेंच वगैरह लगा के अच्छी तरह से उनका वो किया गया, जिससे भक्त लोग आए दर्शनार्थी सब आराम से बैठे दर्शन करें।
1: देश के कोने कोने में दीपावली मनावे की परंपरा लगभग एक सी है। तीनों लोकन से न्यारी मथुरा नगरी में हूँ। मंदिरन में दीपावली को त्योहार विविध प्रकार से मनायो जाए है। दीपावली पे कहूँ ठाकुर जी चौसर खेले हैं, कहीं सकड़ी और कहीं निकरा के भोग लगे हैं, और कहीं 56 भोग 3600 व्यंजन।

अर्पित करे जाए हैं। किंतु नंदगांव में नंद जी के आंगन में निराली दिवाली है, क्योंकि यहाँ पे नंद बाबा मंदिर के शिखर पे अनूठो दीपक जलाए जाए है। या में 5 किलो गाय के घी से यह दीपक को प्रज्वलित करो जाए है। या में बिनोला आदि डार के विशेष रूप से या को तैयार करो जाए है। या 200 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पे प्रज्वलित करो जाए है। बहुत पहले मंदिर के शिखर पे इतना विशाल दीपक प्रज्वलित करो जाए हो कि जाके लोग को भरतपुर में देख के वहाँ के राजघराने में दीपावली मनाई जाएगी। या परंपरा को आज नंदगांव में निर्वहन करो जाए है। या प्रकार से नंदगांव को नंद भवन अति विशिष्ट है, दर्शनीय है।

अभय आपने सुनो, ब्रज माधुरी के अंतर्गत ब्रज की माटी तो है प्रणाम। जब मैं आपने जानू नंद भवन मंदिर नंदगांव के बारे में, आलेख प्रस्तुति सहयोग तो रश्मि शर्मा को और प्रस्तुत करता थे ओपी सिंह। और भैया अब आपको सुनाऊं मैं अलका राजेश को गायो यह लोकगीत।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में

0: स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देशभर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
3: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयाग

0: प्रयागराज में युवाओं विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
1: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ

0: किया जाएगा जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने करकटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
4: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी

0: से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं, झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ते की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And in Commonwealth Fencing Championship, Karan Singh, Sharjin Shantimol and Tanishka Khatri clinch gold medals in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 is to be tabled for consideration and passing. More from our correspondent.
3: The Kerala Alteration of Name Bill seeks to change the name of State of Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The resolution stated that while the state is known as Keralam in Malayalam, its name is recorded as Kerala in the first schedule of the Constitution. Meanwhile, the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 aims to amend the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1954. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. Dilnashi Arzu, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ramnath Kovind titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ramnath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles, and achievements.

0: Bharat Vow on Independence Day. Center approves 1 billion 10 and 20 rupee polymer bank notes for field trials, headlines The Hindu. A headline in the Indian Express writes, amid pushback from opposition, government ready to refer FCRA bill to JPC. The Economic Times states, Fitch retains India growth outlook at stable. Robust growth and solid external finance fundamentals will balance fiscal and energy risks. Keeps credit rating at BBB. In a major move to deepen US-India bilateral space collaboration, NASA invites ISRO to moon base project, reports the Hindustan Times. The Times of India writes about a study stating with global rise in exposure to dangerous humid heat, India is emerging as the most affected country. Another headline in the same paper writes, no more plastic sachets for pan masala. Under the headline, women are second to none in India's skill-building vision. An op-ed in Hindustan Times writes about the fact that women comprise over 56% of certified candidates under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, demonstrating that aspiration for technical mastery is universal. And finally, the Pioneer carries a story under the headline, Delhi unveils four tourism circuits, presenting the national capital as an integrated tourism experience and develop it as a destination city for a transit hub. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan flags off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic, West Bengal today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Ye. आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है। किसान भाइयों, इस बुधवार दिनांक 12/8/26 यानी आज शाम 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य एवं उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, पूर्व प्राचार्य एवं डीन राजकीय कृषि महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। किसान भाइयों, नए बागों की स्थापना, फलदार एवं सब्जी वाले पौधों में समसामयिक कृषि कार्य, जल निकासी एवं पौध संरक्षण उपायों के बारे में जानकारी देने हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, पूर्व प्राचार्य एवं डीन राजकीय कृषि महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0556-253-0135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय होगा आज बुधवार शाम 6:50 से 7:20 तक। सूचना समाप्त हुई।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: समीर के लिखे इस गाने की धुन बनाई थी नदीम शवर ने, आवाजें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की, फिल्म का नाम था दिल का रिश्ता।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप

0: अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सैनिक फिल्म से, आवाजें हैं साधना सरगम और कुमार सानू की। गीत समीर का और संगीत नदीम श्रवण का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी वार्ता के अंतर्गत मुद्दे की बात। विषय है मिशन शक्ति कार्यक्रम, उद्देश्य एवं लाभ। वार्ताकार हैं प्रियंका श्रीवास्तव, एंटी रोमियो स्क्वाड मथुरा। इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
5: श्रोताओं नमस्कार। मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम एक ऐसे संदर्भ में बात करेंगे जो हमारे ही बीच से, समाज के एक ऐसे अंग से जुड़ा हुआ है जिसको हम आधी आबादी बोलें, जीवन की आधी शक्ति बोलें या आधा संसार बोले, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके माध्यम से हम नारी शक्ति को रूपायित करते हैं, रेखांकित करते हैं और जीवन में उनके महत्व को स्थापित करते हैं। क्योंकि समाज में और जीवन में अगर हम देखें तो नारी शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वो जीवन को भी संभव बनाती हैं, वो समाज को भी संभव बनाती हैं, वो प्रकृति को भी संभव बनाती हैं। तो ऐसी नारी शक्ति, ऐसी आधी आबादी जो हमारे जीवन में कंधे से कंधा मिला करके चल रही है, उसके संदर्भ में एक विशेष कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है जिसको हम मिशन शक्ति बोलते हैं। और वो नारी शक्ति के स्वावलंबन से जुड़ा हुआ है। समाज में बहुत सारे ऐसे संदर्भ आते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां उनको ज़रूरत पड़ती है कि पुरुष भी उसके साथ खड़ा हो, कंधे से कंधा मिला करके उसकी बात को समझे और रेखांकित करे। इन सारे संदर्भों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ प्रियंका श्रीवास्तव जी हैं। मथुरा ज़िले में वो एंटी रोमियो इंचार्ज के तौर पर कार्य कर रही हैं और इन सारी संदर्भों में उनके क्या विचार हैं और हमारे लिए वो विचार किस तरह उपयोगी हो सकते हैं, इस पर आज जानेंगे। मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
6: नमस्कार महोदय, धन्यवाद आपका जो आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया है।
5: तो ये जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, इसके पीछे के जो उद्देश्य है वो क्या है?
6: देखिए, मिशन शक्ति जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 2020 में ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसको शुरू किया गया था
5: जी।
6: जिसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेके ये सर्वोच्च प्राथमिक

0: में से है मुख्यमंत्री जी की, कि इसलिए हमने ये योजना जो है चला रखी है। और इसमें सभी विभागों का समन्वय करके, जैसे कि महिला अगर पीड़ित है तो उसको काउंसलिंग, उसके बाद में आपको चिकित्सीय सुविधाएं भी मिलती हैं अगर, और जी जी
1: महिलाओं से जुड़े हुए जो भी संदर्भ हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे उनके वर्क स्टेशन पे आ रहे हो, वो उन सबको मिलाकर के इसको बनाया गया है। ये आप कहना चाह रहे हैं?
0: जी, जी जी
1: तो अब जैसे हम देखते हैं कि वैसे तो वो समाज का ही हिस्सा है, समाज में अपने परिवार और निजी जनों के साथ ही रहती है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर भी महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, बहुत ऐसी यातनाएं और प्रताड़नाओं में वो रह रही हैं जिनको कई बार सुनकर के भी अच्छा तो नहीं लगता उसमें। और जब इस तरह के केस आपके साथ आते हैं तो वो पारिवारिक भी हैं और उनके परिवार के लोग भी हैं, बाद में कई बार समाधान हो जाता है तो हम बहुत कानूनी तौर पे आगे भी नहीं बढ़ सकते, तो शुरुआत में आप कैसे आगे बढ़ती हैं कि कोई केस आपके पास आया, उस समय भावनात्मक रूप से वो कुछ अलग लग रहा है लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि कुछ अलग है, तो कैसे तह तक जाती है, कैसे देखती हैं उन चीज़ों को आप?
0: देखिए, पारिवारिक मामले हमारे पास जो आते हैं उनमें मोस्टली आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, बहुत सी महिलाएं अपने मतलब जो हित के लिए कदम नहीं उठा पाती हैं।
1: हाँ।
0: आपने देखा है कि बहुत सी इसमें ये होता है कि हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, कुछ बच्चों की भाई एक प्रॉब्लम आ जाती
1: हाँ,
0: है,
1: बिल्कुल।
0: एकदम से नहीं सोचते कि भाई इसको केस कराना है या नहीं, तो हम जो है पहले काउंसलिंग करते हैं, पति पत्नी की काउंसलिंग करते हैं, जिससे कि हम परिवार को कोशिश करते हैं कि बिखरे नहीं परिवार, है ना। और जब परिवार बिखरता है तो इसमें देखिए महिला भी सफर करती है, पूरा ही परिवार सफर,
1: पूरा
0: बच्चे,
1: परिवार ही सफर
0: और
1: करता है।
0: मोस्टली तो बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं इस
1: और
0: वजह
1: उनका
0: से
1: उसमें
0: जी,
1: कोई दोष भी नहीं होता।
0: उनका कोई दोष नहीं होता है। तो जहां तक है कोशिश यही होती है, जो पारिवारिक मामले हैं उनमें हम काउंसलिंग ही करवाते
1: किस तरह की चीजें निकल के आती हैं, कई बार हम चीजें देखते हैं कि भावनात्मक रूप से चीज़ें शुरुआत होती हैं, वहाँ बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते, चाहे लड़ाई झगड़े के हों या वो हों, चीज़ें बहुत छोटे उससे होती हैं और कई बार वो बड़ा रूप ले लेती हैं। तो क्या लगता है कि उसमें गलती किसी की भी हो लेकिन सफ़र जैसा आपने कहा कि परिवार पूरा कर रहा है और
0: जी
1: उसमें बच्चे
0: बिल्कुल
1: मेन होते हैं उसमें,
0: बिल्कुल
1: तो उस वो जो भावनात्मक मुद्दा एक बड़ा वो बन गया, उसको फिर सफल उसको करने के उसको करने के तरीके भावनात्मक ही रखते हैं या कुछ कई बार आपको बल प्रयोग की तरफ भी जाना पड़ता है?
0: नहीं, बल प्रयोग के तरफ नहीं जाते हैं। मोस्टली यही रहता है कि पारिवारिक विवाद है अगर, तो उसको पारिवारिक तरीके से ही
1: भावनात्मक रूप
0: जी
1: से
0: बिल्कुल,
1: इसमें
0: कि मानसिक रूप से उनको भी काउंसलिंग कराते हैं। हमारे यहाँ परिवार परामर्श केंद्र भी हैं जिनमें ये जो पारिवारिक मामले हैं उनकी ही काउंसलिंग कराई जाती है, जो पति पत्नी हैं या पारिवारिक विवाद हैं जो भी मान लो अदर्स किसी से हैं परिवार में, तो काउंसलिंग करा के उसका सोल्यूशन निकालते हैं। और अगर काउंसलिंग के पश्चात भी अगर हमें लग रहा है कि नहीं ये महिला का इसमें कहीं हित सफर कर रहा है, नहीं मतलब अगर बात बन रही है, तो फिर हम FIR की तरफ जाते हैं।
1: तब कानूनी उसके लिए तब
0: जी,
1: जाते हैं,
0: पारिवारिक मामलों में पहले मतलब एकदम से ही
1: काउंसलिंग
0: जी
1: पहले
0: जी
1: कराते हैं।
0: काउंसलिंग पहले कराते हैं जी।
1: कई बार आप देखते हैं कि उसमें जैसे पत्नी का इतना रोल नहीं होता लेकिन परिवार के दूसरे लोगों का रोल होता है, कभी मायके की तरफ से इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है, कभी ससुराल की तरफ से ज़्यादा हो रहा है,
0: हाँ जी कभी
1: तो
0: होता है
1: वो जो मेन लोग हैं वो दोषी नहीं है लेकिन दूसरी तरफ से चीज़ें आती हैं,
0: जी
1: तो
0: जी काउंसलिंग इसीलिए कराते हैं कि वो थोड़ा सा
1: देखें उसको।
0: सभी को, फिर उसमें अगर हमें जरूरत होती है तो हम अन्य सदस्यों को भी बुलाते हैं, उनको उनकी भी काउंसलिंग कराते
1: परिवार के
0: हैं
1: अन्य
0: जी
1: लोगों
0: जी
1: को भी
0: जी
1: बैठाते हैं
0: जी
1: उसमें। तो शहर की मैं बात करूंगा, जैसे बहुत सारे विद्यालय होते हैं, बहुत सारे
0: जी
1: महाविद्यालय होते हैं, बच्चियां स्कूल जाती हैं घर से बाहर, तो निश्चित तौर पे एक रास्ता वो तय करती हैं, कई
0: जी
1: बार रास्ते में परेशानी आती है, कई बार स्कूलों के आसपास ऐसा माहौल होता है, तो
0: जी जी
1: वहाँ किस तरह की सिचुएशन होती है, कुछ समाज के ऐसे तत्व जो परेशानी पैदा कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपका दखल रहता है, देखते हैं उसमें?
0: जी बिल्कुल। इसके लिए जो है पहले तो हमारे थानों पे ही एक महिला हेल्प डेस्क बनी हुई है, ठीक है, जो महिलाओं की समस्याओं से ही संबंधित है। दूसरा सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड। हमारे जनपद में जो जितने भी थाने हैं सभी थानों में एक एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है,
1: जी,
0: और हमारा जनपद का स्क्वाड है। तो हम लोग क्या है कि मतलब जो आपके भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, मार्केट हैं, पार्क

0: है, इनमें जो है मूविंग पे रहते हैं, भ्रमणशील रह के ये जो अवांछनीय तत्व हैं, जो शोधे हैं, ये इन पे नज़र रखते हैं। तो ये मेन हमारा काम
1: जी
0: है
1: जी
0: जी,
1: तो
0: इन पे
1: जब
0: सतर्क
1: आप
0: दृष्टि बनाए रखना।
1: घूम
0: हाँ
1: हाँ
0: जी बिल्कुल,
1: जब आप घूमते
0: कोई
1: हैं तो
0: जी
1: आपको उसमें ट्रेनिंग में ये बता दिया जाता हो तो कि किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, खड़ा हुआ कैसा व्यक्ति है, कि इसमें ये संभावित कल्पित हो सकता है या इससे समाज को खतरा हो सकता है, तो देख के पता लग जाता है। कई बार सूचनाएं तो आती हैं आपके
0: जी जी
1: पास कि
0: सूचनाएं
1: वहाँ
0: आती हैं,
1: जी
0: सूचनाएं गोपनीय रूप से भी आती हैं, उनका समाधान हम गोपनीय तरीके से ही करते हैं, क्योंकि जो छात्राएं हैं उनका फिर एक देखिए, उनको ऐसा
1: हाँ,
0: नहीं होना चाहिए
1: क्योंकि
0: कि हम
1: समाज में
0: जी फ्रंट में नहीं
1: हम
0: लाते
1: आप
0: हैं।
1: उजागर भी नहीं कर
0: जी जी
1: सकते उनकी
0: वो क्योंकि
1: आइडेंटिटी
0: भाई
1: को।
0: स्टूडेंट

0: कैसा व्यक्ति है कि इसमें ये संभावित कल्पित हो सकता है या इससे समाज को खतरा हो सकता है, तो देख के पता लग जाता है। कई बार सूचनाएं तो आती हैं आपके
1: जी जी
0: पास कि
1: सूचनाएं
0: वहाँ।
1: आती
0: जी
1: हैं, सूचनाएं गोपनीय रूप से भी आती हैं, उनका समाधान हम गोपनीय तरीके से ही करते हैं, क्योंकि जो छात्राएं हैं उनका फिर एक देखिए उनको ऐसा
0: हाँ,
1: नहीं होना चाहिए
0: क्योंकि
1: कि
0: समाज
1: हम
0: में
1: जी फ्रंट में नहीं
0: हम
1: लाते
0: आप
1: हैं।
0: उजागर भी नहीं कर
1: जी जी
0: सकते उनकी
1: ओ क्योंकि
0: आइडेंटिटी
1: भाई
0: को।
1: स्टूडेंट हैं तो पर्सनल लाइफ पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए जो है उनका पर्सनली ही सोल्यूशन करते हैं, फ़ोन भी आते हैं। और रही बात ये जो मूविंग में रहते हैं लड़के, देखिए महिलाओं के पास एक नेचुरली एक सिक्स्थ सेंस होता है
0: सेंस
1: ना,
0: होता है
1: तो
0: जी।
1: उससे वो पता चल ही जाता है कि हाँ ये जो है लड़का आपको
0: हाँ।
1: देख रहा है, लगातार कुछ अब्यूज़ यूज कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, गाना गा रहा है, इस टाइप से मतलब हरकतें अगर करते दिखते हैं तो फिर
0: पता लग
1: उनको
0: जाता
1: हाँ
0: है कि
1: जी
0: इससे मुझे संभावित
1: हाँ
0: खतरा
1: जी
0: हो
1: हाँ जी
0: सकता है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन कई बार बच्चियां बताती नहीं है, परिवार में भी नहीं बताती है। आपके पास तो खबर बाद में आती होगी, लेकिन वही है कि चलो छोड़ो, आज नहीं तो कल ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बच्चियों को, जो यूथ आपको सुन रहा है, बच्चियाँ सुन रही हैं, समाज के और लोग सुन रहे हैं, परिवार के लोग क्या कहना चाहेंगी कि इस तरह की अगर वो है तो उसको बहुत ज़्यादा उसमें न लेंगे, थोड़ा सा आपके संपर्क में आए तो चीज़ें कुछ जल्दी बेहतर हो सकती
1: जी
0: हैं।
1: जी बिल्कुल। एक्चुअली में जब बाहर निकल रही है लड़की तो
0: हाँ
1: इन सब चीज़ों का देखिए हो सकता है कि इस तरीके के हम जो अवांछनीय तत्व हैं उनसे हो सकता है कि सामना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जिनसे हम प्रताड़ित होते हैं ना वो हमारे घर के ही होते हैं कभी
0: जी
1: कभी,
0: जी
1: इसलिए भी महिलाएं नहीं कह पाती हैं, बच्चियां हैं नहीं कह पाती हैं चीज़ों को। और मोस्टली देखिए मैंने देखा है कि जो आंकड़े हैं अब तक उसमें देखा है कि मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं रिलेटिव्स हैं इनसे ज़्यादा
0: ज्यादा
1: पीड़ित
0: खतरा
1: रहती
0: हो,
1: हैं,
0: ज्यादा
1: क्योंकि
0: खतरा
1: उनका तो मतलब बता भी नहीं सकती हैं
0: बता भी
1: महिलाएं,
0: नहीं
1: है
0: सकती
1: ना,
0: ये किस
1: हिचकती
0: तरह की
1: हैं।
0: चुनौती आ रही
1: जी
0: है।
1: जी तो इसलिए ही हेल्पलाइंस बनाई गई हैं कि आप बिना किसी को शो ऑफ किए, देखिए आप 1090 है, 1090 पे कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करा सकती हैं, उसमें जो है गोपनीय तरीके से ही जो है पीड़िता की जो भी
0: पहचान
1: समस्या है
0: छुपा
1: जी
0: करके ही
1: पहचान
0: सब।
1: छुपा कर, तो उसको थाने पे नहीं बुलाते हैं और उसकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है। जी
0: इस तरह के आप स्कूलों में जा करके, महाविद्यालयों में जा करके कुछ कैंप वगैरह भी लगाते
1: जी जी
0: हैं,
1: हमारा
0: क्योंकि मिशन
1: बराबर
0: शक्ति
1: लगता
0: में
1: है
0: शायद ये स्वावलंबन भी एक वो है कि जाके उनको ट्रेनिंग दी जाए कि आप उनको, हालांकि ये कहना कि भाई आप अबला हो ये तो थोड़ा सा अच्छा आज के समाज में नहीं लगता। अब हम आज़ादी के 75 साल भी मना चुके और 100 साल की तरफ जा रहे हैं, तो अब
1: नहीं
0: लड़कियां काफ़ी सक्षम हो गई हैं, और
1: जी
0: जेन जी तो हमारा बहुत सक्षम है,
1: बिल्कुल
0: टेक्नोलॉजी में बहुत सक्षम है। तो इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह, कुछ कैंप वगैरह करते रहते हैं आप
1: हाँ
0: लोग?
1: जी। सेल्फ डिफेंस की हम कभी कभी कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, पुलिस लाइंस में भी कई बार हमने मतलब कैंप लगवाए हैं सेल्फ डिफेंस के, और जो कॉलेजेस होते हैं उनमें भी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस वगैरह कभी कभी करवाते हैं। बाकी स्कूल्स में जाके स्टूडेंट से हमारा सीधा संपर्क रहता है कि भाई अपना नंबर वगैरह है, सीयूजी उनको सर्कुलेट करते रहते हैं, और बाकी थानों की टीम्स भी हमारी एक्टिव रहती हैं और हम अपने स्तर पे भी जाते हैं, संपर्क में रहते हैं कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर करिए, उसको बढ़ावा मिलता है अगर हम उसको दबाते हैं तो,
0: जी
1: कहीं
0: जी
1: छुपाना ही कहीं ना कहीं फिर ज़्यादा ही
0: हाँ,
1: हानिकारक होता
0: वो
1: है।
0: बड़ी घटना
1: जी
0: ग्राउंड बन रहा है
1: जी जी
0: उसमें। अब टेक्नोलॉजी बहुत हमारे आसपास आ गई है और मददगार भी है, तो
1: बिल्कुल
0: ये किस तरह सहायक हो सकती है? आप कैंपों में बताती भी होंगी, क्योंकि जिसके पास मोबाइल है पूरी दुनिया आज उसके पास है, नेट
1: जी
0: के माध्यम से आपने कहा कि हेल्पलाइन बहुत सारी वो आ गई हैं, ऐप आ गई हैं, नंबर आ गए,
1: जी जी
0: डेस्क आ गई, तो आप एक फ़ोन के माध्यम से किसी से भी जुड़ सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की मदद किस तरह बच्चियां ले सकती हैं, ये भी एक आज हमारे पास सशक्त माध्यम है।
1: बिल्कुल जी।
0: हाँ
1: FIR का एक ऑनलाइन माध्यम भी है, अगर आप FIR दर्ज करना चाहते हैं, या आप सोल्यूशन वैसे चाहते हैं कि नहीं FIR नहीं करना है, कोई छात्रा है या कोई महिला FIR नहीं कराना चाहती है, तो उस माध्यम से उसका समस्या का समाधान हो जाता है कि भाई काउंसलिंग होनी है या फिर जैसा भी वो चाहती है, कुल
0: कई
1: मिला के
0: बार
1: उसकी
0: जैसे
1: समस्या का
0: आप
1: समाधान
0: किसी
1: होना
0: व्यक्ति
1: चाहिए।
0: से परेशानी है और आप बता नहीं सकते, तो कभी इधर उधर करके आप फोटो भी ले सकते हो, घटना की ये ले सकते हो कि इस जगह पे
1: जी
0: यहाँ
1: जी
0: पे,
1: बिल्कुल
0: तो ये चीज़ें आगे आप लोगों को बहुत मदद करती होंगी।
1: हाँ बिल्कुल
0: किसी ने
1: हम
0: एक फोटो शेयर कर दिया, किसी ने जगह
1: बिल्कुल
0: बता
1: बिल्कुल
0: दी, तो आपको लग जाता
1: बिना
0: है।
1: आए
0: हाँ
1: अपना।
0: हाँ
1: हाँ जी।

0: बिल्कुल, अगर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप सभी चलाते हैं
1: हाँ
0: आजकल,
1: हाँ
0: बच्चे भी एक्टिव
1: हाँ
0: हैं, व्हाट्सएप चला रही हैं लड़कियां, तो अपना अगर व्हाट्सएप के माध्यम से भी कई समस्याएं ऐसी आई हैं जो व्हाट्सएप पे ही उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की और उसका
1: उसका
0: सोल्यूशन
1: समाधान
0: किया जी,
1: समाधान
0: उसका समाधान
1: तो
0: हुआ है
1: कोई सीयूजी नंबर, जैसे आपने
0: जी
1: ऐप
0: जी
1: बताया 1090 का जिक्र किया, कोई
0: जी
1: सीयूजी
0: जी ये
1: नंबर ऐसा?
0: मथुरा जी, हमारे मथुरा जनपद का ये एंटी रोमियो स्क्वाड जो जनपद का स्क्वाड है उसका एक सीयूजी नंबर है 7839003575। इस
1: जी
0: पे भी गर्ल्स जो है शिकायत अपनी दर्ज करा सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल फ्री होके बता सकती हैं, समस्या का उनका पूरा समाधान किया जाएगा और गोपनीय तरीके हैं बिल्कुल
1: कोई मदद की जरूरत है तो उसमें झिझके नहीं
0: बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं
1: और
0: है और
1: उसमें
0: फ्री
1: आगे
0: होके
1: आए,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल
1: टेक्नोलॉजी और जो ऐप बनाई है वो इसीलिए है। साथियों, आज हमारे साथ थी प्रियंका श्रीवास्तव जी, इंचार्ज एंटी रोमियो मथुरा, और जानकारी यही दे रही थी कि हमारी जो साथी हैं, युवा साथी हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए जा रही हो, चाहे नौकरी के लिए जा रही हो, अगर कहीं थोड़ी परेशानी उनकी है तो वो पुलिस की सहायता ले सकती हैं, टेक्नोलॉजी की सहायता ले सकती हैं, और मिशन शक्ति जो कार्यक्रम है उसके उद्देश्य क्या है वो उन्होंने बताया।
2: हिंदी वार्ता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुद्दे की बात में, विषय था मिशन शक्ति कार्यक्रम उद्देश्य एवं लाभ। वार्ताकार थी प्रियंका श्रीवास्तव, इनसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रायबरेली और सहारनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
1: रक्षाबंधन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सहायक आयुक्त खाद्य मानिक चंद्र सिंह ने सभी होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई प्रतिष्ठानों के संचालकों को सख्त निर्देश जारी करते हुए गुणवत्ता और साफ सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है। सहायक आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मिठाइयों से भरी ट्रे पर बेस्ट बिफोर और यूज्ड बाय की जानकारी वाले स्टिकर अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। बिना लेवल के मिठाइयों की बिक्री पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली खाद्य दुकानों पर उपभोक्ताओं की शिकायत और फीडबैक के लिए QR बार कोड प्रणाली लागू की गई है, ताकि श्रद्धालु सीधे विभाग तक शिकायत दर्ज करा सकें। होटल और रेस्टोरेंट से निकलने वाले इस्तेमाल किए गए तेल के सुरक्षित निस्तारण और प्रबंधन के संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विभाग ने विशेष सचल दल तैनात किया है, जो लगातार बाजारों, मिठाई दुकानों और भोजनालयों की जांच कर रहा है। रक्षाबंधन को देखते हुए मिठाइयों के लगातार नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सहायक आयुक्त खाद्य मानिक चंद सिंह ने बताया,
2: कोई भी पेरिसेबल आइटम हो या नॉन पेरिसेबल आइटम, उनका बेस्ट बिफोर और ये यूज बाई जरूर मेंशन करें। सभी आपके फूड हैंडलर मेडिकल टेस्ट अपना करा ले। जो भी कंज्यूमर आए उनके लिए एक रिडक्शन सिस्टम रखें, जिसपे उनसे फीडबैक लें कि क्या सही है क्या गलत है, कि जो भी डिब्बे की क्वालिटी हो उसको इंश्योर करें। इस हिसाब से डिब्बों का भी संचालन रखें, जिससे कि किसी प्रकार की शिकायत न हो। अगर किसी प्रकार की शिकायत या प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
1: श्रावण मास में आबकारी विभाग ने कांवड़ यात्रा में पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को कपड़े से ढकवा दिया है। जनपद में लालगंज, डलमऊ, सलोन व ऊंचाहर के मार्ग ऐसे हैं जहां से श्रद्धालु पैदल चलकर गंगा घाट पहुंचते हैं। इन सभी मार्गों में पड़ने वाली शराब की दुकानों को ढकवाने का निर्देश दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया,
3: जिले में कुल 58 दुकानें चिन्हित की गई हैं, जिन्हें कपड़े से ढका गया है। और कपड़े से ढकने का मुख्य कारण यही है कि जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानें लोगों को दिखाई ना पड़े, उनका ध्यान रखना है, कोई किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना। और इस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी संदिग्ध ग्रामों पर भी हम सतत निगरानी रख रहे हैं और लगातार हमारी प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है।
1: श्रावण मास के पहले सोमवार को जनपद रायबरेली पूरी तरह शिवमय हो उठा। भोर की पहली किरण के साथ ही मंदिरों की घंटियां गूंज उठी और भगवान भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगाजल, दूध, दही, शहद

0: शायद बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री लेकर मंदिरों की ओर रवाना होने लगे। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए मंदिर पहुंची। युवाओं ने कांवर लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने शांत भाव से शिवलिंग पर जल अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शहर के प्रसिद्ध जगमोहनेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। मंदिर परिसर के बाहर सैकड़ों श्रद्धालु हाथों में जल कलश और पूजा सामग्री लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। मंदिर में प्रवेश के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई थीं ताकि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को असुविधा न हो। रायबरेली के ओई गांव में बारिश के जमीन धंसने से एक सुरंग और पक्की दीवार जैसी संरचना दिखाई दी। इस अनोखी संरचना को देखने के लिए देखते ही देखते पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम महाराजगंज और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई लखनऊ मंडल की टीम मौके पर पहुंची। सहायक पुरातत्वविद डॉक्टर मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में टीम सीढ़ी के सहारे इस रहस्यमय सुरंग के अंदर उतरी। सुरंग के अंदर जांच के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम को कई ऐतिहासिक चीजें मिली हैं। यहां से प्राचीन काल की पुरानी ईंटें, मिट्टी के सुराही और एक हैंडल वाली धूपदानी बरामद की गई है। एक्सपर्ट के शुरुआती आकलन के मुताबिक ये सभी अवशेष कुषाण कालीन बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान गांव के ही रहने वाले अशोक प्रताप मौर्य के पास से भी कई प्राचीन अवशेष मिले हैं जिन्हें वो 1985 से सहेज कर रखे हैं। बताया जा रहा है यह ओई भीट पुरातत्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज एक ऐतिहासिक स्थल है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और ग्रामीणों को गड्ढे के पास जाने से मना किया गया है। एएसआई की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही इस प्राचीन और ऐतिहासिक सुरंग के बारे में और जानकारी मिल सकेगी। हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने और इसमें अधिकाधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी सरनीत कौर प्रोगा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापारिक संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं, निजी संस्थानों तथा अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग व जन भागीदारी से हर घर तिरंगा अभियान सफल बनाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। अभियान के दौरान जनपद के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, राष्ट्रनायकों की प्रतिमाओं का अलंकरण कराया जाए तथा प्रमुख बाजारों, चौराहों और पार्कों को तिरंगा थीम पर सजाया जाए। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सभी शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों आदि पर ध्वजारोहण, सम्मान और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा नागरिक गण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए।
1: रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत कुमार सैनी का।
2: सहारनपुर में श्रावण कावड़ यात्रा सकुशल ढंग से संपन्न हुई। हरिद्वार से गंगा जल लेकर यहां से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए लाखों शिव भक्तों के जयघोष से जिला शिवमय बना रहा। कावड़ मार्ग पर जगह जगह सेवा शिविर, भंडारे और स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशासन और पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हर हर महादेव और बोल बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्ति में रहा। मंडलायुक्त डॉक्टर उपेश कुमार एवं डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान, एसएसपी अभिनंदन, नगर आयुक्त शिवगिरी, सीडीओ सुमित राजेश महाजन के नेतृत्व में यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासन ने पूरे कावड़ मार्ग को 3 सुपर जोन, 11 जोन और 23 सेक्टरों में बांटकर 69 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए। 4 नियंत्रण कक्षों में 54 अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहे। 12 प्रमुख मंदिरों पर जलाभिषेक के लिए 14 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। 40 अस्थायी चौकिया, 27 बैरियर, 32 पिकेट, 15 वॉच टावर स्थापित किए गए। कावड़ मार्ग पर स्ट्रीट लाइट, जनरेटर, शौचालय और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई। करीब 148 ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों की नियमित जांच भी की गई। कावड़ियों के स्वागत में मंडलायुक्त डॉक्टर उपेश कुमार और डीआईजी अभिषेक सिंह ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इससे एक दिन पूर्व नगर निगम की ओर से महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने भी नगर आयुक्त शिवगिरी और योग गुरु भारत भूषण के साथ हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर फूल बरसाए। वहीं गागलहेड़ी में करीब 2,70,000 रुपए के नोटों से सजी कावड़ भी आकर्षण बनी। जिले में युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला सलाहकार समिति की बैठक में युवाओं को स्वयं सेवा, कौशल विकास, इंटर्नशिप और नेतृत्व विकास के अवसरों की जानकारी दी गई। ब्लॉक, ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर अधिक से अधिक युवाओं को पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय

0: की वार्षिक पत्रिका नवोदय प्रभात का डीएम अरविंद कुमार चौहान ने विमोचन किया। पत्रिका में विद्यार्थियों की मूल रचनाओं और विद्यालय की गतिविधियों को शामिल किया गया है। जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत चयनित 14 महिलाओं और 14 पुरुषों समेत 28 लाभार्थियों को चयन एवं अनुमति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में स्वदेशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी संख्या में तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों के साथ आम लोगों को भी अभियान में शामिल किया जा रहा है। वहीं आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 23 सितंबर तक लागू की गई है। बिना अनुमति जुलूस सभा और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ और निर्धारित क्षेत्र में फोटो कॉपी स्कैनर संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। चाइनीज और सिंथेटिक मांझे के निर्माण बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस सीओ के गनर राहुल ढाका हत्याकांड में अदालत ने मेहताब उर्फ काना उर्फ जीवा और सादर खां को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 75-75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। अभियोजन की ओर से 17 गवाह पेश किए गए। 5 मई 2013 को चिलकाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप लूट के बाद बदमाशों का पीछा करते हुए गनर राहुल ढाका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नानोता स्थित किसान सहकारी चीनी मिल में करीब 68 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। आरोप है कि ठेकेदारों से मिलीभगत कर एक ही काम को दो बार भुगतान कराया गया। इस मामले में पुलिस ने अकाउंटेंट चैतन्य राम ठाकुर को गिरफ्तार किया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा, जिसमें आज का विषय है वन्य जीव संरक्षण में जनमानस की भूमिका। आलेख और वाचन है वी के सालवान का।

समस्त वन्य जीव एवं मानव स्वयं अन्य घटकों के साथ साथ एक बड़ी खाद्य श्रृंखला के अभिन्न अंग हैं। खाद्य श्रृंखला में सभी वन्य जीव और जिसमें मानव भी सम्मिलित है वह एक मोती के समान माला में बुने हुए हैं। यदि उनमें से एक भी का अस्तित्व खतरे में पड़ता है या वो कड़ी टूटती है तो संपूर्ण श्रृंखला या संपूर्ण माला ही नष्ट हो जाती है। इस मोतियों के माला में हर मोती का उतना ही उपयोग है, उतनी ही आवश्यकता है जितनी किसी अन्य की। इसमें चाहे कीड़ा हो चाहे हाथी हो सब समान है। लेकिन ये तो मान लेते हैं कि मानव के अस्तित्व के लिए वन्य जीवों की भी उतनी ही आवश्यकता है जितना कि मानव अपने स्वयं के लिए करता है। चूंकि ये एक सर्वहिताय का विषय है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लाभ का नहीं है, इसलिए बृहत प्रयास की आवश्यकता है। इसका लाभ किसी व्यक्ति के लिए या किसी विशेष समुदाय के लिए अथवा राष्ट्र के हित ही केवल इसमें निहित नहीं है, ये एक पूर्ण मानव समाज उस सबके लिए इसकी आवश्यकता है। चूंकि ये सर्वहिताय का विषय है इसलिए सभी को मिलकर के इसके संरक्षण में सहयोग करना चाहिए। चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे राजनेता हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे नागरिक सेवाएं हो, एनजीओ हो, गैर सरकारी संस्थान, चाहे न्यायाधीशगण हो, चाहे सशस्त्र सेना हो, सबका ही इसके संरक्षण में सहयोग आवश्यक है और सहयोग कर सकते हैं। छात्र भावी राष्ट्र के निर्माता हैं, वे जनमानस को हर व्यक्ति को जागरूक करने में विशेष भूमिका निभा सकते हैं और अन्य लोगों को इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए। युवाजन शक्ति से भरपूर होते हैं, वे वन्यजीव संरक्षण के लिए मौके पर कार्य कर सकते हैं। राजनेतागण इसमें अच्छे कानून बनाकर जिससे कि वास्तव में वन्यजीव संरक्षण को सुनिश्चित किया सके और उनको इम्प्लीमेंटेशन उनको लागू करने में जनमानस को प्रभावित कर सकते हैं। व्यापारिक वर्ग इसमें अपने स्तर पर सहयोग कर सकता है। आजकल जो वन्यजीवों के शिकार की समस्या है उसका मूल कारण आज खाद्य के लिए उपयोग कम है, लेकिन के लिए जो विभिन्न प्रकार के फैशन की चीजें बनती हैं उनमें इसका उपयोग या कोई दवाओं में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। यदि व्यापारी वर्ग यह सोच ले कि वे ऐसे कोई व्यापार नहीं करेंगे जिसमें वन्य जीव के अंग या वन्य जीव का पूर्ण भाग

ये वन्यजीव के खालों का व्यापार सम्मिलित है, तो ऐसा व्यापार नहीं करेंगे, तो जो वन्यजीव संरक्षण जो समस्या है वो स्वयं ही समाप्त हो जाए। इसी प्रकार नागरिक सेवाओं से संबंधित जो लोग हैं जिनका काम कानून को लागू करना है, वे यदि इसमें अब भागीदार बनेंगे तो निश्चित तौर पर कानून तो बहुत अच्छे अच्छे आज भी उपलब्ध हैं, पहले भी उपलब्ध थे, लेकिन उनकी अच्छी भली पार पूर्ण क्षमता के साथ लागू न होने के कारण उनमें इतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। इसी प्रकार विशेष तौर पर एनजीओस जो गैर सरकारी संस्था हैं, वो इसमें बहुत बेहतर से भाग ले सकती हैं, क्योंकि वो जो भी स्पष्ट बात है वो कह सकती हैं, उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है कि वो किसी के डर से कोई बात नहीं कहेंगे या कोई सूचना नहीं देंगे या किसी सच्चे बात को नहीं बताएंगे। जो भी सरकारी योजनाएं लाभप्रद हो उनके लिए वे अच्छे विचार प्रकट कर सकते हैं, और जिनसे उन योजनाओं से या नियमों से उन्हें लगता हो कि इस प्रकार की योजनाओं से वन्य जीवों को या हमारे पर्यावरण को हानि होगी, तो वे इसको रोकथाम में कर सकते हैं। इसी प्रकार सशस्त्र सेनाएं, हमारे अधिकतर वन्य जीव जिनकी संख्या बहुत खतरनाक स्तर पर घट रही है, वे ज्यादातर रिमोट क्षेत्र में दूर दराज क्षेत्रों में हैं, और वहीं हमारी सेनाएं भी तैनात हैं, चाहे थार का रेगिस्तान हो और चाहे हिमालय की या कश्मीर की या हिमाचल की बर्फ से ढकी घाटियां हो, उन जगह पर मुख्य रूप से वन्यजीव पाए जाते हैं। सशस्त्र सेनाएं चाहें तो न केवल वहां पर उनकी सुरक्षा कर सकती हैं, बल्कि वो कई ऐसे वन्यजीवों, पक्षियों, पशुओं को खोज सकती हैं जिनका कि हम ये मान चुके हैं कि या तो उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है या वो उस क्षेत्र में है ही नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जनमानस के सहयोग से ही, हर स्तर के व्यक्ति के सहयोग से ही वन्यजीवों का संरक्षण संभव है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, विषय था वन्य जीव संरक्षण में जनमानस की भूमिका, आलेख और वाचन था वीके सालवान का।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति है सुरभि शर्मा की और संयोजन है OP सिंह का।
5: सुप्रभात, करते हैं एक नई शुरुआत नए उमंग और नए उल्लास के साथ। आज का दिन है बेहद खास। आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और आज ही के दिन डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिन्हें भारत का महान वैज्ञानिक और दूरदर्शी उद्योगपति भी कहा जाता है, उनका है जन्म दिवस। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यानी पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने इसरो जैसी संस्थाओं की नींव रखी, भारत को अंतरिक्ष और विज्ञान की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ, गुजराती परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम अम्बालाल साराभाई और माता का नाम सरला देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में हुई। गुजरात में कॉलेज से पढ़ाई के बाद इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री ली। भारत लौटने पर उन्हें शोध कार्य किया। उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के मार्गदर्शन में बेंगलुरु में कॉस्मिक किरणों पर शोध किया। बाद में कैम्ब्रिज से ही PhD की डिग्री हासिल करी। 1942 में उनका विवाह प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई से संपन्न हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों अनेक उपलब्धियां हासिल करी। उन्हें 1966 में पद्म विभूषण और मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत

अंतरिक्ष में वो मुकाम हासिल किया जिसका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने अंतरिक्ष के कार्यक्रमों को शुरू किया और भारतीय पहचान को अंतरिक्ष में वहां तक लाकर खड़ा कर दिया जहां से सारी दुनिया उसे सिर उठाकर देखती है। PRL 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना उन्होंने की। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। IIM अहमदाबाद और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन हमें ये बताता है कि युवा चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। युवाओं में अपार शक्ति होती है, अपार ऊर्जा होती है। अगर उन्हें सही दिशा और निर्देश मिल जाए तो वो सकारात्मक सोच अपनी डेवलप करती है और वही सकारात्मक सोच उनके जीवन को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देता है। न केवल अपना, अपने परिवार का, अपने देश का भी नाम रोशन करते हैं। हम आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मना रहे हैं तो हमारे देश के युवाओं के लिए विक्रम साराभाई का जीवन प्रेरणा का स्रोत है, जिन्होंने अपने साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन किया।

0: अशोक, आप जानते हैं कि आज 12 अगस्त है। 12 अगस्त यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा हर देश की शक्ति होते हैं। युवा चाहें तो देश को अगर ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, तो वहीं अगर युवा दिग्भ्रमित हो जाए तो कोई भी देश पतन की गर्त में जा सकता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, युवा शक्ति को सही दिशा और दशा देने के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही, इन सारी बातों को लेकर हमने बातचीत करी। हमारे साथ है
1: मेरा नाम अमित कुमार है, जिला युवा अधिकारी। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार।
0: 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों एक दिवस युवाओं को बताने के लिए, युवा शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए?
1: ये 12 अगस्त को मनाया जाता है जिससे कि युवाओं के कुछ इश्यूज होते हैं कि जिनको मेन स्ट्रीम में अभी दे होता ताकि उन इश्यूज पर भी फोकस किया जा सके। तो इसीलिए उनके विभिन्न विभिन्न इश्यूज को एड्रेस करने के लिए भारत ये पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, इंटरनेशनल युवा दिवस।
0: इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लगा ऐसा कि एक दिन युवाओं को समर्पित होना चाहिए?
1: जैसे कि युवा हमारे एक नींव होती है एक देश की, किसी भी एक समाज की। तो युवा भी बहुत सी परेशानियां अपने जीवन में फेस कर रहे होते हैं। तो उन सभी परेशानियों उनके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ उनकी ऐसी बातें हो सकती हैं जिन पर फोकस करना, एक समाज का ध्यान आकर्षित करना, उसी के लिए इसको मनाया जाता है।
0: इसका इतिहास क्या है, कब से ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई?
1: ये पहला जो युवा दिवस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था ये सन 2000 में मनाया गया था। और इसकी शुरुआत 1999 में एक संयुक्त राष्ट्र सभा में इसको पारित करके सन 2000 से इसको मनाया जा रहा है। और

0: हर वर्ष ये मनाया जाता है युवाओं को डेडिकेट करके।
1: अगर
0: और
1: युवा शक्ति
0: जी
1: चाहे तो देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। देश
0: जी
1: के विकास में युवाओं का योगदान उल्लेखनीय है, क्या इस सही
0: जी
1: या
0: जी
1: गलत?
0: ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सच है। ही एक किसी भी देश में अगर परिवर्तन लाना है, उसको एक नया टेस्ट, नई नई चीजों को अपनाना है, तो वो युवा शक्ति ही उसको कर सकती है।
1: युवाओं को सही दिशा देने के लिए क्या सरकारें प्रयासरत हैं ताकि वो सही दिशा पाकर एक अच्छा नागरिक बन सके?
0: जी, सरकार, भारत सरकार भी स्पेशली प्रयासरत रहती है हमेशा। इवन भारत सरकार के द्वारा एक डेडिकेटेड मंत्रालय भी बनाया गया है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। उसके तहत बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है जिसके द्वारा युवाओं को सीधा मेन स्ट्रीम से राष्ट्र निर्माण में जोड़ा जा सके। जैसे कि मेरा युवा भारत, एक डिपार्टमेंट डेडिकेटेडली युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें युवा खुद को रजिस्टर करके बहुत सी ऐसी भारत सरकार की योजनाओं से उन्मुख हो सकता है, और बहुत सी जो उनके लिए सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है, उनको भी वहां पे वो प्राप्त कर सकता है। और भी कॉलेज लेवल पर एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना भी डेडिकेटेडली युवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
1: आपने कहा युवाओं को कई योजनाओं से जोड़ा जाता है ताकि युवा सही दिशा प्राप्त कर सके। क्या
0: जी,
1: योजनाएं हैं, इनके बारे में जानकारी दी।
0: योजना बहुत सी, जैसे कि युवाओं की स्किल डेवलपमेंट करने के लिए या फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, कि आरबीआई भी चलाता है कि फाइनेंशियली लिटरेट बने हमारा युवा, ताकि बदलते इस युग में युवा सारी चीजों को अडेप्ट कर सके और खुद उसका, स्वयं उसका एक भागीदार बन सके। और भी जैसे कि मेरा युवा भारत भी एक स्कीम ही हुई और एक डिपार्टमेंट भी है जिसके थ्रू इन स्कीम्स को युवाओं तक पहुंचाने की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है।
1: आपने जिक्र किया फाइनेंशियली लिटरेट शब्द। लिटरेट का मतलब
0: हाँ
1: होता है साक्षर, और फाइनेंस का मतलब होता है आर्थिक रूप से। तो
0: हाँ
1: आर्थिक
0: वित्तीय, हाँ।
1: साक्षर क्या हुआ सर?
0: जैसे कि आज की डेट में अगर हम बात करें कि भारतवर्ष में यूपीआई नामक एक फैसिलिटी भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको कहा जाता है। इसके थ्रू जो युवा स्पेशली हमारे पेमेंट जो करते हैं किसी छोटे से छोटे वेंडर या बड़े से बड़े किसी विक्रेता के यहाँ पे जा करके, तो वो डायरेक्टली हमको कैश गिनने में समय नहीं लगता, तो उसको डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। तो ये डिजिटल लिटरेसी का एक एग्जाम्पल हुआ। ऐसे ही और भी बहुत सी फैसिलिटीज जो बैंकिंग सर्विसेज के द्वारा दी जा रही है फाइनेंशियल चीजों को लेकर के। फाइनेंशियल में जैसे कि इंश्योरेंस भी आता है, हमारी बैंकिंग सर्विसेज भी आती है, म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, इनके बहुत से एडवर्टाइजमेंट प्राइवेटली भी किए जाते हैं। और भारत सरकार आरबीआई के थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी की कुछ चीजें लॉन्च कराती है, जिसमें कि जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक भी फरवरी में मनाया जाता है, जिसके द्वारा अलग अलग समय पे भी इसको चलवाया जाता है, जिसके द्वारा युवाओं को उससे जोड़ा जा सके।
1: युवा और क्रांति, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। अगर
0: जी
1: युवा वर्ग क्रांति पर आ जाए तो बड़े से बड़े तख्ता भी पलट जाता है, सत्ताएं हिल जाती है। लेकिन यही युवा अगर गलत रास्ते पर चला जाए तो वो न केवल अपना नुकसान करता है, अपने परिवार का नुकसान करता है, देश का भी बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए क्या सरकारों ने कुछ योजनाएं बनाई हैं?
0: योजनाएं काफी अभी भी इस समय भी चल रही हैं। इवन कुछ योजनाएं तो अभी हमारे द्वारा भी युवाओं तक, जैसे कि युवाओं को गलत रास्ते, नशे के रास्ते पे जाने से रोकने के लिए अभी भी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा, ये एक अभियान के रूप में भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कि युवाओं को बताया जाता है कि किस तरीके से कुछ जो ज्यादा इफेक्टेड एरिया है हमारे देश के, वहां पे कैसे ये समस्या क्रिएट हो रही है, और जैसे कि

0: आपने भी बताया कि फैमिली का भी नुकसान करते हैं, अपने अपने खुद का नुकसान करते हैं, और फिर ओवरऑल पूरे देश का उससे नुकसान होता है अगर युवा इस नशे की लत में जुड़ जाता है। तो इनको दूर करने के लिए, युवाओं को सही दिशा देने के लिए भारत सरकार अपना समय समय पर विभिन्न योजनाएं लाती रहती है।
1: की जो थीम यूएन ने डिसाइड करी है 2026 अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की, वह है विभिन्न परिस्थितियां साझा आकांक्षाएं, कॉन्टेस्ट एंड कॉमन एस्पिरेशन।
0: एस्पिरेशंस,
1: इससे क्या तात्पर्य है?
0: जैसे कि विभिन्न परिस्थितियां, अब सभी युवाओं की परिस्थिति एक सी नहीं है, समाज में किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति एक सी नहीं है, सभी अलग अलग परिस्थितियों में जी रहे हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, परंतु एस्पिरेशन सबका कॉमन होता है, आकांक्षाएं सबकी कॉमन होती है कि हमको विकास करना है अपना भी और अपने देश का भी। तो इसको हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि सभी परिस्थितियों को एक साथ लेकर के, सभी परिस्थितियों की समस्याओं का एक साथ निदान करके हम लोग उस अपने कॉमन फ्यूचर, कॉमन एस्पिरेशन की ओर हमको बढ़ना चाहिए, युवाओं को बढ़ना चाहिए।
1: हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है, इस क्षेत्र में क्या कार्य कर रहा है?
0: हर घर तिरंगा अभियान, ये भारत सरकार द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था। 2022 में हमारे देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे हुए थे, तब से अभी तक, या 2026 आ गया है इस साल, इसको नौ हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा अगस्त 9 से 17 अगस्त तक ये चलाया जाएगा, जिसके तहत युवाओं और इवन जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, सभी लोग जो भी हमारे देश में रह रहे हैं, उनको अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा करके अपना देश के प्रति एक जागरूकता, एक अपना योगदान देना है, और साथ ही तिरंगे के साथ सेल्फी एक लेकर के उसको भी अपलोड करना है। उसको अपलोड करने के लिए भी पोर्टल भारत सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा के नाम से ही लॉन्च किया गया है। तो वो हम अपना योगदान इस रूप में दे सकते हैं कि कहीं से भी अपने घर से हम जुड़ सकते हैं इस अभियान से, और किस तरीके से हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने हमारे देश को आजाद कराया था, उनकी भी बहुत सी कहानियां इसमें सबको जोड़ करके हम लोग उनसे एक प्रेरणा ले सकते हैं। यही सब इस अभियान के तहत चल रहा है।
1: क्या कहना चाहेंगे सभी युवाओं से?
0: युवाओं से मेरी यही अपील है कि आप लोग एक अपनी जितनी भी अलग अलग फील्ड की समस्याएं हैं, उन सबको एक साथ ला करके दूर करने की कोशिश करें और अपने इस योगदान को राष्ट्र निर्माण तक पहुंचाएं। जैसे कि ये हमारा थीम भी है कि विभिन्न परिस्थितियों में युवा हैं आज के समय में, अब उन परिस्थितियां अलग हो सकती है परंतु हमारा राष्ट्र एक है, अब उस राष्ट्र के निर्माण में युवाओं के सहयोग के बिना हम एक विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो युवाओं को अपना एक कॉमन गोल बना करके 2047 तक, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है और एक सपना है कि 2047 तक हमको अपना राष्ट्र विकसित बनाना है, तो उसमें युवाओं की सबसे मुख्य भूमिका रहने वाली है। युवाओं से मेरा यही अपील है, यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरा आग्रह है कि आप लोग सभी इस सपने को साकार करने में अपना फुल एस्पिरेशंस और बल के साथ आगे बढ़े और राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करें।
2: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है। किसान भाइयों, इस बुधवार दिनांक 12/8/26 यानी आज शाम 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार का विषय है उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य एवं उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, पूर्व प्राचार्य एवं डीन राजकीय कृषि महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। किसान भाइयों, नए बागों की स्थापना, फलदार एवं सब्जी वाले पौधों में समसामयिक कृषि कार्य, जल निकासी एवं पौध संरक्षण उपायों के बारे में जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, पूर्व

चार एवं डीन राजकीय कृषि महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। आप हमारा टेलीफोन नंबर 0565 ये हमारा कोड नंबर है, फोन नंबर है 2530135, इस पर आप फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय होगा आज बुधवार शाम 6:50 से 7:20 तक। सूचना समाप्त हुई।

अब डालते एक नजर आज के समाचारों पर। तिरंगा लाइट से चमकेगा प्राचीन गोविंद देव मंदिर। स्वतंत्रता दिवस पर नगर के प्राचीन गोविंद देव मंदिर सहित अन्य संरक्षित मंदिर तिरंगा लाइट से चमकेंगे। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंदिरों की सफाई कराने के साथ साथ ट्राइकलर इल्यूमिनेशन लाइट का भी कार्य किया जा रहा है। नगर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 4 मंदिर संरक्षित हैं। इनमें गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, जुगल किशोर जी एवं राधा वल्लभ मंदिर शामिल है। एएसआई द्वारा गोविंद देव मंदिर की सफाई करने के साथ ही ट्राइकलर इल्यूमिनेशन लाइट से सजाने का कार्य किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने जिले के लोगों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है। जिले के प्रमुख मार्गों, चौराहों और स्थलों को तिरंगा लाइटों, कपड़े से सजाया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों के छात्र और छात्राएं, शिक्षक तिरंगा यात्राएं निकालकर लोगों को घर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। डीएम ने अधिकारियों को विद्यालयों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, ग्राम पंचायतों, नगरीय क्षेत्रों में देशभक्ति कार्यक्रम करने के निर्देश दिए हैं। 13 अगस्त से दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों, आश्रमों, धर्मशालाओं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अन्य प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने के साथ तिरंगा लाइट एवं कपड़े की सजावट भी की जाएगी। अब अगले वर्ष फूल बंगले में बिहारी जी ठाकुर बा के बिहारी मंदिर में बुधवार को सीजन का अंतिम फूल बंगला सजाया गया। गर्मी के दिनों में आराध्य को शीतलता प्रदान करने के लिए सजने वाले फूल बंगलों की सेवा हरेली अमावस्या के साथ समाप्त हो जाएगी। अब श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के फूल बंगले के लिए अगले वर्ष ही दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की सेवा परंपरा उनके प्राकट्यकर्ता स्वामी हरिदास जी ने शुरू की थी। गर्मी के दिनों में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए फूल बंगला सजाने की परंपरा में उन्हीं से एक है। चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी से शुरू हुई यह फूल बंगलों की सेवा हरियाली अमावस्या तक चलती है। इस दौरान केवल एक दिन अक्षय तृतीया के दिन फूल बंगले नहीं सजाए जाते। इसके चलते 103 दिनों में दोनों समय मिलाकर 218 फूल बंगले सजाए जाते हैं। इस वर्ष 12 अगस्त तक फूल बंगले सजेंगे। यमुना नदी का जलस्तर अब नीचे उतरने वाला है। मंगलवार को प्रयाग घाट पर जलस्तर 31 सेंटीमीटर घटकर 164.60 मीटर पर आ गया। अब डालते एक नजर आज के इतिहास पर क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से। आज के दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और कई प्रमुख नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया। वहीं 1948 में स्वतंत्र भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया और पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को उसी की धरती पर 4-0 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता। वहीं 1928 में

पहले स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करी। वहीं 2000 में भारत की पहली पनडुब्बी INS सिंधु रक्षक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये थी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो आज के दिन के साथ जुड़ी हुई थी। क्या करें क्या ना करें के अंतर्गत बातचीत करते हैं इन विषयों के बारे में जो होते हैं आम बन जाते हैं खास। आज विश्व हाथी दिवस भी है, यानी कि जानवरों के प्रति अगर हम दया भाव दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसा कार्य करेंगे जिससे कहीं ना कहीं किसी को फायदा हो। अक्सर मानव अपने तैश में आकर क्रोधवश जानवरों के संग क्रूर व्यवहार करने लगता है, जबकि उनके अंदर भी जीवन है। आप उन बेजुबान प्राणियों को प्यार देंगे तो बदले में वो आपसे प्यार ही करेंगे, हर तरह से आपकी सहायता करेंगे। विश्व हाथी दिवस, ये दिवस हमें ये सिखाता है कि जानवरों के प्रति आपको दया भाव रखना है, उनके प्रति प्रेम का भाव रखना है। कई बार अपनी जीविका के लिए या किसी कारणों से हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, अत्याचार होता है पशुओं के साथ, उसके लिए हमें खुद को संभालना पड़ेगा, उनके प्रति दया भाव दिखाना पड़ेगा। यही मानवता है। अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें, सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति थी सुरभि शर्मा की और संयोजन था ओपी सिंह का। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

दुल्हन वही जो पियामन भय, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे हेमलता और यशोदास की आवाजों में। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फर्ज फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये गीत।

दुनिया फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में। गीत को लिखा था हसरत जयपुरे ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इन फिल्मी गीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

दुश्मन फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी उत्तम सिंह ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे दोस्ताना फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे डोर फिल्म का गीत शफाकत अमानत अली की आवाज़ में। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे अदालत फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने।

नया दौर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे साहिल लुधियानवी ने और धुन बनाई थी ओंकार प्रसाद नैयर ने। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत अमर प्रेम फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी
1: जी, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके मुझे सच बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी वही लग रहा है, सेम टू यू।
1: है ना, बहुत तेज बारिश हो रही है अभी हमारे यहाँ पर।
0: हाँ क्या बात है, बारिश का
1: जी
0: आनंद ले रहे हैं और उसके साथ में फिर चाय पकोड़े समोसे कुछ और भी चल रहा है कि नहीं?
1: नहीं, अभी तो हमने सादा खाना ही खाया है,
0: अच्छा
1: रोटी और दाल बनाई थी।
0: हो, ये भी जरूरी
1: हाँ
0: है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।
1: जी बिल्कुल, प्रभु के गुण गाते हैं, सही पहचाना, मैं एक भजन गायक भी हूँ।
0: आओ देखिए, ऐसे ही प्रभु निकलवा देते हैं कुछ कुछ बातें।
1: जी, और सावन का महीना चल रहा है ना, तो
0: हाँ जी
1: बहुत दूर दूर से श्रद्धालु अभी बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी भी बाबा महाकाल के श्री चरणों में दंडवत हम प्रणाम करते हैं, निवेदित आप ही के माध्यम से कि जब कभी आप जाएं तो एक बार ढोक हमारी भी लगा दीजिएगा।
1: जी
0: हाँ
1: बिल्कुल, आपकी अर्जी यूं समझिए कि पहुंच ही गई बाबा के चरणों में।
0: पहुंच गई, कह दीजिएगा
1: जी
0: बाबा से कोई है जो आपको
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: याद करता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, बाबा तो गद गद की बात जानते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी, तो
1: जी,
0: अभी आज के कार्यक्रम में आपकी पसंद क्या रहेगी?
1: कोई भी शिव जी की एक आराधना सुनवा दीजिएगा।
0: जी बिल्कुल, शिव जी की आराधना सुनना चाहेंगे।
1: जी हाँ।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: आदरणीय रश्मि दीदी जी को सादर सब प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी मैं आपके कार्यक्रम को बेहद पसंद करने वाला आपका नियमित ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है राजू जी कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है। लगता तो ऐसा था कि आज हमारा फोन नहीं लगेगा क्योंकि 29 पे रिंग जाने के बाद में डायरेक्ट 15 मिनट का गैप देके 44 पे रिंग गई है।
0: देखिए, श्रोताओं की अनवरत श्रृंखला जारी रहती है, तो अब वैसे में तो हम क्या ही कहें आपसे।
1: हमारा सौभाग्य था कि हमारी दीदी जी से आज बात होनी ही थी तो
0: हो ही
1: लगभग
0: गई।
1: हमारा एंड वक्त पे लग ही गया।
0: जी बिल्कुल। और आज क्या सुनना चाहेंगे राजू जी?
1: अब देखिए दीदी, एक तो श्रावण मास की धूम चारों तरफ मची हुई है, कहीं मदारे तो कहीं गीत तो कहीं झूले तो कहीं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, अब पहले की तरह त्योहारों का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सबसे बड़ी कारण है कि पेड़ जो है वो अब हमारे बीच में बहुत कमी रह गए हैं। झूले तो बंदी से समझ के चलिए, लेकिन हमारा ये जो संस्कृति प्रधान देश है तो श्रावण का महीना चल रहा है दीदी, भोलेनाथ की भी धूम चारों तरफ मची हुई है, तो जिधर देखो उधर कावड़ियों का शोरगुल, डीजे साउंड और

0: पैदल सादा सिंपल कावल लेके चल रहे हैं अपने कंधों पे, भोलेनाथ के गुणगान गाते हुए
1: जी।
0: बड़ा ही अच्छा माहौल है भगवान की कृपा का। तो आपसे गुजारिश है, फिल्म का नाम है शिरडी के साईं बाबा
1: जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: इसमें एक गीत है शिव भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी।
1: एक अनुरोध मेरा भी रहेगा आपसे।
0: जी जी जी

0: जी
1: देखिए, आपने बताया कि ये परंपरा विलुप्त होती जा रही है, जो हमारे गांव में विशेष रूप से थी कि गांव में बहन बेटियां बहुएं सभी जो है झूला झूला करती थी। तो
0: बिल्कुल
1: इस परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास हम सभी को मिलकर करना चाहिए। और देखिए,
0: जी,
1: अगर
0: आपका कहना है कि हमें पेड़ एक बार फिर से लगाने चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पहले ये परंपरा बड़ी अच्छी तरह निभाई जाती
1: जी पेड़ भी लगाने हैं, और गांव में कहीं कोई एक ऐसा पेड़ जो थोड़ा पुराना हो, वहां पर एक झूला डालकर, और जो शगुन है हमारे सावन में बहन बेटियों का झूला झूलने का, वो जरूर होना चाहिए। और
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये
1: मल्हार,
0: परंपरा
1: जी, तो अगर हम ही लोग अपनी परंपराओं को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल खत्म होती जाएंगी और खत्म हो रही हैं।
0: पर्यावरणीय दृष्टि से भी खात्मे की ओर है, और लोगों की जो पाश्चात्य मानसिकता है उसकी वजह से भी हमारे पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।
1: जी, अभी देखिए गांव में और छोटी छोटी बच्चियां होंगी, वो कैसे सीखेंगी कि सावन की मल्हार क्या होती है, सावन
0: बिल्कुल
1: के
0: हमारे
1: झूले कैसे होते हैं। तो जब तक हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तब तक वो कैसे सीखेंगे। तो अभी इस
0: बिल्कुल
1: समय हमारा
0: बिल्कुल
1: दायित्व बनता है कि उस परंपरा को हम टूटने ना दें, बिखरने ना दें। परंपरागत चीजें हैं वो, चाहे शगुन के तौर पर कहीं किसी एक जगह पर ही सही, लेकिन वो होनी चाहिए। तो राजू जी, आज बहुत आनंद आया, और किसी एक खास विषय पर हमने बहुत प्रयास किया, और मैं उम्मीद करती हूँ इस प्रयास को आप अपने गांव वासियों के साथ मिलकर अवश्य सार्थक बनाएंगे। तो चलिए, सुनिए पसंद का।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो रश्मि दीदी को नमस्कार।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं, परिचय दीजिए।
1: मैं जवाहर सिंह का हूँ, सहायपुर तहसील जिला भरतपुर राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है तो अच्छे हैं
0: अच्छा, चलिए अभी ये पूछना चाहूंगी कि आपके गांव में सावन के झूले अभी पड़ते हैं, मल्हारें गाई जाती हैं या नहीं?
1: गाड़ी आती है।
0: तो अभी गांव में बहन बेटियां जो हैं, जो सावन के जो झूले पड़ते हैं, वो अभी झूल रही हैं आपके गांव में महिलाएं?
1: बिल्कुल पढ़ते हैं सब।
0: जी, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें बताया कि उनके गांव से तो ये परंपरा विलुप्त हो चुकी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कुछ गांव अभी ऐसे हैं जहां ये परंपरा जीवित है और इस परंपरा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और प्रयास करते रहें। और पसंद क्या रहेगी आपकी?
1: मेरी पसंद बहनी वो कोई मालिन चली आ रही है बीकानेर से, उसकी वो गाना सुनवा लें।
0: अच्छा, मेरा नाम है चमेली।
1: हाँ, वो गाना सुनवा लो।
0: ओ, मेरा नाम है चमेली, ठीक है।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं महाविद्या कॉलोनी से एसके चतुर्वेदी बोल रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: आपको धन्यवाद। आप कौन बोल रहे हैं?
0: जी, मैं रश्मि बोल रही हूँ।
1: रश्मि जी, आप तो मुझसे परिचित हैं, एसके चतुर्वेदी बोल रहा हूँ मैं।
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में चतुर्वेदी जी। और
1: धन्यवाद।
0: जी, और कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आपकी स्वस्थता कामना करता हूँ।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: एक फिल्म है पुरानी, मेहरवान।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: मैं जवाहर सिंह, गांव सायपुर, तहसील नरदोई, जिला भरतपुर, राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: ठीक है, बढ़िया है। आपकी कामना करते रहते हैं, सही होने की।
0: जी, बिल्कुल, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आनंदित हैं, और कार्यक्रम में फोन आप करते रहते हैं।
1: करते रहते हैं, आज
0: आज
1: मिला है, बहुत दिन बाद आपसे। तो
0: अच्छा, तो आज पहली बार बात हो रही है?
1: हाँ, पहली बार बात हो रही है आपसे।
0: ठीक है, तो नियमित श्रोता हैं आप, कार्यक्रम तो सुनते ही रहते होंगे, कैसा लगता है?
1: अच्छा लगता है कार्यक्रम, आप
0: जी,
1: बहुत
0: चल
1: बहुत बढ़िया प्रोग्राम
0: जी, तो आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: है। आज एक फिल्म है पुरानी, जो है राजकुमार,
0: राजकुमार फिल्म से कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ओ मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए।
0: ठीक है।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, आज की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की थी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चंद्रा खत्री के साथ। फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, ना हो निगाह में शोखी तो दिलबरी क्या चीज़ है।

मदन मोहन के संगीतबद्ध इस गीत को हमने लिया था फिल्म आपकी परछाइयां से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म अनपढ़ से। गीत को संगीतबद्ध किया था राजेंद्र कृष्ण ने, बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना शर्मिली फिल्म से। एसडी बर्मन के संगीतबद्ध इस गीत को लिखा था नीरज ने।

0: यह आवाज़ थी मुकेश की फिल्म आशिक में। अभी आपने सुना शंकर जय किशन के संगीतबद्ध इस गीत को। हम आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।
1: या हबीब

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, फिल्म थी आराधना। एस डी बर्मन के संगीत बद्ध इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ में, फिल्म पाकीज़ा से।

कैफ भोपाली की शब्द रचना को हमने लिया था फिल्म पाकीजा से। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ आरजे चंद्रा खत्री। साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और युवाओं पर आप सब क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है, क्या एडवाइस है, आप लोगों की राय क्या है उनके लिए? और खुद युवा हमारे देश की नींव हैं, तो हमारे युवाओं को अब किन किन ज़रूरतों की आवश्यकता है, क्या उनको चाहिए, चाहे वो शिक्षा का विषय हो या हो अपने ज़िंदगी का या हो किसी भी रास्ते पर चलते हुए किसी हमसफर का, तो हमारे जो युवा हैं वो क्या चाहते हैं, क्या ख्वाहिशें रखते हैं, करेंगे इसी विषय पर चर्चा आज अपने कार्यक्रम की बात और SMS में। और शामिल करेंगे ज़रूर आपके संदेश, लिख भेजिए 9412255 पर। तो आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं छिंदवाड़ा बेड़ी से नाना लाम से मीना, तेजस, जय और हर्षिता। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ जुड़ रहे हैं चिन्ना तिरुपति से प्रकाश श्यामला। अगला संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं भगवत देठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी समर्थ, कुमारी सानिका, महाराष्ट्र से। अगला संदेश हमको लिख भेजा आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मेहंदी, सौरभ, साइना शर्मा और निवान ने। साथियों, अगला संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना। आफ्ताब, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना, आलिया, आप सभी गंज डुंडवारा से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शबा अंसारी, शकील, हिना, बुशरा, गुलिस्तान, नंदनी, अंजलि, कृष्ण की नगरी मथुरा से हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, कार्यक्रम सुनने के लिए। छत्रपति संभाजी नगर से जुड़े हैं मंगेश, संध्या, स्वराज और ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल, अनुसुईया, पवन राजे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप सब हमसे जुड़े रहें और हमारा कार्यक्रम सुनते रहें। शंभुदयाल खटक, आपको मेरा सादर नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार, बहुत अच्छा लगता है साथियों आप सभी से जुड़कर। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से जुड़े हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। और इन्होंने युवा दिवस पर बहुत अच्छा लिखा है कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति और उसकी उम्मीद होते हैं। युवाओं में ऊर्जा, नए विचार, उत्साह और कुछ नया करने का जज्बा होता है, यही शक्ति देश को विकास और प्रगति की ओर ले जाती है। इसी के साथ इन्होंने लिखा है कि युवा दिवस हमें याद दिलाता है कि युवा केवल अपने भविष्य के निर्माता ही नहीं बल्कि देश के वर्तमान को भी बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। उन्हें शिक्षा, संस्कार, कौशल और सही दिशा मिले तो वे समाज में पॉजिटिव बदलाव कर सकते हैं। ये बात जो लाइन लिखी है ना, वास्तव में बहुत ही सटीक ये लाइन है, क्योंकि

शिक्षा और संस्कार के बिना तो कोई नींव ही नहीं रखी जा सकती है। तो जब पॉजिटिविटी अगर हमें अपने सोसाइटी में लेकर आनी है तो हमें एजुकेशन और संस्कार दोनों का ही मिक्सचर करके बच्चों को देना ही होगा। हमारे युवाओं को बिल्कुल ये चीज़ हमें उनको अपनी हेरिडिटी में देनी होगी। इसलिए युवाओं को अपने सपनों के साथ साथ देश के और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। जागृत युवा ही मजबूत राष्ट्र की नींव है। बहुत अच्छा आपने हमें संदेश भेजा है युवाओं के लिए। आप रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत और आपका धन्यवाद।

दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव, राधिका, दीपिका, आप सभी खंडवा से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका शुक्रिया। भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी हमसे जुड़ चुके हैं। इसी के साथ अगले साथी हमसे जुड़ रहे हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामरे, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कामरे।

नसवाला चौक मलकापुर से जुड़ रहे हैं संजय पाटिल, उषा पाटिल, निवृत्ति शीर सागर और संजय चौहान। तो आइए सदाबहार गीतों में आपका स्वागत है।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और स्वागत आप सभी का। जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह जी, चंडीगढ़ से आप हमसे जुड़े हैं और आपने बहुत ही अच्छा संदेश युवाओं के लिए भेजा है। युवाओं को रोजगार के ऐसे बेहतरीन अवसर चाहिए जो उनकी योग्यता के अनुरूप हों और जिनमें तरक्की के विकल्प मौजूद हों। इसके साथ ही कार्यस्थल पर उचित सम्मान और कार्य जीवन संतुलन भी उनकी प्राथमिकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। AI के इस दौर में जहाँ एक और टेक्निकल है जीवन, तो दूसरी ओर टेक्निकल जीवन ने हम लोग को बहुत आसान बना दिया है, तो दूसरी ओर सही बात है कि युवा

टेक्निकल जीवन ने हम लोग को बहुत आसान बना दिया है, तो दूसरी ओर सही बात है कि युवा जो है बहुत ही एक डर से बड़े ही असमंजस में जी भी रहा है, बड़ा ही मजबूर है युवा। क्यों? क्योंकि उसको भविष्य की अनिश्चितता यानी कि रोजगार के अवसरों को लेकर बड़ा डरा हुआ है। युवाओं के मन में ये आशंका घर कर जाती है कि जिस हुनर और डिग्रियों को हासिल करने में हमने इतनी मेहनत की है, इतना टाइम हमने दिया है, पैसा लगाया है, क्या आने वाले समय में AI और ऑटोमेशन उन्हें कुछ ही पलों में बेमान या फिर बेकारी तो नहीं साबित कर देगा? बिल्कुल नहीं कह सकते ऐसा, क्योंकि आज हुनरमंद युवा है और हुनर की आज के समय में बहुत ज़रूरत है। तो अगर किसी के पास हुनर है ना, तो वो आगे निकल ही जाएगा और भविष्य में कुछ ना कुछ अपना काम भी करेगा और नाम भी करेगा, दोनों ही चीज़ें हैं। इसी के साथ हमारे अगले श्रोता जुड़ चुके हैं, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, स्वर्ण सिंह, गुरलाल, अविराज और उनके गुरनूर पोते और शुभदीन। आप सब फिरोजपुर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमसे जुड़ी हैं रश्मि झरना, भरत कुमार, और उन्होंने भी युवाओं पर बहुत ही अच्छा संदेश लिख भेजा है कि देश के विकास में युवा पीढ़ी बहुत सारे बदलाव लाकर या फिर नए रिकॉर्ड आयोजन करके विकास करके बहुत कुछ हासिल कर सकती है। हाँ बिल्कुल, यकीनन मैंने भी अभी यही कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं अब हमारे पास, अब हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी से तो हमारा देश बड़ा ही प्रगतिशील और सुंदर बनेगा, विकासशील। बिल्कुल 100% हम यही चाहते हैं कि हमारे युवा साथी जितने भी हैं वो आगे बढ़े, क्योंकि युवा ही इस देश के कर्ता धर्ता हैं, युवा ही इस देश को आगे बढ़ाते हैं और युवा ही इस देश की शक्ति हैं। लिख भेजा है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और आकांक्षा, उमंग, माही, आप सभी हमसे जुड़े हैं मजनू का टिल्ला से। इसी के साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से सोपान और वसंत राव। कार्यक्रम के अगले श्रोता हैं हरियाणा जज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक। हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि एंड नौखेलाल, आप सभी छत्तीसगढ़ के श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारे साथ। सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमानाज एवं समस्त हाशमी परिवार अजमेर शरीफ से हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। आप सभी का बड़ा धन्यवाद है कि आप सब हमसे जुड़ते हैं। महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता, रियांश और पूरा लोखंडे परिवार भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगला संदेश हम जोड़ रहे हैं शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, आप सभी गंज डंडवारा से जुड़ रहे हैं। ये संदेश दिग्दर्शन कविता, राधा, दिव्यांशु, संजय, अनिल, संदीप, मक्कड़ और दर्शन भाई का है मेरठ से। नेहरू चौक पैठर से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद और सोनल बेबीसिया, आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगला संदेश रतन माला सुरलकर, विजय सुरलकर हमें भेज रहे हैं महाराष्ट्र से। युवा देश की शक्ति है, इनमें सपनों में इनके सपनों में राष्ट्र का भविष्य है। बिल्कुल जोश, जुनून और मेहनत से युवा हर कठिन राह को आसान बना सकता है। एकदम सटीक आपने ये बात कही, सही दिशा, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प, इससे देश को नई ऊंचाइयां ले जाने के लिए हमारा युवा बिल्कुल सक्षम है। युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में समर्पित करके एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। बिल्कुल, तो इसी के साथ हमारा अगला संदेश भी हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कमल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार, आप सभी ने अपनी फरमाइश लिख भेजी है, तो आइए सुने आपकी फरमाइश का ये सदाबहार नगमा।

गीतों की फरमाइश बिल्कुल जारी है और इस गीत की फरमाइश लिख भेजी थी सुरेश जायसवाल और मीला जायसवाल, दीपक स्वाति ने गाजीपुर से, जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार, आप सभी ने अपनी फरमाइश का ये गीत सुना। और लोहारी डी से यशवंत साहू, रमेशिया, हर्ष और अंश और साहू हमसे जुड़ चुके हैं। इसी के साथ अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। आपने भी युवा शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा एक संदेश लिख भेजा है, जरूर हम शामिल करना चाहेंगे। युवा शक्ति देश की रीढ़ की हड्डी है, जिस पर देश को बहुत सी उम्मीदें हैं। आज का युवा वर्ग बहुत सजग है और देश के प्रति हमेशा सेवा भावना रखता है। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। युवा वर्ग देश की हर समस्या का निदान कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही कही और इससे भी हम पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि हमारी जो नींव है ना, वो है शिक्षा। जब तक हम बच्चों को अच्छी शिक्षा

नहीं देंगे तो हमारे युवा साथी हमारे देश के लिए अच्छे साबित नहीं हो पाएंगे, गलत लाइन पर जाएंगे, और सही लाइन के लिए उन्हें सही शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। और अगला संदेश हम जोड़ रहे हैं अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमा, उमेश, प्रमिला का। बलकरण वर्मा जुड़ रहे हैं जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। इन्होंने भी युवाओं के लिए बहुत अच्छी पंक्ति हमसे कही हैं कि युवा देश का भविष्य ही नहीं, युवा आने वाले पीढ़ी की नींव है। बिल्कुल सही कहा आपने। और युवा चाहे तो भारत कुछ भी काम कर सकते हैं। और सभी युवा साथियों को युवा दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। सभी युवाएं हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही महत्व रखते हैं, क्योंकि हमारे देश की नींव हमारे युवा हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सोनकर, रतनमाला, ओम भैया, आपने भी हमें यही लिख भेजा है कि युवा देश की शक्ति हैं और इनमें सब इनके सपनों में राष्ट्र का भविष्य बसता है। जोश, जुनून और मेहनत से युवा हर कठिन राह को आसान बना सकता है। सही दिशा, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से ही हमारे युवा जो हैं वो नई ऊंचाई तक हमारे देश को लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही आपने अपनी राय कही है।

बुल्ढाणा से जुड़ रहे हैं नरेंद्र, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार। कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर तासिफ, मोहम्मद अजहान अंसारी, अलमीर बशर अंसारी, आप सभी हमसे जिला बरेली से मिल रहे हैं। शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान, पूरा आबासी परिवार बुलंदशहर से हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी, राकेश और राजेश महाराष्ट्र से। इसी के साथ हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़े हैं मुजफ्फरपुर बिहार से, आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष। अच्छा, इन्होंने लिखा है हमारे मैसेज भी शामिल कर लें। जरूर, हम लोग तो सोचते हैं कि भी सभी के मैसेज शामिल कर लें अपने कार्यक्रम में, पर क्या करें, समय हमें अनुमति देता ही नहीं है और समय रहते ही हर चीज़ें हमें अपने कार्यक्रम में शामिल करनी होती हैं। हीरा मोती, पन्ना लाल, वसंत लाल साहब, मुन्नी देवी, रिया जिया, टूशी एंड आयुषी, अनिरुद्ध, शिवानी, प्रियंका, अभय कुमार, सनातनी, आप सभी पिहरा बाजार झुमरी तलैया से हमसे जुड़ चुके हैं। शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेगा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशवरी धान खुराना, सभी श्रोता बड़ी बेसब्री से अपने नाम का इंतज़ार करते हैं और हम भी उनके नाम शामिल करने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज कोरवाल, बानू प्रकाश। इसी के साथ अगला संदेश हम तक पहुँचाया है अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य, अंजलि ने सुखरी कला से। मायरा, परिधि, सुषमा और मास्टर विठल सुरेश महाराष्ट्र से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। शमसुल खान, अदनान, फैजान, अन्नो, तबेश, आबाद, चांदनी, गंज, डुंडवारा से। हर्षा, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका, आप सभी महाराष्ट्र से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बड़ा शुक्रिया आपका। तेलंगाना चौटुप्पल से जुड़ चुके हैं कस्तूरी, उमा देवी, पृथ्वी नारायणा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमें एक और संदेश मिला है कि युवा शक्ति हमारे देश के कर्णधार हैं। युवा देश का वर्तमान और हमारे राष्ट्र का भविष्य है। बिल्कुल सही कहा कपिल शोभा फुंडीबाई बागरी आपके मैसेज में। इसी के साथ हमारे अगले साथी जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार संध्या, कीर्ति कुमार, डीकेश साहू, आप सभी का बहुत धन्यवाद। गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। उम्मीद करते हैं साथियों आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। बेबी शालिया, बेबी हलीमा, बेबी जिक्रा, आप सभी खंडवा से जुड़ चुके हैं, शेख सईद रई और अनस भाई, यूं ही अपने संदेश हम तक पहुंचाते रहें और हम कोशिश करेंगे आप सभी के संदेशों को अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, क्रांति रानी, संगीता पासवान, मेनका, भूलिया देवी और कलुआ, आपने एक पंक्ति में ही बहुत बड़ी बात कह दी है कि युवा शक्ति ही हमारी राष्ट्र की शक्ति है। बिल्कुल सही कहा आपने। नजमुल होंडा, एसएम जावेद, आप सभी झारखंड से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव कांकेर से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, आप सभी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी, आप सभी आंकली दीवान मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। आपने भी अपना संदेश लिख भेजा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस के इस खास अवसर

0: स्तर पर सभी युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी ताकत है। अपने सपनों को जुनून बनाएं, मेहनत को अपना हथियार और सफलता को अपना लक्ष्य। तो आपका उत्साह और ऊर्जा देश को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सही शब्दों के साथ गीत बात और SMS कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ब्रजलोक गीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्री बाबू कौशिक की गाई मल्हार।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: मिस सीमा
4: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप आनंद ले रहे हैं श्री बाबू कौशिक की गाय मल्हारों का।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं श्री बाबू कौशिक के गए मल्हारों का।

0: ब्रजलोक गीतों के कार्यक्रम में अभी आप आनंद ले रहे थे श्री बाबू कौशिक के गाए मल्हारों का। इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जवाबदेही चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। रक्षा, वित्त, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति, कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण, कोयला खान और इस्पात से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत, पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे आलेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में गैटलोक के पास एक बुलेरो पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदरोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र।

रहे। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा रात्रि 10 बजे से। चर्चा का विषय, ये कार्यक्रम रात्रि 9:30 से आप सुन सकेंगे, जिसका अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। रात्रि 8 होगी संसद समीक्षा, इसका अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। हेलो ब्रिज ग्रामीण फोन इन कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:50 से। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य एवं उचित देखभाल। जानकारी देंगे, वार्ताकार होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर उदयभान सिंह।

आज हमारी सांध्यकालीन सभा का आरंभ होगा संध्या 5:10 से। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी, यह पॉडकास्ट सीरीज हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी 5:10 से। बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे वनिता लोग दोपहर 1:15 पर। संध्या 5:40 पर युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय लेकर आएंगे विक्रम साराभाई जयंती अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इसी के साथ होगी विज्ञान वार्ता, विषय रहेगा इंटरनेट का प्रयोग युवाओं के लिए उपयोगी, जानकारी देंगी बबली। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम संध्या 6:15 से प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा क्रम में आज आप सुन सकेंगे दाऊदयाल शर्मा मामा हाथरसी की गाये काव्य। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आज आप सुनेंगे संध्या 6:30 से। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा संध्या 7:31। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में सुहाने तरानों का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर।

0: अभी तक आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर लीजिए सुनिए।

जाने मन जाने मन जाने मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन तेरी हस्ती हिमालय की चोटी बनी महापुरुष की उससे बिंदी लगी

0: संवेद सुरों में अभी आप सुन रहे थे देशगान एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक।

परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। FM 102.2 MHz पर आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक, और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मीनू अग्रवाल। मेरा माँ बनना एक नारी के लिए बहुत ही सुखद एहसास होता है। जब वो गर्भवती होती है तो बहुत सी चुनौतियों से उसे गुजरना पड़ता है। उस टाइम उसे अपने से ज़्यादा अपने होने वाले बच्चे की चिंता ज़्यादा रहती है, लेकिन उसे ये समझना चाहिए कि जब वो स्वस्थ होगी तभी तो आने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। अब बात आती है कि एक सुरक्षित मातृत्व और शिशु की देखभाल कैसे की जाए जिससे दोनों ही स्वस्थ रहें। इसके लिए सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान सही खान पान का ध्यान रखें। संतुलित भोजन लें जिसमें हरी सब्जियां, फल, दालें और दूध शामिल हो। डॉक्टर की सलाह से आयरन और कैल्शियम की गोलियां समय पर लें। समय समय पर डॉक्टर के पास जाकर बीपी, वजन और बच्चे की विकास की जांच जरूर करवाएं। दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें और भारी काम बिल्कुल भी ना करें। अस्पताल में डिलीवरी की योजना पहले से ही बनाकर रखें। आपात स्थिति के लिए पैसे और वाहन की व्यवस्था भी जरूर रखें और अपने आप को तनाव से दूर रखें। अब बात आती है शिशु की देखभाल की। इसके लिए जन्म के पहले घंटे के भीतर माँ बच्चे को अपना ही फीड कराए। शुरुआती 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दें जिससे बच्चे को उचित पोषण मिल सके। इस समय साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। जैसे बच्चे को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लें या सैनिटाइज कर लें, और बच्चे के कपड़े आदि की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। सबसे जरूरी, बच्चे को जन्म के समय BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो की खुराक अवश्य दिलाएं। इस प्रकार यदि इन बातों को फॉलो करेंगे तो सुरक्षित मातृत्व के साथ साथ शिशु भी स्वस्थ रहेगा और आप बच्चे के साथ साथ आप भी खुश रहेंगे। तो ये तो थी हमारी चर्चा। कहते हैं रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं बन जाता, अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है।

0: हमें बचपन से ही कहानी सुनने का और कहने का शौक तो रहा ही है। पहले सोशल मीडिया से परे एक कहानी की दुनिया होती थी, जिसमें एक रियलिटी की झलक हमें देखने को मिलती थी। तो क्यों ना इस कहानी के माध्यम से उस रियलिटी को जिया जाए। तो आइए अब हम सुनते हैं एक कहानी, गुमनाम खत। प्रस्तुत कर रही हैं नीलम सिंह।
1: की उजियाली रात में भी मन अमावस्या के स्याह अंधेरे की दस्तक साफ महसूस कर रहा था। नींद है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है सारी रात करवट बदलकर ही काटनी पड़ेगी। हालांकि मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी, कितनी ही रातें ऐसी काटी हैं, पर आज की बराबर व्याकुल कभी नहीं हुई थी। सोचा था कि गीतिका की शादी के बाद सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी और रह जाएगी इस घर में मैं और मेरी तन्हाई। कितनी सी थी गीतिका जब मैं उसे इस घर से लेकर निकली थी। ठीक से बोल भी तो नहीं पाती थी। इसकी परवरिश में समय कब और कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। गीतिका में मैंने खुद को जिया है। कैसे अपने नन्हे नन्हे पैरों में घुंघरू बांधकर तबले की थाप के साथ कदम ताल करती हुई थिरकती रहती थी। अब वो बहुत बड़ी डांसर बन चुकी थी। कला की बारीकियों की गजब की पकड़ थी उसकी। आज उसकी शादी हो चुकी है और शादी के साथ ही विदा हो गई उसकी हसी।

ढोली इस घर से। अब तो हर पल दिल दुआ करता है वो अपने घर में यहाँ से भी ज्यादा खुश रहे। कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी को दुनिया की हर खुशी नसीब हो? क्या मेरी माँ ने नहीं चाहा होगा? पर मुझे क्या मिला सिवाय मानसिक यातनाओं के? बचपन के वे दिन जब मैं और मेरी भाई आपस में झगड़ा करते थे तो पापा हमेशा मेरी तरफदारी करते थे। मम्मी पापा दोनों की लाडली थी मैं। पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपने नृत्य के शौक को भी पूरा किया। जब कभी मम्मी पापा मेरे स्टेज शो देखने पहुंचते तो बहुत खुश होते। बड़ी हुई तो हर माँ बाप की तरह उन्हें भी मेरी शादी की चिंता होने लगी और एक अच्छे घर में मेरा रिश्ता तय हो गया। हालांकि मेरे भाई ने इस रिश्ते का विरोध किया, उसे उन लोगों का व्यवहार ठीक नहीं लगता था। उसे शिकायत थी कि वहां का माहौल बड़ा ही नीरस है। इस सब के बावजूद मेरी शादी हो गई। मुझे याद है कि कुल के देवी देवताओं की पूजा आदि के बाद मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया था। मैं जिस कमरे में बैठी थी उस कमरे के दरवाजे के पास चप्पल सैंडल पड़े बेतरतीब से पड़े थे, जैसे कि हर शादी वाले घरों में अक्सर पड़े रहते हैं। तभी एक महिला का सर सुनाई दिया। हे भगवान, न जाने अब इस घर में क्या होने वाला है, चप्पल जो उल्टी पड़ी है। और पैर से चप्पल को सीधी करती हुई मेरे कमरे में दाखिल हुई। किसी ने बताया ये तुम्हारी सास है। मुझे लगा जैसे ये शब्द किसी और के लिए नहीं बल्कि मुझसे ही कहे जा रहे हैं, क्योंकि मैं ही तो एक नई थी इस घर के लिए। धीरे धीरे सब रिश्तेदार विदा हो गए। मेरी जिठानी मुझे खाने के लिए ले गई। उनकी हर गतिविधि मुझे बता रही थी कि वो इस घर के सदस्यों के व्यवहार से ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन परेशान इसलिए नहीं थी कि वो जानती थी कि एक दो दिन काटने हैं फिर तो जेठ जी के साथ चली ही जाएंगी। वो दूसरे शहर में नौकरी करते थे। उन्होंने मुझे एक कमरे में छोड़ दिया जिसमें कोई पहले से सोया हुआ था। कमरे की दशा को देखते हुए मुझे लगा ही नहीं कि इसमें ये खुद सोए हुए होंगे, पर जैसे ही मेरी जिठानी ने कमरा बाहर से बंद किया मुझे समझते देर नहीं लगी कि यही मेरा नसीब है। शुरुआत ही मेरे भाई की बुराई और शादी में हुई कमियों के जिक्र से हुई। पहली ही रात में मुझे समझाया जा चुका था कि मैं बहुत छोटे से घर से हूँ और वो लोग बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सारी रात मेरी नम आंखों में बीत गई। दो दिन बाद मुझे मेरे घर जाना था। भाई और उसके एक दो दोस्त भी साथ थे, मुझे लेने आ गए। आते वक्त मेरी सास ने मुझे हिदायत दी कि तुम्हारे घर के सदस्य के अलावा कोई तुम्हें लेने ना आए, और जिक्र किया कि उस मनहूस खत का जिसमें मेरी सारी जिंदगी तबाह कर दी, जिसे उन्होंने लॉकर में रख रखा था, जिसमें मेरे और मेरे परिवार के बारे में अनर्गल बातें थी, ऐसा उन्होंने बताया। पर उस खत को मैंने आज तक नहीं देखा। दोबारा जब मैं आई तो मैंने ये सारा किस्सा सास के मना करने के बावजूद पतिदेव को बता दिया। उन्होंने कहा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लगता है तुम्हारे घर से कोई द्वेष रखता है जिसकी ये करतूत हो सकती है। इन फिजूल की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले नहीं चाहते कि तुम नृत्य समारोह आदि में कहीं जाओ, आज से ये सब बंद। मेरे ऊपर मुझे खुद को साबित करने की जिम्मेदारी थी, इसलिए ज्यादा विरोध भी नहीं कर सकी थी। पर उस रात बहुत रोई। समय बीतता जा रहा था, किसी की छींटाकशी में कोई कमी नहीं थी। जहां तक मुझे याद है मैंने कभी वो काम करने की कोशिश नहीं की जो उन लोगों की भावनाओं को आहत करे, जबकि मेरी भावनाओं की किसी को कोई परवाह नहीं थी। इसी बीच मैंने गीतिका को जन्म दिया। लगा अब शायद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन स्थितियां और भी विषम होती गई, क्योंकि मैंने उनके वंश को चलाने वाला पुत्र नहीं जन्मा था। उस वक्त गीतिका मात्र साल भर की थी। तंग आकर एक दिन मैंने अपने पतिदेव से कहा कि अभी मुझे और कितनी परीक्षाएं देनी होगी, इस घर में आए हुए मुझे 3 वर्ष बीत चुके हैं, तुम लोग आज तक मुझे नहीं समझ सके। और एक वो कागज का टुकड़ा जिसके बारे में तुम लोगों को खुद नहीं मालूम कि किसने लिखा है, उस पर इतना विश्वास। इस घर का हर सदस्य मुझे संदेह की दृष्टि से देखता है, क्या कोई बता सकता है कि उन्होंने मुझमें ऐसा क्या देखा। मुझे आखिर किस बात की सजा मिल रही है जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं। अब मुझसे ये घुटन बर्दाश्त नहीं होती। आखिर उस खत का जिक्र बार बार मुझसे क्यों होता है? यही आप लोगों का बड़प्पन है, मुझे समझ नहीं आता इतने छोटे विचार रखने वाले लोग बड़े कैसे हो सकते हैं। कभी सोचा है आपने, अपने से दुर्व्यवहार करने वालों से सहज व्यवहार करना आसान नहीं होता? और उन्होंने

0: मेरी बात बीच में ही काटते हुए दो टूक जवाब दे दिया था। मैं अपने घर वालों से कुछ नहीं कह सकता, चाहे वे गलत ही क्यों ना हो। मैंने भी गुस्से में आकर उसी वक्त वो घर छोड़ दिया था। और तब से लेकर अब तक का सफर मैंने कैसे तय किया, इसे शब्दों में मैं कैसे पिरोऊं, समझ में नहीं आता। यही वजह भी है मेरी व्याकुलता की कि कहीं वही इतिहास दोबारा तो न दोहराया जाएगा, क्योंकि अब कुछ भी सहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। ये क्या, मेरी आंखों के सामने ये अंधेरा सा क्यों होता जा रहा है? कहीं मेरी भी अंतिम विदाई का समय तो नहीं आ गया?
1: लिखूं कुछ आज वक्त का तकाजा है, दर्दे दिल अभी ताजा है। गिर पड़ते हैं आंसू मेरे कागज पर, लगता है कलम में स्याही कम और दिल में दर्द ज़्यादा है। जी, अभी आपने सुनी कहानी गुमनाम खत, और जिसे प्रस्तुत कर रही थी नीलम सिंह। तुम बिन अगर गुजारा हमारा होता, तुम बिन अगर गुजारा हमारा होता, तो यूं ना आज तुमको पुकारा होता। हमारे दिल में तो सिर्फ तुम ही तुम हो, हमारे दिल में तो सिर्फ तुम ही तुम हो, काश तुम्हारे दिल पे भी हक हमारा होता।

बीता आषाढ़ आया सावन, हरियाली मन भावन लाया सावन, हर सखी के मन को लुभाता सावन। मेहंदी की खुशबू में नहाया सावन, झूले की हिलोरे खिलाता सावन, हरियाली मन भावन लाया सावन। जी, हमारा भारत त्योहारों का देश है, जहाँ पर सभी त्योहार बड़ी धूमधाम से खुशी और उमंग के साथ मनाए जाते हैं। अब जैसे कि बात करें हरियाली अमावस्या की, जो सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। ये पर्व प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और पितृ तर्पण के लिए समर्पित है। इस दिन पेड़ पौधे लगाने और भगवान शिव पार्वती की पूजा और दान पुण्य करने का विशेष धार्मिक व सामाजिक महत्व माना गया है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। ये दिन पितरों के लिए भी समर्पित है, क्योंकि इस दिन नदी स्नान तर्पण और दान करने से पितृ तृप्त होते हैं तथा उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इस दिन पौधारोपण करने का अपना अलग ही महत्व है, इसलिए इस दिन पीपल, बरगद, नीम, आंवला, कदम और बेल जैसे पवित्र पौधे अवश्य लगाने चाहिए, क्योंकि ये दिन सावन की फुहारों से धरती पर फैली हरियाली का स्वागत करने और पर्यावरण को हरा भरा रखने का ये प्राचीन संदेश है। कहते हैं आज मौसम कितना खुशगवार हो गया, खत्म सभी का इंतजार हो गया, बारिश की बूंदें गिरी इस तरह से लगा जैसे आसमान को जमी से प्यार हो गया।

तो अभी आपने सुना इतना प्यारा गीत, अब हमारा जाने का समय तो हो गया है, तो चलते चलते मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी। इस बारिश के मौसम में यदि आपकी कॉफी जम जाए तो आपको क्या करना है, कॉफी को जमने से रोकने के लिए शीशी में कॉफी निकालने के बाद शीशी के मुंह को फॉइल पेपर से अच्छी तरह से बंद कर दें, फिर वो ऐसे मौसम में यानी बारिश के मौसम में बिल्कुल भी नहीं जमेगी। सूजी का उपमा बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा अचार का मसाला भी मिला दें, फिर देखिए कितना स्वादिष्ट उपमा बनेगा। तो अब हमारी घड़ी ने इशारा कर दिया है, जाने का समय हो गया है। चलते चलते इतना ही कहूँगी, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। तो इन्हीं कुछ लाइनों के साथ मीनू अग्रवाल को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही थी मीनू अग्रवाल। इस कार्यक्रम के संयोजक थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

कबीर सिंह इस फिल्म में अभी आपने सुना सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर को। साथियों, कार्यक्रम संबंधी एक विशेष सूचना। किसान भाइयों, आज दिनांक 12/8/2026 को शाम 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार का विषय है उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य एवं उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे डॉक्टर उदयवान सिंह, पूर्व प्राचार्य एवं डीन राजकीय कृषि महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। किसान भाइयों, नए बागों की स्थापना, फलदार एवं सब्जी वाले पौधों में समसामयिक कृषि कार्य, जल निकासी एवं पौध संरक्षण उपायों के बारे में जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदयवान सिंह। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2531 पर फ़ोन करके या फिर मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय रहेगा आज यानी बुधवार शाम 6:50 से 7:20 तक। सूचना समाप्त हुई।

ये सुर थे आतिफ असलम और तुलसी कुमार के। फिल्म थी सत्यमेव जयते। साथियों, कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, आज 12/8/2026 को संध्या 6:50 से 30 मिनट की अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य एवं उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदयवान सिंह, पूर्व प्राचार्य एवं डीन राजकीय कृषि महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। किसान भाइयों, नए बागों की स्थापना, फलदार एवं सब्जी वाले पौधों में समसामयिक कृषि कार्य, जल निकासी एवं पौध संरक्षण उपायों के बारे में जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदयवान सिंह। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फ़ोन करके या फिर मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय रहेगा बुधवार यानी आज संध्या 6:50 से 7:20। सूचना समाप्त हुई। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

राहत फतेह अली खान को भी आपने सुना फिल्म ओम शांति ओम में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
3: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावो खेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्र ध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: इन तिरंगा यात्रास, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन विच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये

0: विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
1: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
4: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
5: आराम से मैडम।
4: क्या?
5: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
6: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
7: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम उमंग। NCERT व CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
1: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
1: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
2: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
1: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
2: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
1: जी।
2: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
1: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्र ध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
2: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
1: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
2: जी।
1: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
2: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानी

0: से हमें आजादी मिली।
1: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
0: जी, और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे?
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
0: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA के छात्र थे, तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊँगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है, है? मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
4: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
4: तो फिर?
3: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
4: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
3: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
4: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
5: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
3: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
5: Is that right? You black monkey?
4: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
5: वाह जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
3: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
5: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा ये हिम्मत?
3: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
5: तो क्या करेगा? हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? यू स्कॉन्डर, यू ब्लडी स्वाइन, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
3: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
5: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
2: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने BA पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर

0: इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
1: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
2: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
1: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
2: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
1: और अपने सुभाष बाबू?
2: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
3: कितनी सजा हुई?
4: नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
1: क्या हुआ सुभाष बाबू?
4: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूँ कि कोई मुर्गी चोर?
0: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
5: कौन? शिशिर?
6: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।
5: आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है?
6: सब तैयारी हो गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
5: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
6: उसका भी प्रबंध हो गया है, आपके लिए तंग पैजामा।

0: शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है, आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
1: ठीक है।
0: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी ज़ियाउद्दीन नहीं है।
1: तो फिर ठीक है, आओ चलें।
0: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब।
3: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
4: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
4: खुदा हाफिज साहब। लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल न जाने क्या हो। ये अखबार कहां गए? हाँ, ये रहा, कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
5: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
6: जय हिंद।

यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई।

0: भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
5: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग,
3: उमंग। अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी का, ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। हाँ, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न करते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:08 पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज़ पर्सन बिहाइंड द स्टोरी का एपिसोड 7, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: साहस, अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ये वो गुण हैं जो हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। और जब इन मूल्यों में नारी शक्ति का अदम्य साहस और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जुड़ जाता है तो एक प्रेरक गाथा बन जाती है। ऐसी ही एक प्रेरक गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे IASV त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें पहली बार सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और समुद्र प्रदक्षिणा की। तो ये अभियान कैसा रहा, क्या चुनौतियां रही, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और साथ में है मेजर प्राजक्ता पी निकम। आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करें, आगाज करें इस कार्यक्रम का, तो सबसे पहले जब आपको एक्सपीडिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में पता चला, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड
2: कि ऐसा भी कोई एडवेंचर होता है क्या? टू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे और उससे पहले कभी फॉरेन कंट्री तक नहीं गए थे, तो वो जो ख्याल है कि पूरी दुनिया का चक्कर, वो नाम ही इतना बड़ा था कि लगा कि नहीं, ये तो करके देखना है कि ये चीज क्या होती है।
1: विभा जी और वैशाली जी, वायुसेना से आप हैं, तो आपने हमेशा बादलों के बीच उड़ान भरी है, लेकिन इस बार समुद्र के बीच लहरों के साथ आपको सफर करना था। तो वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो हलचल रही मन में जब आपको पता चला?
3: तो एक नॉर्मल डे की बात है, हम ऑफिस में बैठे हैं, ये सिग्नल आता है कि सेलिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 सर्विसेज से लिया जा रहा है। पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए। रही बात भाई एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलिंग कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी के साथ, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताना चाहूंगी

0: कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है. और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है.
1: जी, और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ. प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया, या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
2: एक्चुअली ये जो एक्सपेडिशन है इसकी प्रेपरेशंस 3 साल 4 साल पहले स्टार्ट हुई हैं. तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपेडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश. तो इनिशियली इट वाज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस. तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे
1: ऑफिसर
2: साथ थे और हम 42 टोटल थे फ्रॉम

0: एक अग्निवीर हमारे साथ थे और हम 42 टोटली थे फ्रॉम ऑल थ्री सर्विसेज, जिन्होंने थ्री फेजेस ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कंप्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था, बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए। तो लिट एक्चुअली बिकॉज इट इज़ अ मैसिव थिंग, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो अराउंड द वर्ल्ड, तो इनिशियल फियर तो रहता ही है।
1: आपसे जाना चाहूंगी विभा जी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
2: देखिए, अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी, हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था। इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक, शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो। तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है, वो काफी हद तक हमारे काम आई, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत कॉमन होती है। लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई। जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह 5 बजे उठते थे और 1.5 घंटे तक भागना, दौड़ना, रस्सी चढ़ना, पुशअप, पुलअप, मतलब हर बॉडी की एक एक मसल को इतना स्ट्रांग बनाया गया कि जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना आए। फिर दूसरा, ट्रेनिंग को इतना कठिन इसलिए किया गया बिकॉज समुद्र में आप खुद हो, आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। फिर रही बात, हम सब में से किसी को सेलिंग आती नहीं थी, तो इसका मतलब हमें बोट क्या होती है, कैसे चलाते हैं, हवा को कैसे पढ़ते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, समुद्र में अगर दूसरे शिप्स हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये एक एक चीज हमें पढ़ाई गई। और उसके बाद टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ टीम आप वहां पे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हुई।
1: जी स्क्वाड्रन लीडर वैशाली, आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो दी गई और थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिव दी गई इसमें, लेकिन जो सबसे जरूरी होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि आप कई बार आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है शायद दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, तो कुछ ऐसा अलग रहा आपको, तो मेंटल ट्रेनिंग भी फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से काम आई आपके एक्सपेडिशन में?
3: Being from a defense background or wearing a uniform itself, be it army, navy or air force, mentally strong होने की हमें already training दी जाती है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ काम आई। थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि endurance और stamina की महीनों महीनों तक कुछ ना दिखना, कोई color ना दिखना, कोई पक्षी ना दिखना, इंसान ना दिखना, और महीनों बाद कोई एक शिप भी दिख जाती है तो उसमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने एक शिप देखी, और उसकी बात पूरे 1-1.5 दिन तक करते रहना कि आज हमने रेड कलर की एक शिप देखी करके।

0: क्योंकि जैसे अब आप फिजिकल ट्रेनिंग भी, मेंटल ट्रेनिंग भी, फिर भी उसको सस्टेन करना और अपने एक ना आत्मविश्वास बनाए रखना, नहीं हम कर लेंगे। तो ऐसे भी कुछ पल आए उस समय जब आप एक्सपेडिशन पर थी?
1: ऐसा नहीं था कि हम हर रोज जब उठ रहे हैं कि हम मोटिवेटेड फील करें कि आज तो भाई एकदम जोश में है हम, ऐसा नहीं था। बहुत सारे दिन थे जब हम इतने टायर्ड थे, रात रात तक हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, अगले दिन इतना फटीग है हम में। एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन, इनफैक्ट पहले भी, बिफोर फ्लैग ऑफ हुआ हमारा, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब हमें लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं। बट बिकॉज 9 लोगों का एक ही मिशन था, एक ही गोल था, सो दैट यू नो मोटिवेट्स यू। इवन अगर आप एक दिन, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, तो आई नो कि बाकी हैं हु विल लिफ्ट मी अप।
0: टीम वर्क काम आई इस पूरे एक्सपेडिशन में। विंग कमांडर विभा जी, जैसे उन्होंने कहा कि वैशाली जी ने कि शिप एक दिख जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, और हम सभी के जहन में ये है कि आप लोग एक शिप में गए हैं, बहुत आरामदायक थी जिसमें सभी सुविधाएं थी। तो क्या वाकई में ऐसा था या आपको और भी कई इसको लेकर भी, उठने जागने सोने को लेकर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
2: जनरली हम फोर्सेस में हैं तो हमारे पास खाना खाने के लिए एक मेस होती है, हमें एक अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो

0: जैसे जब मेरे घर वालों पूछते थे कि अच्छा आज मेस में क्या बना है, अगर शिप में भी एक मेस होती है, डाइनिंग हॉल होता है जहाँ आप खाते हो, तो मैंने कहा मेस नहीं है हमारे पास सिर्फ एक खड़े होने की जगह होती है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुक अच्छा खाना बनाता है, हमने कहा कोई कुक नहीं होता है। हमारा लिविंग एरिया था एक 50 फीट लंबी बोट और 15 फीट चौड़ी, इसी में हमारी पूरी दुनिया थी। और धीरे धीरे जब हम उस बोट में रहे तो हमको ये भी इतना लंबा लगता था कि अरे वाह हमारे पास कितनी ज्यादा जगह है। और अगर दिनचर्या की बात करेंगे तो वो जो बोट है वो बहुत छोटी है, तो जब समुद्र की लहरें या विंड होता है तो बोट कभी सीधी नहीं चलती है। तो उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक दिन बताइए, तो उसमें सोना खाना पीना जागना कुछ भी एक जो नॉर्मल इंसान करता है वैसा नहीं होता है। एक तो समुद्र में वैसे ही आपकी बॉडी के रिएक्शंस बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज कंडीशंस बहुत हार्श होती है, और उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो खराब हो उसके हिसाब से खाना बनता था। धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है, और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं ना जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे रह के सीखा।
1: जैसे खाने के बारे में आपने बताया, आप लोग तीनों अलग अलग कोने से हैं, तो सबका जो उसका जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था?
0: फॉर्चुनेटली हमारी बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसा नहीं कि खाना बनाना चाहता है, वो उनका पैशन था। तो यहाँ पे जो ये प्राजक्ता जी बैठी है, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा। तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा आज क्या बनेगा। प्राजक्ता जी ने बोट में समुद्र में हालत खराब है, सबको सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियां लग रही है, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी और हम
1: दिन
0: आपको
1: बन गया
0: दिन महीने बन गए।
1: ये है, मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं तो जैसे सी सिकनेस की बात की, तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली जी किस तरह से उसको आपने हैंडल किया? तो कोई वहां पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान?
2: हमने मेडिकल वाइज जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, मोस्टली इट इज विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो सी सिकनेस है, फीवर है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हैं उसमें जो तबीयत खराब होती है, और इट इज योर मंथली साइकिल। दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड, एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी एक क्रू मेंबर, एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है हु इज ट्रेन ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो बिसाइड्स वो सेलिंग तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना। वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था, वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं। शी यूज टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है। प्लस थैंक गॉड ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए।
1: तो आप कुल 9 लोग थे, मेजर प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था? क्योंकि आपको 24 घंटे रात दिन काम करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था?
3: तो बोट पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे, उसमें से एक मतलब एवरी डे देर वॉज अ मदर ऑफ द बोट, तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे। बाकी जो 5 बचे उनमें से 2 ऑफिसर्स, मतलब दो दो ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी, तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी। एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे कि आई एम स्पेशलाइज इन समथिंग और मैम इज स्पेशलाइज इन समथिंग, वी ऑल नो एवरी थिंग। तो हमको सब चीज में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हम सबको सब आता है। तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था, इट वॉज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए।
1: तो दिस वॉज द बेस्ट पार्ट कि सबको सब कुछ
3: सब
1: मालूम
3: कुछ
1: था ताकि
3: हाँ
1: किसी तरह की दिक्कत ना आए।
3: यस
1: तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था तो आप किन किन जगहों से गुजरी, कहाँ कहाँ से गए आप?
0: देखिए जब हम सरकम नेविगेशन की बात करते हैं तो सरकम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं। उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था। तो हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पे हमें केप लुइन क्रॉस करना था। ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमेंटल, फिर फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल लिटिलटन न्यूजीलैंड में। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉर्म में फंस गए और हमारा सेल फट गया, और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे। तो तो लकीली हमने पास में एक आइलैंड था तस्मानिया करके, वहां पे हमने हॉल्ट लिया, वो

0: अनप्लान था, बट वहाँ पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया और फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरिस, क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है। उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरिस पहुंचे अर्जेंटीना में, फिर वहां से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। केप टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा थर्ड ग्रेट केप होता है जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए। तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर मुंबई पे आके खत्म हुआ।
1: विभा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने दो बार इक्वेटर को पार किया, सदर एक बार सदर्न हेमिस्फेयर, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही होंगी आपने, बहुत ह्यूमिड भी, गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा। तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया और मन में क्या दुखदुखी चल रही थी?
0: अभी भी जैसे हम आए हैं, कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो एक साल सेलिंग करके आ गए, बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है। हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने इतने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं हुआ। हमने जब इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था, लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम दो दो लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना जब हम सदर्न हेमिस्फेयर में गए थे, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे, और अब वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, सेम नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज। जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे। और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री की हवा जब आप पे लगेगी 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे। अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे, मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए। एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगी, हमारा सेल फट गया था, तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था। चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैन्युअली वो चेंज करनी थी, और हुक्स हमने जब ग्लव्स से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था 3 ग्लव्स से। हमने अपने ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन्न, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन्न हो जाए। और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है, तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं। तो हमने फाइनली फिर हाथों में पैरों में पॉलिथिन पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नंब हो। तो ये वेदर था एक्सट्रीम,
1: मतलब एक तो पानी की लहरें, ठंड और हवा, और उसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए वैशाली जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था?
2: नहीं नहीं उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्तों हफ्तों बारिश हो रही थी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं, अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है, 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड और आप एक गर्म कपड़े में आके, आपको कोई भगवान आके गरम गरम चाय पिला देता है। ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही, बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड, तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है। अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो, तो आप देखोगे क्या? तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें आप जो बचा कुचा दिख रहा है वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो क्योंकि बारिश का पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही है। तो आप मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था।
1: तब मेजर प्राजक्ता, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से बहुत तेज आ रही है तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो

0: इस तरह की भी आपने समस्या देखी?
1: हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज ही करना पड़ता था। तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहाँ पे हमने पहुंचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए बिकॉज हवा ही नहीं है। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते उस ड्यूरेशन
2: में। एक्सट्रीम देखा है हमने, एक्सट्रीम मतलब जीरो हवा भी देखी है। जैसे इन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं, पानी हमको पीछे धकेल के ले गया, और हमने 60 नॉट्स ऑफ विंड मतलब ऑलमोस्ट 100 प्लस किलोमीटर पर आर का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली थी। तो और मतलब एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम सब एकदम पसीना पसीना, और इतनी सर्दी भी देखी है कि हम हमारे हाथ जम गए।
1: ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल दिस थिंग। सदर्न ओशन में जब हम थे, मैम ने जैसे बताया, इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे। आई हैव सर्वड इन थर्ड स्टेज हाई ऑल्टीट्यूड, उधर भी बहुत ठंडी होती है। आई हैव सर्वड इन लद्दाख, वहां पे मैंने ठंड देखी है, बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कम्पेयर टू वॉट वी विटनेस्ड हियर। एंड एक्सट्रीम गर्मी का मैं बताऊं, हमारे लिए पाउडर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे।
0: आप बताएं स्क्वाड्रन लीडर वैशाली की, नाउ वुमेन आर दे आर अनस्टॉपेबल, ठीक है, तो बीइंग अ वुमन व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड?
3: मैं फ्रेंकली ये बताना चाहूंगी, नॉट टू एग्जैजरेट, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसी कोई डिफिकल्टी आई है। जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज हमने करी है। हाँ, अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि अब मैं पीरियड्स में कैसे करूंगी, मुझे एक कंफर्ट जोन चाहिए, और नहीं मुझे नहाना है, अगर इफ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटेलिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटेलिटी, ऑब्वियसली इट बी इट सेलिंग और एनी अदर एक्टिविटी आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हैं, हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल। इट इज जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस टफनेस विच वी से, वो हमने कंटिन्यू रखी।
0: विंग कमांडर, जैसे आप लोग वायुसेना से हैं, आप थल सेना से हैं, तो वहां का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो, एक्सपेडिशन में काम आया हो,
2: अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने हमें काफी हेल्प की, गाइड किया कैसे करना है क्या करना है। इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी। पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोट आई थी वो इंडियन आर्मी की ही थी, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग इनकी होती है, अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया। ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं, तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो कोर वैल्यूज लेके टीम बना के गए थे, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलके इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है।
0: तो जैसे इतनी चैलेंजेस थे इस आपाधापी में, आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मेजर प्राजक्ता? मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है उनकी?
1: हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे, एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फोन था, एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज फ्री ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 GB डेटा होता था, एंड उसमें हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती थी, हमारी ऑल ओके रिपोर्ट या कुछ खराब हो गया उसका रिपोर्टिंग होती थी, एंड प्लस हम उस पर वेदर अपडेट लेते थे अपना। एंड फिर बचा हुआ कुछ टाइम हम अपने हर ऑफिसर को 5-5 मिनट या 10-10 मैक्सिमम मिल जाता था घर पे बात करने के लिए। बट ऐसे भी बहुत बार दिन हुए कि नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, एंड बात नहीं हो पा रही है। तो रहा है, बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे, बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया, बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी। तो इट वॉज बेटर फॉर देम कि वी हैव नॉट गिवन देम अ कॉल।
0: तो आपने विशाली जी, आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ, आपका मन किया मैं बताऊं?
3: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। What happens on the boat stays on the boat.
0: तो strong lady, मतलब ये है नारी शक्ति, आज की नारी है जो अपने एक्सपीरियंस को, अपने साहस को साथ लेते हुए अकेले लड़ना जानती है और अकेले चलना जानती है। टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलते हैं। मतलब आपका पड़ाव भी था, जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं जिसको, 4 देशों में रुका, तो उस दौरान क्या किया गया, कैसा आपको, क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी, तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई?
2: देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्ट्स लिए थे, जैसे हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था,

0: तो उसको मद्देनजर रखते हुए बोट के जो रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिकूप ऑफ द क्रू, ये चीजों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे। अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं, देखिए जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन चार कंट्रीज में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, और वहां पे आप अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपनी लाइफ में फील नहीं किया। जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे, वहां पे जो उनका नेवल बैंड था, उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था, और हम सबकी आंखों में गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि भारत ऑफशोर सेलिंग जैसे इस तरीके के एक्सपीडिशंस में हमारे बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत कल्चर है। तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो, और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया। तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम अपने कंट्री को एज अ विमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनके देश ने भी नहीं की, वो अमेज थे। तो वो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, ये एक लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे।
1: आपने एहसास उस समय फील किया, आप मुझे बता रही है, मतलब आई हैव गूज़बम्प्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे वैशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए दर्द से और कठिनाई से, चुनौतियों का सामना करते हुए, वो
2: नहीं
1: आंसू नहीं है।
2: उसके कभी नहीं।
1: नानी संदेह साहस का, आपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर। आप बताएं मेजर प्राजक्ता, किन किन बातों का ध्यान रखा?
2: सो मेनली हमारा जो वेस्टेज होता था वॉज आप मान लो सैनिटरी वेस्ट वन, एंड मेजरली इट यूज टू बी हमारा फूड या जो भी हम पानी पी रहे हैं। तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी, तो हम उसको क्रश करते थे। अब एंड उसको हम हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे तो हमारे पास चार बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे, क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में। एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे वहां पे हम डिस्पोज ऑफ करते थे।
1: तो ये बहुत बड़ा संदेश है मतलब सभी के लिए। वैशाली जी, 314 दिन लंबा आपका ये एक्सपीडिशन था, तो जरा ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका जो क्षण रहा हो, यादगार क्षण जो आप बताना चाहें।
3: बहुत सारे ऐसे दिन होते थे, वेदर खराब है, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली, वो लगातार चलता रहता था। तो जो जो मिजरी है ना वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट जो बोलते हैं ना कि ना कम है ना ज्यादा है, जो एंजॉय करने लायक वो हवा है वो होती थी। वो मुझे याद है, वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हम एक गाना सुन सके। वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था, और बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर खराब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था। और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा।
1: आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो?
2: हम मैम और मैं दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे, एंड दिस वॉज वेन वी वर कमिंग टू मुंबई फ्रॉम केप टाउन। एंड मॉर्निंग आई थिंक 5:30-6 o'clock की बात है, हमें होराइजन पे सनराइज होता हुआ दिख रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे को आवाज आती है, बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में, और बहुत ही दूर है ये, क्योंकि एकदम शांत है, हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो दूर हमने देखा ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉल्फिन्स, एक लाइन से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछलता उछलता उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले। दे आर प्रोबेबली माइग्रेटिंग, क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है।
1: ब्यूटीफुल
2: एक्सपीरियंस।
1: तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरे हिसाब से ये कि जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है, और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
1: वैशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: लड़के लड़कियां, मैं सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स, किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम, यू एक्सपीरियंस दिस। सो फॉर

0: For all the youngsters, लड़के लड़कियां एवरी वन दे शुड ज्वाइन द फोर्सेज.
1: जी आप क्या कहना चाहेंगे मेजर प्राजक्ता, आपके शब्द?
2: आई वुड लाइक टू से कि सक्सेस कम्स विथ हार्डवर्क, परसिवेरेंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट हैविंग एन ईगो. दिस इज समथिंग विच माई फादर यूज टू टेल मी एंड दिस हैज स्टेड विथ मी बिकॉज आई हैव अ लेटर जो उन्होंने मेरे को दिया था. एंड जब मैंने ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था तो मैंने वो लेटर लेके गई थी एंड दैट इज वॉट kept me going through this entire time.
1: Yes. बहुत ही मतलब अच्छा था आप लोगों का एक्सपीडिशन. आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, उनको भी जो आगे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं. आप तीनों का धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए.
3: थैंक यू वेरी मच.
4: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com.

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के युवाणी के इस अंक में आपसे बातें करेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर और विक्रम, जी हाँ, डॉक्टर विक्रम साराभाई जयंती को लेकर। तो पहले बात कर लेते हैं आपसे आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर। जी हाँ, आज हम सभी जैसा कि जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जो हमारा युवा दिवस है, हमारे स्वामी विवेकानंद का जो जन्म दिवस है यानी कि 12 जनवरी, उसी दिन हम अपना राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। लेकिन बात करें जब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1919 में पहली बार 12 अगस्त सन 2000 को ये दिन मनाया गया था। और बात है कि इससे जुड़े इसमें क्या चीज़ें प्रासंगिकताएं हैं, वो ये कि जो युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं, युवाओं से उनके जो अधिकार हैं युवाओं के और उनके जो कर्तव्य हैं, यानी कि युवाओं से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उसके प्रति सभी को जागरूक करना अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य है। और आज इस वर्ष की जो थीम है वो है अलग परिस्थितियां समान आकांक्षाएं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पायरेंट्स। और आज हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं ये विशेष वार्ता श्वेता कुलश्रेष्ठ से।

जी हाँ, बातें आपसे और भी सुनते हैं ये गीत।

0: अली जी सुनिए, श्वेता कुलश्रेष्ठ से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर ये वार्ता। विभिन्न परिस्थितियां समान आकांक्षाएं।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज 12 अगस्त को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 के इस दिवस के लिए बेहद खूबसूरत और विचारणीय थीम तय की है, जो कि है विभिन्न संदर्भ समान आकांक्षाएं। आज का युवा 21वीं सदी के तीसरे दशक में जी रहा है, तब भी पूरी दुनिया की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल युवा का है। युवावस्था जीवन का वो पड़ाव है जहां आंखों में सपने होते हैं, बाजुओं में ताकत होती है और कुछ नया कर गुजरने का एक अटूट हौसला होता है। लेकिन क्या दुनिया के हर कोने में रहने वाले युवा का जीवन एक जैसा है? इसी सवाल का जवाब देती है इस साल की ये थीम, विभिन्न संदर्भ समान आकांक्षाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विभिन्न संदर्भों की। संदर्भ का सीधा मतलब वह माहौल, वह परिस्थितियां और वह भौगोलिक या सामाजिक दायरा जिसमें युवा सांस लेता है, बड़ा होता है। आज की दुनिया का युवा अगर अमेरिका या यूरोप के किसी आलीशान शहर में बैठकर हाई स्पीड इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज के संसाधनों का आनंद ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका के किसी पिछड़े देश या हमारे देश के किसी दूर दराज के गांव में बैठा रहने वाला युवा आज भी बिजली, साफ पानी और बुनियादी स्कूल की शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ युवा ऐसे भी हैं जो युद्ध और भू राजनीतिक संकट से घिरे इलाकों में रह रहे हैं, जहां उनके सामने करियर बनाने से पहले खुद को जिंदा रखने की चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल विशेष रूप से उन युवाओं की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है जो सबसे कम विकसित देशों में से, चारों तरफ की जमीनों से घिरे विकासशील देशों के और छोटे छोटे द्वीपीय देशों में रह रहे उन लोगों के गरीबी के संदर्भ से है, जहां जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक अलगाव बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का दूसरा और सबसे खूबसूरत पहलू है जिसे हम कहते हैं समान आकांक्षाएं। परिस्थितियों की यह खाई कितनी भी गहरी क्यों ना हो, एक बात जो दुनिया के हर युवा को आपस में जोड़ती है वह उनके अपने सपने। चाहे कोई भी युवा दिल्ली के आधुनिक कॉलेज में पढ़ रहा हो या सूडान के किसी शरणार्थी शिविर में अपना दिन काट रहा हो, दोनों की बुनियादी इच्छाएं बिल्कुल एक जैसी ही होती हैं। एक तरफ राजस्थान के रेगिस्तान में पानी की बूंद बूंद के लिए संघर्ष करता हुआ परिवार है, तो दूसरी तरफ महानगर की गगनचुंबी इमारतों में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर उंगलियां चलाता हुआ एक युवक है। एक तरफ सुदूर ग्रामीण अंचल में दिए की रोशनी में पढ़ता हुआ बालक है, तो दूसरी तरफ डिजिटल बोर्ड वाली वातानुकूल

0: कक्षा में पढ़ता हुआ छात्र है। आर्थिक स्तर, भौगोलिक सीमाएं, सामाजिक संरचनाएं और यहाँ तक कि हमारी अपनी व्यक्तिगत सीमाएं, ये सब मिलकर भी हमारी परिस्थितियों का निर्माण कर सकती हैं। कोई जन्म से ही सुख सुविधाओं के बीच पलता है तो किसी का पूरा जीवन संसाधनों को जुटाने के लिए संघर्ष में ही बीत जाता है। किसी के लिए सफलता का अर्थ कॉरपोरेट की सीढ़ियां चढ़ना होता है तो किसी के लिए सफलता केवल इतनी सी है कि शाम को परिवार के साथ दो वक्त की रोटी का प्रबंध हो जाए। परिस्थितियां निश्चित रूप से हमारे जीवन के रास्तों को आकार देती हैं। आइए अब बात करते हैं सांझी आकांक्षाओं की, जो कि मानवीय चेतना का आधार है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या परिस्थितियां हमारे सपनों की सीमा तय कर सकती हैं? उत्तर है बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरुआत होती है हमारी समान आकांक्षाओं की। परिस्थितियां हमें अलग अलग वर्गों में बांट सकती हैं, लेकिन हमारी आकांक्षाएं एक मानव जाति के रूप में जोड़ती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी आकांक्षाएं हैं जो हम सब में सांझी हैं। सबसे पहली आकांक्षा की बात करें तो सुरक्षा और सम्मान वाला जीवन। चाहे कोई भी किसी भी देश, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो, पर हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन सुरक्षित हो और समाज में उसे सम्मान मिले। एक किसान हो या एक वैज्ञानिक, सभी का आत्मसम्मान की भावना हृदय में एक जैसी ही धड़कती है। दूसरी आकांक्षा है प्रगति और बेहतर भविष्य। कोई भी माता पिता, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, हमेशा यही चाहता है कि उसका बच्चा आने वाले कल में आज से बेहतर जीवन जिए। एक झोपड़ी में रहने वाला पिता अपने बच्चे के लिए जो उम्मीद करता है, वही उम्मीद है एक महल में रहने वाले पिता भी कर सकता है। तीसरी आकांक्षा होती है सफल और आत्मव्यक्ति। हर व्यक्ति के मन में चाहत होती है कि वह कुछ बनकर दिखाए। एक ग्रामीण एथलीट जो नंगे पैर मिट्टी के मैदान में दौड़ता है और एक आधुनिक स्टेडियम में दौड़ने वाला खिलाड़ी, दोनों की ही आंखों में चमकने वाले सोने के तमगे की आकांक्षाएं एक ही होती हैं। तो दोस्तों, इस विचार को समझना केवल एक दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक जीवन का एक व्यवहारिक आधार भी है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की उम्मीदें, उसकी पीड़ा, उसकी सफलता, उसकी चाहत बिल्कुल मेरे जैसी ही है, तो हमारे भीतर सहानुभूति का जन्म होता है। फिर हम एक दूसरे को अलग अलग परिस्थितियों में देखकर उनका आकलन नहीं करते, बल्कि उनकी आकांक्षाओं का भी सम्मान करते हैं। आज की आवश्यकता इस बात की है कि समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां किसी भी व्यक्ति की विषम परिस्थिति उसके समान आकांक्षाओं के आड़े ना आ जाए। जब शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रगति के अवसर हाथ तक पहुंचेंगे, तो हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति की जंजीरों को तोड़कर आकांक्षाओं की उड़ान भर सकेगा। चर्चा के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, परिस्थितियां हवाओं का रुख हो सकती हैं, परिस्थितियां हवाओं का रुख हो सकती हैं, पर आकांक्षाएं हमारे पतवार का हौसला है। हवा चाहे जिस दिशा से आए, पर पतवार यदि मजबूत है तो किश्ती साहिल तक पहुंचेगी ही। युवा केवल कल का भविष्य नहीं है, वो आज के सजग प्रहरी हैं। जब इन युवाओं को, चाहे उनके संदर्भ में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, थोड़ा सा भी अवसर मिलता है तो वो कमाल कर दिखाते हैं। हम आज डिजिटल युग में जी रहे हैं। तकनीकी ने विभिन्न संदर्भों की दूरियों को बहुत हद तक कम किया है। आज इंटरनेट की मदद से एक छोटे से गांव का लड़का या लड़की भी वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज उठा सकते हैं, नई खोजें कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप के जरिए रोजगार के नए साधन खड़े कर सकते हैं। लेकिन इस यात्रा को सफल बनाने के लिए वैश्विक एकजुटता का होना बहुत जरूरी है। यह सरकारों, नीति निर्माताओं और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां किसी भी युवा का सपना सिर्फ इसलिए न टूट जाए क्योंकि उसका जन्म किसी गरीब परिवार में हुआ है या किसी पिछड़े इलाके में हुआ है। जब हम हर युवा की आकांक्षाओं को सम्मान देंगे, तभी संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्य की हकीकत को बना पाएंगे। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम सब संकल्प लें कि अपने आसपास के युवाओं की आवाज सुनेंगे, उनके हुनर को सराहेंगे, उनके सपनों का सम्मान करेंगे और उनका सच में पूरा साथ देंगे। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर श्वेता कुलश्रेष्ठ से ये वार्ता।

विभिन्न परिस्थितियां समान आकांक्षाएं। जी हाँ, आज बात करी हमने आपसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर, सुना गीत और सुनी ये प्यारी सी जानकारी परख, ये वार्ता श्वेता कुलश्रेष्ठ से। और अब कार्यक्रम में आज आपसे बातचीत करते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई जयंती को लेकर। जी हाँ, जब किसी महान व्यक्ति की उसका जन्म होता है या ये उसका जब संसार से जाना होता है, तब हम अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये तो इतना कुछ कर गए अपने क्षेत्र में, अब अगला व्यक्ति कौन होगा। तो इसका उत्तर मिलता है कि भाई आज वो चले गए हैं तो ये भी उसी विधा में हैं। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर विक्रम साराभाई को लेकर, तो महान भौतिक शास्त्री होमी जहांगीर भाभा, वे एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक और भारतीय अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष थे। जब विश्व के कई देश अणुबम बना रहे थे, उस समय यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या भारत को भी उनका अनुकरण करना चाहिए। कुछ लोगों का मत था कि अणुबम बनना चाहिए, अपार धन इसमें लग सकता है, सारी बातें हैं। पर भाभा ने गणित लगाकर बताया कि बहुत खर्चे की बात नहीं, भारत भी बम निर्मित कर सकता है। परंतु इसके लिए इस महान वैज्ञानिक 1966 में उनका जो विमान दुर्घटना में उनका देहांत हुआ, तो उनके पश्चात कि अब कौन करेगा, तो इस तरह से डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उस चीज़ को कह सकते हैं कि जो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके वो जनक रहे। और उन्होंने चीज़ों को काफ़ी उस तरह से करा जिसमें राष्ट्र का हित था और चीज़ें थी। आज बात करेंगे आपसे डॉक्टर विक्रम साराभाई को लेकर, और भी ये गीत और इस गीत की जो पंक्तियां हैं वो अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के जो छुपे रहस्य हैं उसमें कहीं ना कहीं एक दृष्टि डालती हैं। आइए सुनते हैं इस गीत को।

जी हाँ, 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में जन्मे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जो योगदान दिया वो अविस्मरणीय रहेगा। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोस 1940 में 1947 की उन्होंने ये पढ़ाई पूरी करी और आपने उस दौर में भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करी। आपको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त अनुराग पांडे को। नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: थोड़ी देर में आप सुनेंगे देश दुनिया की खबरें हिंदी समाचारों में, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार,
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारी राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगुन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के दो मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी चार मॉड्यूल पूरे किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य

0: उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धति अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों तथा सेवाओं को वैश्विक बाजार में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
1: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 6:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। कार्यक्रम के अंतर्गत आज कवि दाऊ दयाल शर्मा से ब्रज काव्य सुधा क्रम में आप सुनेंगे काव्य पाठ। भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन सुना जा सकेगा संध्या 6:30 पर।

साढ़े 6:50 पर आप सुनेंगे किसान भाई और बहन अपना कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण, हमारा फोन इन कार्यक्रम। आज का विषय उद्यान की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य एवं उचित देखभाल। आज के विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह। संध्या 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित करेंगे। संसद समीक्षा का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। शाम सुहाने, जी हाँ, श्रोता सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम शाम सुहाने में संध्या 7:31 पर हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9419225575, 9419425575। फिल्म संगीत का आनंद एक बार फिर से लेंगे श्रोता रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:15 पर सुहाने तराने कार्यक्रम के अंतर्गत। चर्चा का विषय है, जी हाँ, रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय, जैसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, आप सुनेंगे इनसे बांसुरी पर बजाया राग मालकोस। तो ये था विवरण हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। किसान भाइयों, इस बुधवार यानी कि आज 12 अगस्त को सदस्य

9:50 से आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम में आज का विषय है उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य एवं उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, पूर्व प्राचार्य डीन राजकीय कृषि महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। किसान भाइयों, नए बागों की स्थापना, फलदार एवं सब्जी वाले पौधों में समसामयिक कृषि कार्य, जल निकासी एवं पौध संरक्षण उपायों के बारे में जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135, जी हाँ 0565-2530-135 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412225575, मोबाइल नंबर एक बार फिर से 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय रहेगा 6:50। सूचना समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देशगान FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं ब्रज काव्य सुधा क्रम में कवि दाऊ दयाल शर्मा से मां महारथी से ये काव्य पाठ।
5: देश के संदर्भ में एक गीत प्रस्तुत करूं, भाव

और आजादी की नायकन को प्रणाम करते भाई एक कविता और सुनाऊं। कूट कूट भरी थी, कूट कूट भरी थी देश प्रेम देशभक्ति, कूट कूट भरी थी देश प्रेम देशभक्ति, देश की आजादी को मानो दीवानी थी। कूट कूट भरी थी देश प्रेम देशभक्ति, देश की आजादी की मानो दीवानी थी। और लेके घोड़ा रणभूमि में कूद पड़ी, लेके घोड़ा रणभूमि में कूद पड़ी, धधक उठी ज्वाला तलवार खेच तानी थी। और मातृभूमि के लिए पैदा भये वीर योद्धा, मातृभूमि के लिए पैदा भये वीर योद्धा, देश की आजादी की ठान जिनने ठानी थी। और बैरी घबराए फूले पाम रणबीच, बैरी घबराए फूले पाम रणबीच, मामा वीरता में भरी झांसी की रानी थी, मामा वीरता में भरी झांसी की रानी थी। बैरी भारत छोड़ो टिक ना सकोगे आप, बैरी भारत छोड़ो टिक ना सकोगे आप, देशभक्तन ने बैरियों को मन ते ललकारो है। पांडे की हुंकार शेखर सुभाष बोस, पांडे की हुंकार शेखर सुभाष बोस, अहिंसा के नायक को विरोध हु न्यारो है। कांप गए गोरे वीरन की एकता सो, देश देश प्रेमीन को आखन को तारो है। आजादी मिली उत्सव मनायो मामा, आजादी मिली उत्सव मनायो मामा, झूम उठे देश प्रेमी देश ये हमारो है, झूम उठे देश प्रेमी देश ये हमारो है। एकता अखंडता को खंडित जो बैरी करें, एकता अखंडता को खंडित जो बैरी करें, ऐसे देश द्रोहिन को खेच खेच मारेंगे। एकता अखंडता को खंडित जो बैरी करें, ऐसे देश द्रोहिन को खेच खेच

0: मेट मारेंगे और सैनिक भारत के वीरता से भरे खूब देश की आजादी को मिल के संवारेंगे। भारत के प्रहरी सीमा पे ठाड़े आज, भारत के प्रहरी सीमा पे ठाड़े आज, बैरिन सो जंग में कबू नाय हारेंगे। खड़े हैं चट्टानों पे हिले ना डरे कबहू, अपनी पे आए गए तो चीर चीर डारेंगे, अपनी पे आए गए तो चीर चीर डारेंगे। प्रलंकर तूफान में हूँ सीना तान खड़े वीर, प्रलंकर तूफान में हूँ सीना तान खड़े वीर, काल को डरनाए हिम्मत विशेष की, और देश है हमारो प्राणन ते प्यारो मित्र, देश है हमारो प्राणन ते प्यारो मित्र, इज्जत है देश में देश के नरेश की। बर्फीली चट्टानों पे सीना तान तान खड़े, भय मुक्त सैनिक हैं डर ना रेस की। कर्म भूमि कर्म नायक करने चले हैं कर्म, एक ही चिंता है मामा निज देश की। भारत की भूमि विश्व में महान है जो, वीरतासों भरी जे काहू सोना हारती। भारत की भूमि विश्व में महान है जो, वीरतासों भरी जे काहू सोना हारती। आदर्श गुणों ते शोभित धरा है खूब, अपने स्वरूप को सदा जे समारती। मानवता से परिपूर्ण एकता को सूत्र जाने। बैरिन पे सिंह की भांत जे दहारती। और सैनिकों की फौज भारत सपूत मानो। मामा जिनकी उतारे माँ आरती। हिमगिर किरीट धार गंगा जमुना सिंगार, मलेड उराय ब्यार शांत परवाटी है। सागर पखारे पाम खेल करें धूप छाम, और बीचा बीच ब्रज धाम धन्य दान घाटी है। दर्शक हैं सूर्य चंद दशव दिशा आनंद, फूल हंसे मंद मंद विष्णु ब्याज काटी है। राम कृष्ण गांधी शेखर सुभाष जनन, मामा जे पावन देश की माटी है।
1: पावन ये देश की माटी है। भैया अभी आपने सुनो ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज काव्य सुधा क्रम में कवि दाऊद दयाल शर्मा पेते जे मामा हाथरसी पेते जे काव्य पाठ, और यही के साथ आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: लीजिए सुनिए कार्यक्रम संध्या वंदन।
1: ओम जटाग्न विक्कल जलम प्रवाह भावितस कले कले बलम बलम विताम्बुजम कतुंग मालिका डमक डमक डमक बिना डमरवय चकार चंड तांडवम नमो शिव शिव शिव शिव।

कार्यक्रम संध्या वंदन में लीजिए सुनिए सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और साथियों को फिल्म अब तुम्हारे हवाले। वतन साथियों, गीत समीर का, संगीत अनु मलिक का।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और साथियों को फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी हाँ, गीत समीर का, संगीत अनु मलिक का था। और आइए सुने कार्यक्रम का ये अगला गीत अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में, महिमा काशीवासी की, और गीत पंडित किरण मिश्रा का, संगीत राम शंकर का।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों को फिल्म महिमा काशी विश्वनाथ की में। इसी के साथ आज का भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। किसान भाइयों, आज संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण। आज का विषय है उद्यान की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य एवं उचित देखभाल।

इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, पूर्व प्राचार्य एवं डीन राजकीय कृषि महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। किसान भाइयों, नए बागों की स्थापना, फलदार एवं सब्जी वाले पौधों में समसामयिक कृषि कार्य, जल निकासी एवं पौध संरक्षण उपायों के बारे में जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565253015 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर से 0565253015 और व्हाट्सएप नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर आप अपने प्रश्नों का समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम संध्या 6:50 पर प्रसारित किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

0: गुणवत्ता बनी रहे है और बाजार में बेहतर मूल्य मिल सके है। तुड़ाई के बाद छटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और उचित भंडारण पर ध्यान देवे ते फसल को नुकसान कम करो जा सके। अंततः हम कह सके हैं भैयाओं की उद्यानिकी फसलन में समय पर करे गए कृषि कार्य, संतुलित पोषण, उचित सिंचाई, कीट रोगन से सुरक्षा और सही समय पर तुड़ाई किसानों की सफलता की कुंजी है। अगर किसान मौसम के अनुरूप कृषि वैज्ञानिकन की सलाह अपनाते भय फसल की नियमित देखभाल करें तो उत्पादन के संग संग फसल की गुणवत्ता और आमदनी में वृद्धि करी जा सके है। तो भैया आज की जो हमारी चर्चा है आप या विषय को सुन के समझ गए होंगे कि उद्यानिकी फसलन पे आज को हमारा हेलो ब्रिज ग्रामीण कार्यक्रम आधारित है। आपकी जो भी समस्या है घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से समाधान पा सको हो 25 30 135 हमारा फ़ोन नंबर है और मथुरा ते बाहर के श्रोता 0565 कोड लगाए के अपनी समस्याओं को समाधान पा सके हैं। उद्यानिकी फसलन में समसामयिक कृषि कार्य और उचित देखभाल ये विषय है आज के हेलो ब्रजगमन जो हमारा हेलो ब्रजगमन कार्यक्रम में वाको विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उदय भान सिंह। तो भैया हमारी फ़ोन लाइन खुल चुकी है, आपकी जो भी समस्या है आप तुरंत डायल करें 25 30 135 और पामें अपनी समस्याओं को समाधान।
1: हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सब किसान भैया बहनन को दी टीप यादव की राम राम। और किसान भैया जैसे कि नीलमणि ने बताया कि आज को जो हमारा विषय है औद्यानिकी फसलों में सामयिक कृषि कार्य एवं उचित देखभाल ये विषय है और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उदय।

0: सिंह महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर भरतपुर। किशन भैया फ़ोन नंबर आपको मालूम ही है, 0565-25-30-135। उद्यानिकी की फसलन पर आधारित आपको कोई सवाल है तो आप हमें तुरंत फ़ोन कर सके हैं और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब आपको समाधान बताएंगे। तो डॉक्टर साहब शुरुआत करें कि उद्यानिकी की फसलन में जो सामयिक कार्य हैं, उद्यानिकी की फसल कौन कौन सी इस समय है और उनमें कौन से सामयिक कार्य की आवश्यकता है किसान भैया को करने की।
1: ये देखिए, सही टॉपिक आपने रखा है। इस समय वर्षा ऋतु चल रही है और सबसे बड़ा काम तो हमें नए बगीचे जिसको लगाने हैं
0: जी
1: वो एक बहुत बड़ा काम है। वर्षा ऋतु बगीचे लगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कद्दू वर्गीय सब्जियां लगी हुई हैं, चौला है, ग्वार है, भिंडी है, ये तमाम सब्जियां लगी हुई हैं। अभी मूली बोने का टाइम है, गाजर बोने का टाइम है। तो ये वर्षा ऋतु हमारा उद्यानिकी के लिए एक स्वर्ण ऋतु, अच्छी अमृत काल माना जाता है। इसलिए किसान भाइयों को इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं।
0: जी एक भैया लाइन पे जुड़े। हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हेलो ब्रज ग्रामीण।
2: हाँ नमस्कार सर, मैं पत्रकार राजू कश्यप बात कर रहा हूँ गोवर्धन से,
0: जी
2: नगला खुटिया।
0: जी राजू भाई, क्या सवाल है आपको?
2: मैं ये कह रहा हूँ, अक्सर हमारे यहाँ सिंघाड़े की खेती होती है तो
0: जी
2: उसमें क्या है, समय वो पत्ते काटने वाला रोग लग जाता है
0: जी
2: तो काफी उससे नुकसान होता है, उसके बारे में डॉक्टर साहब कुछ सलाह दें तो बहुत अच्छा रहे हमारे सिंघाड़े
1: देखो,
2: बोने
1: ये
2: वाले किसानों के
1: पत्ते
2: लिए।
1: काटने वाला रोग नहीं होकर कीड़ा होता है
2: जी
1: ये। और ये जो है, तालाबों में जहाँ पानी होते हैं वहाँ पे सिंघाड़े की खेती होती है।
2: हाँ जी
1: तो ये क्या है, पानी है बहुत ज़्यादा है इसलिए उसको, लेकिन फिर भी यदि आप इमीडा क्लोपरेट 17.8 SL, आधा ML पर लीटर पानी या फिर रोगोर का छिड़काव कर देंगे तो उसकी रोकथाम हो जाएगी। ध्यान रखें कि वर्षा होने के, मतलब छिड़काव करने के कम से कम 4-5 घंटे तक, 8 घंटे तक बारिश ना हो, और यदि आप ये कर देंगे तो इसकी रोकथाम हो जाएगी।
2: जी डॉक्टर, कोई स्पेशल कोई दवाई या कुछ
1: ये
2: ऐसा
1: दवाई
2: करना।
1: बता रहा था मैं, इमीडा क्लोपिड, इमीडा नाम से मिल जाएगी बाजार में, इमीडा क्लोपिड 17.8 SL, आधा मिलीलीटर पर लीटर पानी, या फिर रोगोर दवाई हो जो कि 1 से 1.5 ML पर लीटर पानी का छिड़काव आप कर सकते हैं।
2: हाँ बहुत धन्यवाद
1: हाँ जी,
2: डॉक्टर।
1: हाँ जी।
0: तो डॉक्टर साहब देखो, सिंघाड़े की जो खेती है, क्योंकि तालाब में सिंघाड़े होएं, और वैसे तो देखो सिंघाड़े की खेती जो परंपरागत तरीके से खेती करते चले आ रहे हैं, विशेष वर्ग के लोग हैं जिन्हें मालूम है, और वो दवा को छिड़काव भी करें बुरकाव भी करें, सब चीज़ उन्हें मालूम है कौन से समय पर
1: ना
0: सिंघाड़े।
1: नहीं, वो अपने
0: हाँ
1: परंपरागत ट्रेंड है वो
0: जी, वो
1: तो,
0: काई भी जो
1: और
0: एजोला जो आ जाए, बहू को भी
1: बाव को
0: निकालें बांस
1: निकालें।
0: लगा लगा
1: हाँ
0: के,
1: जी, हाँ जी,
0: सरकंडी लगा लगा
1: बिल्कुल
0: के,
1: बिल्कुल।
0: तो वो ट्रेडिशनली ट्रेंड होए, और दवाई तो कीटनाशक जितनी है सब जानकारी उन्हें हो ये, लेकिन आपने जैसे इमीडा क्लोरोपिड को नाम लिया कि ये दवाई भी प्रयोग में लाई जा सके और या से अपना जो कीट प्रभाव है वह गुरु को जा सके। हालांकि सिंघाड़े में या समय फल लगने की स्थिति ना है, तो फल अगर लगे तो बात समय पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन सी दवाई
1: जहाँ वो उसका
0: लगा में।
1: रेजिडुअल इफेक्ट नहीं आए।
0: हाँ जी, तो
1: तो मैं ये कह रहा था कि
0: जी
1: वर्षा ऋतु में अमृत काल भी है और समस्याएं भी हैं। एक समस्या तो है, खरपतवार बहुत होते हैं, और खरपतवारों में ज़्यादा अच्छा उपाय है कि हम खुरपी से या व्हील हो से उनको निकालें,
0: जी
1: क्योंकि जो बीडीसाइड हैं उनके पर्यावरण पर और उनके ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट हैं। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आजकल पेट्रोल चालित, ट्रैक्टर चालित हो आ रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा कर देते हैं। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो उसमें खरपतवार नियंत्रित तो होता ही है, दूसरा उसमें जमीन में वायु का आवागमन उसकी खुल जाती है
0: जी
1: गुड़ाई करने से। तो वो भी जो है, इवन रिजल्ट ये हैं कि दवाई से यदि हम खरपतवार नियंत्रित करते हैं उसकी बजाय खुरपी से यदि नियंत्रित करें तो 15% से 20% उपज में भी इजाफा होता है। दूसरा क्या है कि पानी भराव की समस्या होती है, यदि स्टेकिंग नहीं की हुई है तो फल, जैसे टमाटर का फल है कि लौकी का फल है, तो उसमें जो है निश्चित रूप से फल की क्वालिटी खराब हो जाती है।
0: जी
1: इसलिए हमें टमाटर जैसे या जो थोड़ी बेल वाले से होते हैं,

0: कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए तो हमें मचान बना करके उनको चढ़ाना चाहिए, तो फल भी ज़्यादा लगते हैं और अच्छी क्वालिटी के फल लगते हैं। और पानी का भराव, सब्जियां बड़ी सेंसिटिव होती है पानी के भराव के लिए,
1: जी
0: तो पानी के निकास की भी हमें उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इस समय हम जो है सब्जियों में जैसे भिंडी है, उसमें पीतसरा रोग लगने की काफ़ी संभावना रहती है, जिसको येलो वेन मोज़ेक वायरस कहते हैं। तो ये भी वायरस की बीमारी है, तो कीड़ों से ही फैलता है। इसमें हमें उचित दवाई का छिड़काव करते रहना चाहिए, इंसेक्टिसाइड, जैसे कि मैंने इमीडाक्लोपेट बताया, तो उससे रस चूसने वाले जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं। और एक और दूसरा, जो स्वस्थ पौधे को बचाने के लिए जो रोगी पौधे, उनको उखाड़ के कहीं नष्ट कर दें, गाड़ दें।
1: जी
0: तो इस तरह से कुछ सावधानी भी होती है। तीसरा ये रहा कि भाई मैंने बताया कि सबसे अच्छा जो प्लांटेशन होता है वो जो है वर्षा ऋतु में ही होता है, और अगस्त का महीना, जुलाई अगस्त का महीना मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में माना जाता है।
1: जी
0: तो जिन किसानों ने कोई बाग लगाना है, नहीं लगाए हैं अभी तक, तो वो उचित दूरी पे सही गड्ढे खोदते हुए और उन बगीचों को जरूर लगा दें।
1: जी
0: ये
1: तो निश्चित रूप से बगीचा लगानी चाहिए। एक भैया लाइन पे हैं। हेलो हेलो,
2: हाँ सर नमस्कार।
1: राम राम जी, कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
2: सर लखीमपुर से बात कर रहे हैं, ओमकार राज।
1: जी
2: सर हम ये पूछ रहे थे कि हर साल गन्ना सूख जाता है, सर कोई दवाई बताओ।
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
2: लखीमपुर
1: लखीमपुर खीरी।
2: जी,
1: जी जी
0: इनका क्वेश्चन क्या है?
1: हर साल गन्ना की फसल लगावे लेकिन वो सूख जाए, तो सूखने को कारण कहाँ नजर आवे आपको? कीड़ा आवे, हमें फफूंदी आवे, कैसे सूखे?
2: ये सूरी जाते सूरी,
1: हाँ,
2: उसके बाद सूख जाता है।
1: मतलब ऊपर से सूखे एकदम किनोर पे से सूखना शुरू हो गन्ना आपको, के नीचे से
2: नीचे
1: जड़ से सूखो शुरू हो? देखो
0: उसमें वाइट ग्रब लग सकती है, वैसे हालांकि गन्ना हमारी फसल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मेलाथियोन 5% या क्यूनोल फॉस 1.5% दवाई आती है। तो जब आप गन्ना लगाओ उस समय 25 किलो प्रति हेक्टर क्यूनोल फॉस 1.5% पाउडर डाल करके आप करोगे, तो निश्चित रूप से जो जमीन के कीड़े हैं या दीमक है या वाइट ग्रब है, तो उनका निश्चित रूप से रोकथाम हो सकती है। और बाद में जब फसल लग जाए तो क्लोरोपायरीफॉस दवाई आती है 20 EC, तो वो भी करीब 4 लीटर पर हेक्टेयर, उसमें जैसे किसी राख में या किसी मिट्टी में मिला करके और उसको छिड़क दें, उसके बाद पानी दे दें, तो वो दवाई जड़ों तक पहुंच जाएगी और ज़मीन में जो भी कीड़े हैं वो उसमें मर जाएंगे। फिर भी आपको और विशेषज्ञ से पूछने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि गन्ना मेरा विषय नहीं है।
1: तो लखीमपुर खीरी के मैं जो कृषि विज्ञान केंद्र है, ये अपने जिला मुख्यालय पे कृषि विज्ञान केंद्र में वहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो ये निश्चित रूप से अगर इन्हें और अच्छी जानकारी चाहिए तो वहाँ जा सके हैं। और क्योंकि देखो जैसे हम लोग यहाँ से बैठे बैठे देख रहे हैं कि भाई कीट प्रभाव की बात डॉक्टर साहब ने बताई कि अगर कीड़ा से संबंधित समस्या है तो वह को समाधान है सके, लेकिन फफूंदी जनित अगर आपकी ज़मीन में फफूंदी की संख्या है और बाकी वजह से वो गन्ना सूख रहा है तो वह
0: देखो
1: को समाधान।
0: फफूंदी के लिए वैसे वो ट्राइकोडर्मा एक देसी उपाय है
1: जी
0: कि भाई हम करीब 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा ले लें, 50-60 किलो।
1: लेकिन डॉक्टर साहब देखो सरकारी जो व्यवस्था है, ट्राइकोडर्मा हमारे यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर में ट्राइकोडर्मा 3-3 महीना गोदाम में पड़ा होगा,
0: वो नहीं, ताज़ा होना
1: तो
0: चाहिए।
1: ताजा को कैसे किसाने कैसे मालूम
0: नहीं
1: पड़े ताजा
0: ताज़ा
1: है।
0: एक्चुअल में जैसे यहाँ तो पता नहीं है, हमारे भरतपुर में मलिकपुर पे ताज़ा बनता है वो,
1: जी
0: और यहाँ पे भी कोई लैब है तो ताज़ा एकदम वहाँ से मिल जाएगा, बड़ा सस्ता है, 100 रुपये किलो है और बड़ा कारगर है। सॉइल जो डिजीज हैं,
1: जी
0: चाहे वो बिल्ट है चाहे वो रॉट है, इनके लिए ट्राइकोडर्मा विशेष प्रभावी है, यानी अंग्रेजी दवाइयों से जो केमिकल हैं उनसे भी अच्छा ये काम करता है
1: जी
0: ट्राइकोडर्मा।
1: एक भैया और लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: हेलो।
1: ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
2: हाँ जी सर नमस्कार जी, मैं महेश बोल रहा हूँ जखनगाम से। अरे
1: जी महेश जी, क्या सवाल है आपको?
2: जी सर, हमारे नौरे पे हम रहते हैं, यहाँ पर हमारा वो है तेल पेड़ लगाए हुए हमने।

0: जी देसी है कि कलमी है?
1: नहीं, दे इलाहाबादी वैसे हैं, बढ़िया वाले हैं।
0: अच्छा जी, कितने पौधा है?
1: पौधा है मेरे 6-7 पेड़ हैं जी।
0: अच्छा, इनको थालो बना रखो है आपने पेड़न को नीचे गोलाई में?
1: हाँ जी, बन रहा है जी। खाद
0: अच्छा, खाद पानी दे या मैं गोबर को साल 6 महीना में?
1: पानी, गोबर का खाद डालता हूँ।
0: जी, आप
1: और
0: समस्या का है?
1: जैसे फूल आता है, इसमें से फूल झड़ जाता है।
2: ये दिलीप जी सही पूछ रहे थे,
0: जी
2: किसी भी फलदार पौधे का फल गिरने का सबसे प्रमुख कारण है कि उस पौधे में कमजोरी है, यानी वो पौधे में इतनी ताकत नहीं है कि वो फलों को सहन कर सके,
0: बना
2: उनको
0: सके
2: पोषण
0: जी।
2: दे सके। तो एक तो ये इन्होंने सही कहा, थाला बना रखा है, यानी कि इसमें अमरूद में एक चीज़ और है कि 3 बार फूल आता है।
0: जी
2: अंबे बहार में फरवरी मार्च में फूल आता है और वर्षा ऋतु में फल लगता है, वो यहाँ के लिए रिकमेंडेड नहीं है, उसकी क्वालिटी खराब होती है,
0: जी
2: पनीला हो जाता है, फल मक्खी ज़्यादा लगती है, सड़ जाता है। दूसरा फूल जुलाई अगस्त में आता है, वो सॉरी जून जुलाई में आता है, और वो जो है सर्दी में लगता है, वो अच्छा माना जाता है।
0: जी
2: तो उस समय आयु के हिसाब से, जैसे आपका पौधा पांच कितने साल का है आपका पौधा? कैसा?
1: पौधा 4 साल हो गया
2: चार
1: है।
2: साल का है, तो कम से कम 40 किलो गोबर की खाद बाहर के हिसाब से फूल लगने से, जैसे मई जून के महीने में, और उसमें करीब 800 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 150-200 ग्राम पोटास और 100 ग्राम जो है यूरिया हमको देना चाहिए। और फिर
1: अच्छा,
2: आधा यूरिया जब आपका पौधा में फल बन जाए उसके बाद देना चाहिए। तो ये तो पोषण की बात रही, और यदि इसके बावजूद भी फल गिर रहा है तो फल फूल लगते समय में प्लानोफिक्स का आधा ML पर लीटर पानी मिला करके छिड़काव करेंगे तो फल नहीं गिरेगा। लेकिन सबसे प्रमुख बात इसमें पोषण ही है, यदि उचित मात्रा में। एक यह है कि बाहर ट्रीटमेंट भी करना चाहिए, जैसे अब सब ऋतुओं के फल आप ले रहे हैं तो उसकी एनर्जी, उसका पोषण डाइवर्ट हो जाता है,
0: जी भैया और
2: तो
0: लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो
2: गर्मी में जो है हमें निश्चित रूप से उसका फल गिरा देना चाहिए।
0: हेलो हेलो जी, किसान भैया से हमारा संपर्क कट
2: हाँ,
0: गया।
2: वो पहले वाले का बताऊं, बाहर ट्रीटमेंट, बाहर ट्रीटमेंट जरूरी है। बाहर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि कोई भी, जैसे हमको एक एक फसल लेनी है
0: जी
2: तो एक फसल को गिराना है, और जिसमें गर्मी में जो फूल आ रहा है तो उस खेत की जुताई कर दें ताकि, और पानी देना बंद कर दें, और मान लो कि उस दौरान बारिश हो जाए तो फिर यूरिया का जो है करीब 6-7% घोल का छिड़काव कर दें, या फिर साइकोसेल एक दवाई आती है
0: जी
2: उसका करीब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके छिड़काव कर देंगे तो फल गिर जाते हैं और अगली फसल बहुत अच्छी आती है फिर,
0: जी
2: क्यों पोषण एक तरफ डाइवर्ट होता है उसका पूरा।
0: जी तो कुल मिला के ये है कि हमें कौन सी फसल लेनी है, कौन से सीजन की फसल लेनी
2: ये भी
0: है।
2: डिसाइडेड है, ये
0: बिल्कुल
2: हमको जो फायदेमंद है वो सर्दी वाली फसल है,
0: जी,
2: मृग भार की फसल है,
0: हमें रोग भी कम
2: रोग भी
0: आएंगे।
2: कम आते हैं, टेस्ट भी अच्छा होता है,
0: जी
2: और इसमें रोग भी आते हैं और पनीला टेस्ट हो जाता है,
0: जी स्वाद अच्छा ना रहे।
2: स्वाद अच्छा नहीं होता।
0: लेकिन चूंकि यहाँ दिल्ली के आसपास के लोग बहुत आवे लगे हैं, और उनके आवे के चलते यहाँ अमरूद की कीमत बहुत अच्छी मिलने लगी है, 60 रुपये 70 रुपये, तो लोग यहाँ बरसात के सीजन की भले ही पीले पीले से फल हो लेकिन
2: वो
0: बिके।
2: सही कम होता है, लेकिन उसमें फिर विशेष सावधानी के साथ हम जैसे दवाइयों का छिड़काव उचित करें और फिर उस फसल को नहीं लें, भले उसका ट्रीटमेंट करें फिर हम,
0: जी
2: तो ये तो विशेष ट्रीटमेंट के साथ में भाव अच्छा मिलता है तो ले सकते हैं हम, ऐसा नहीं, वो तो नेचर तो दे ही रही है,
0: जी
2: लेकिन उसके लिए फिर निश्चित रूप से एक विशेष सावधानियों की और जरूरत होती है,
0: जी
2: ले सकते हैं हम।
0: तो किसान भैया, एक और भैया हमारे संग लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो
1: हेलो किसान भाई,
0: जी, हेलो, ब्रज
1: हेलो,
0: ग्रामीण कार्यक्रम में स्वागत है आपको, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, मैं सुरेश शर्मा बोल रहा हूँ सार से। एक
0: जी शर्मा जी,
1: हमारे काफी फल की बेल है सर,
0: जी
1: उसमें फूल आ जाते हैं, झड़ जाते हैं, फल नहीं आता है।
0: एक
1: देखो
0: एक ही
1: ये
0: बेल है?
1: है,
0: नहीं, एक ही बेल है कि?
1: 2-3 दिन है।
2: हाँ चलो कोई नहीं, इसमें क्या है कि मोनोसियस कहते हैं, एक ही बेल में नर और मादा फूल अलग अलग लगते हैं,
0: जी
2: यदि नर फूलों की संख्या ज्यादा है तो फल बनेगा ही नहीं।
0: बिल्कुल
2: तो एक तो यह है कि जब वो 5-6 गांठ की बेल हो जाए
0: जी,
2: उस समय उसके आगे के टिप को तोड़ दो,
0: आगे की कल्लाएं तोड़ दी।
2: कल्ला को तोड़ दो, तो
0: जी
2: उस

0: से फिर फीमेलनेस बढ़ेगी। दूसरा क्या है, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा मत दो,
1: यूरिया की जरूरत ना है।
0: यूरिया की जरूरत कम होती है इस ऋतु में विशेषतः।
1: जी जी
0: और जैसे वर्षा कम हो रही है मान लो, टेम्परेचर ज्यादा है,
1: जी
0: तो भी इसमें मेलनेस यानी नर फूलों की संख्या ज्यादा बढ़ती है। और ये निश्चित आप चिंता मत करिए, 10-15 दिन इंतजार करिए, खूब आपके काशीफल आएंगे,
1: जी
0: बस इंतजार कर लो थोड़ा सा।
1: जी तो डॉक्टर साहब देखो, किसान बहन के सवाल, एक और भैया लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, किसान भैया की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर एक भैया लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो ब्रज ग्रामीण।
2: हेलो।
1: हाँ ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार सर।
1: राम राम जी।
2: मैं सर जोड़ावाई गांव से बोल रहा हूँ, फरे के पास।
1: हाँ हाँ फरे के पास है ये, जोड़ावाई। कौन सा बोल रहे हैं?
2: हाँ जी साहब जी, दो नीम के पेड़ है भारी गजब के।
1: नाम ना बताया आपने। आए
2: मेरा नाम हवलदार ज्ञान सिंह है, फौजी आदमी हूँ साहब मैं।
1: जी जी तो ये जबर से नीम के पेड़
2: हटका के हाँ। नीम है सर, एक पेड़ पल्ले साइड का जो अटका है, आपकी साइड का मथुरा में हूँ, तो पेड़ में से पत्ता रोजीना जड़ जड़ के बिल्कुल डंडा जैसा हो गया।
1: अच्छा।
2: और साहब मैं तो उसी पेड़ के नीचे बड़े काट रहा हूँ।
1: तो ये पेड़ के आसपास पानी तो ना भर रहो?
2: पानी तो सर दूरी पे पानी तो भरा हुआ है, लेकिन वो तो हमारे प्लॉट में है, वो तो बाउंड्री के अंदर है सर पेड़ तो।
1: नहीं कितनी दूरी पे है पानी पेड़
2: से? वो तो पानी कम से कम सर 10-15 फुट दूरी पे धान के खेत में भरा हुआ है।
1: धान के खेत में भरा हुआ है। तो देखो, एक तो डॉक्टर साहब समझ पा रहे हैं कि पानी जो है ना, क्योंकि नीम की जड़ बहुत लंबी जाए, आप 10-15 फुट की बात कर रहे हो, तो ये पहली बार हुआ होगा, पहले भी या पौधा में ऐसी समस्या?
2: जी किसी ने कहीं नजर लग गई है तो वो टोटका उखड़ लिए।
0: ना नजर ना लगी, नजर ना लगी आप तो फिर उसमें
2: अंदर घुसता है सर, ये मार्केट के अंदर ही है तो दुकानों के पीछे मकान बना हुआ है, तो कोई अंदर आता है तो वो कहता है साहब हवलदार जी बहुत गजब के पेड़ है आपके, तो बड़े आनंद लूट रहे, तो मैंने नजर का भी इंतजाम कर लिया, पर पत्ता झड़ना बंद नहीं हो रहा है।
0: नहीं नज़र का इंजाम तो चलो बढ़िया किया आपने, अपने हिसाब से आपकी परंपरा है, बाकी उसे आप ऐसा करो कि उसमें जो है थोड़ा सा उसका थाला बना दो जितना फैला हुआ है, और उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद सड़ी हुई, कच्ची मत डाल देना, कच्ची डाल दोगे तो और ज़्यादा सड़ जाए, और ज़्यादा पत्ती गिर जाएंगी उसकी।
2: अच्छा,
0: यानी सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, नहीं सड़ी हुई हो तो पर बर्मी कंपोस्ट डाल दो करीब 10-12 किलो, और उसके बर्मी कंपोस्ट यानी कि यदि गोबर की खाद सड़ी हुई नहीं होगी, केंचुआ की खाद, तो कच्ची खाद डालने से आपकी पत्तियां और ज्यादा गिरेंगी।
2: अच्छा,
0: उसमें बर्मी कंपोस्ट डाल दो, और फिर उसमें जो है एक दवाई आती है क्लोरोपाइरीफॉस,
2: क्लोरो
0: या फिर क्यूनोरफॉस पाउडर डाल दो आप, तो करीब उसमें 100 ग्राम पूरे थाले में क्लोरोपाइरीफॉस का पाउडर डाल के उसको मिट्टी में मिला देना, या फिर क्लोरोपाइरीफॉस एक दवाई वैसी लिक्विड भी आती है 20 cc, उसका भी करीब 50-60 ml और किसी धूल मिट्टी में मिला करके उसको पूरे थल मिला करके पानी दे देना, तो काफ़ी हद तक रोकथाम होगी। बाकी दिलीप जी कह रहे हैं कि पानी के भराव से भी पौधे में प्रभाव पड़ता है।
2: जी मुझे किसी ने बताया था कि आप 2-2.5 किलो और ये खड़े होती है ना पशुओं की,
0: वो फायदा करेगी, जो बताया सही बताया, नीम पशु की खल के बजाय आप नीम की खल डालोगे ना कहीं मिल जाए तो, वो खल का भी काम करेगी और रोग से हटाने का भी काम करेगी।
2: वही बताया?
0: नहीं नहीं सही बताया है वो, बिल्कुल आप इसका भी उपयोग कर सकते हो, वो फायदा करेगा, पर नीम की खल ज्यादा फायदा करेगी।
1: तो डॉक्टर साहब देखो, जल प्लावित जो क्षेत्र हैं उनमें, क्योंकि
0: ये समस्या है,
1: हाँ नीम की जड़ बहुत लंबी जाए 20-20 मीटर तक चली जाए, 10 फुट दूर ही पानी बता रहे हैं प्लॉट में पानी भरा हो, तो निश्चित रूप से वहाँ को प्रभाव तो आवे
0: आवे आवे।
1: और रही बात पोषण की, के चौपाल में नोहरे में इन पेड़ पौधों को हम लगा में, तो पोषण को तो कोई सवाल
0: नहीं। मैं बताऊँ, मैंने इसको बताया, बाकी क्या है कि जैसे पशुओं को बांध देते हैं
1: जी,
0: और वो हार्ड हो जाती है जमीन
1: जी,
0: और फिर वर्षा ऋतु में जो है नीचे से पानी आ रहा, ऊपर से हार्ड है, तो उसमें जो एरेशन होता है, जड़ भी सांस लेती है
1: बिल्कुल,
0: तो पौधों को उचित एरेशन या वायु का संचरण नहीं होता है, तो भी पौधा सूखता है
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये कई कारण हैं, लेकिन हमने तो जो सबसे इजी आसानी से हो सकता है वो उपाय इनको बता दिया है
1: जी। अब बहुत से लोग तो पक्को ही करते हैं बिल्कुल पेड़ के चारों तरफ,
0: तो वो जो है निश्चित रूप से पौधे के लिए नुकसानदायक होता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब भी तो एक फिर लाइन पे जोड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, कार्यक्रम में स्वागत है।
3: हेलो।

0: जी
1: सर नमस्ते सर,
0: राम राम जी
1: मैं योगेश कुमार बोल रहा हूँ सातवीं आश्रम से।
0: जी योगेश जी,
1: अमरुद का बाग है हमारा चला दीजा,
0: सो
1: बहुत
0: वेरी गुड
1: बढ़िया
0: जी।
1: ठीक
0: कौन
1: है। उसमें आप जो बता रहे थे फूल झड़ने वाली दवा का नाम बताइए दोबारा।
0: दवा का नाम? ये तो पोषण आपने सुन लिया होगा, और फिर प्लानोफिक्स दवाई बताई है मैंने।
1: ओके सर, ओके सर, यही पूछ रहा था।
0: प्लानोफिक्स आधा ML पर लीटर पानी, लेकिन
1: ठीक है सर,
0: प्लानोफिक्स अकेले से नहीं रुकेगा,
1: अच्छा
0: उसको पोषण भी चाहिए। जैसे गाय भी मान लो तो जाती है,
1: जी
0: इसका
1: सर,
0: मतलब उसमें कमजोरी है। पहला काम यह करना कि उसको उचित पोषण जो मैंने बताया था उसमें खाद उर्वरकों की मात्रा प्रॉपर दें, और बाहर ट्रीटमेंट जरूर करें।
1: अच्छा सर,
0: बाहर उपचार जो मैंने बताया था कि भाई गर्मियों के फल को नहीं लेना चाहते हैं आप, कोई एक बार अंबे बार या मृग बार में से कोई एक बार चुन लें आप।
1: जी सर,
0: सर्दी के फल लेना चाहते हैं, बरसात के

0: और अंबे बार या मृग बार में से कोई एक बार चुन लें आप।
1: जी सर।
0: सर्दी के फल लेना चाहते हैं, बरसात के फल लेना चाहते हैं?
1: सर्दी के सर।
0: तो सर्दी के लेना चाहते हैं तो गर्मी में जुताई करके डाल दें और उसमें फल को नहीं लगने दें, मतलब
1: ओके सर।
0: उसका उपचार कर दें।
2: जी ये भैया हाथरस के हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे फल लगवे की बात है, अब जैसे इन्हें बताई 14 बीघे को बाग है, 14 बीघे के बाग में इन्हें गर्मी को फल रोकनो है, तो वो रोकवे के कौन से तौर तरीका है? क्योंकि
0: रोकने का तो सीधा सीधा पानी दो, खाद दो।
2: अच्छा,
0: जैसे दिसंबर के महीने में खाद दे दो। कोई भी एक थंब रूल है हमारा
2: जी जी
0: कि फलदार बगीचों में फूल आने के 2 महीने पहले जो गोबर की खाद की पूरी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमको 2 महीने पहले देते हैं
2: जी।
0: जैसे आप सर्दियों की फसल लेना चाहते हैं, बरसात की फसल लेना चाहते हैं तो फूल आएगा फरवरी मार्च में, तो दिसंबर जनवरी के महीने में दे दो और पानी देते रहो, खूब फल आएगा
2: जी।
0: वो तो सीधा सीधा उपाय, नॉर्मल जो कल्चरल प्रैक्टिस हैं, जो उसके क्रियाकलाप हैं उनको करते रहो
2: जी,
0: तो फल रुकेगा, निश्चित रूप से रुकेगा
2: जी।
0: ये है।
2: एक भैया और लाइन पे जुड़ रहे। हेलो हेलो
3: हेलो
2: जी, कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
3: हम विपिन कुमार बोल रहे, गांव चौधरी जी।
2: हाँ जी विपिन जी, बहुत धन्यवाद फोन किया, कहाँ चले गए? बिल्कुल कार्यक्रम बुधवार को 6:50 जी, बताओ कहाँ सवाल है आज?
3: हम जी पूछना चाह रहे हैं कि जैसे पौधा की लंबाई बढ़ा देगा का उपाय करना चाहिए?
0: देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका
2: जी।
0: लंबाई बढ़ावे को एक तो साइड की शाखा ने हटाते जाओ, बाकी एनर्जी को डाइवर्ट करना, यानी कि एक तो जैसे लंबाई ना बढ़ने तो ऊपर से काट दो तो बाकी साइड की ब्रांच आएंगी, और नीचे ते 5-6 महीना में 5-6 महीने एक एक शाखा काटते रहो, एकदम मत काट देना, एकदम काट देगा तो फिर पौधा कमजोर होकर सूख भी सकता है। लेकिन जब 8-10 शाखा आ जाए तो नीचे की एक शाखा काटते रहो तो अपने आप ऊपर बढ़ते रहेगा। वो सीधा सीधा उपाय, इसको कहते हैं ट्रेनिंग, पौधे की ट्रेनिंग
2: जी,
0: जिसको हम कहते हैं सेंट्रल लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर। सेंट्रल लीडर सिस्टम बनाना है तो उसकी उचित ट्रेनिंग करनी पड़ेगी फिर पौधे की।
2: हाँ, क्योंकि पौधा भी क्योंकि प्रकाश
0: नीचे की एक एक शाखा को धीरे धीरे हटाते रहो तो ऊपर बढ़ता रहेगा।
2: प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वह को खुराक चाहिए, एकदम शाखा ने काट देंगे तो वह खुराक ही नहीं मिल पाएगी।
0: हाँ, तो सभी शाखा नहीं, धीरे धीरे, ये बड़ी बड़ी धैर्य की काम है, मतलब थोड़ा सा।
2: तो अक्षर देखो, किसान भैया के काफ़ी फ़ोन आए और कई तरह के सवाल उन्होंने किए, निश्चित रूप से हमारे किसान भैया के जो जवाब हैं वो संतुष्ट भय होंगे। अगले कार्यक्रम में फिर नए विषय और विशेषज्ञ के संग आप सबसे होगी मुलाकात।
4: हाँ दिलीप भैया, आपने बिल्कुल सही कही, देखो लगातार फ़ोन आ रहे हैं, समस्या बहुत है, पर क्योंकि हमें समय को भी ध्यान रखना है, उद्यानिकी फसलन में समसामयिक कृषि कार्य पर आधारित तो हमारा आज को हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम, विशेषज्ञ है डॉक्टर उदय भान सिंह, और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को दें विराम। सब बहन भैया को राम राम
0: राम राम राम।

किसान भाई और बहनें सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम में नीलमणि शर्मा दिलीप यादव के साथ आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर उदय भान सिंह। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी। चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को बायो एनर्जी राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर को मिला 1st स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया पुरस्कृत। और प्रदेश में कल से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के व्यवस्था संचालन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभव का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम 3 नाम की सूची तैयार करेगी, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: कल से शुरू हुई प्रक्रिया के दौरान 18 आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय चयन समिति ने कल पहले दिन करीब 10 आवेदकों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें रिटायर आईएएस अधिकारी दिनेश चंद्र, रिटायर आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे भी शामिल रहे। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभवों का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम 3 नाम की सूची तैयार करेगी। ये नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे, जिस अंतिम फैसला ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
5: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को बायो एनर्जी की राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो के दूसरे दिन आज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाही ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते प्रदेश में 17 मिलियन टन कृषि अपशिष्ट की क्षमता है, जो ऊर्जा परिवर्तन और नए निवेश का सबसे बड़ा आधार बनेगी।
7: देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक इथेनॉल पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और अगले दिनों में, जैसा आज ही आपके अपने प्रेजेंटेशन में आया, कि कंप्रेस्ड बायोगैस में भी हम देश में सर्वाधिक उत्पादन कर, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की तस्वीर है।
5: कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा भी शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 8 सितंबर से लगातार 3 दिन करने का निर्णय लिया है। जस्टिस एवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने कहा कि अभ्यर्थी लंबे समय से दुविधा की स्थिति में हैं, उनके भविष्य को लंबे समय तक अधर में नहीं रखा जा सकता। कल मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि वह इस मामले से जुड़ी सूची तैयार करें, जिसमें यह सुनिश्चित हो कि किन किन पक्षों को इस मामले पर सुना जाना है।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें पीएमसूर्यघर.gov.in पर।

0: लोकसभा ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक विचार विमर्श के लिए विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रैंकिंग में गोरखपुर जिले का बांसगांव विकास खंड नंबर 1 चुना गया है। यह जानकारी नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में दी गई है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए गोरखपुर को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी मिली है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का जोर समावेशी विकास के जरिए नागरिकों के जीवन में सुगमता और गुणवत्ता की वृद्धि और समग्र रूप में जीवन स्तर के सुधार पर होता है। इसके अंतर्गत 5 थीम स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत ढांचा और सामाजिक विकास के कुल 39 संकेतकों पर संबंधित आकांक्षी ब्लॉकों का मूल्यांकन किया जाता है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत प्रदेश के कई जिलों में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में लखनऊ में महापौर सुषमा खरकवाल के नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम मुख्यालय से गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल ने साइकिल रैली का आयोजन किया। वहीं बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, संभल, अमरोहा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के मन में राष्ट्रीयता और एकता की भावना को मजबूत करना है।
1: तिरंगा यात्रा आज जो पूरे प्रदेश में देश में निकाली जा रही है, ये हमारे उन तमाम जो जिनकी बलिदानी हुई है स्वतंत्रता सेनानियों की याद में उनको नमन का दिन है। और ये तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है बल्कि एकता, समृद्धि और विकास, 140 करोड़ लोगों का संबल है।
0: हापुड़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को 2.5 लाख झंडे बनाने का लक्ष्य दिया गया है। गांव अनवरपुर के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हेमलता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अभियान के लिए आभार जताया है।
2: हमारे SSG अधिकारियों ने हमें 10,000 झंडे का टारगेट दिया था बनाने के लिए, हमने वो लक्ष्य पूरा किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ कार्य करने को मिला महिलाओं के लिए। और पहले गांव में महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, हम SSG से जुड़े तो हमें बाहर जाने का अवसर मिला और हम बहुत खुश हैं इस चीज।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राज्यपाल ने युवाओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।
3: नशा किसी भी युवक की शक्ति नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। यह व्यक्ति से उसका विवेक, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, परिवार का विश्वास और जीवन का उद्देश्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र की युवा शक्ति को सुरक्षित रखने का जन आंदोलन है।
0: 16वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए उत्तर प्रदेश की महिला हॉकी टीम का चयन कर लिया गया है। टीम का कप्तान वंदना पटेल को बनाया गया है। प्रदेश में कल से एक बार फिर मॉनसून सक्रिय होगा, जिससे 18 अगस्त तक राज्य में व्यापक बारिश की संभावना है। उधर पहाड़ों पर लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण फरुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। जिलाधिकारी अंकुर लाठर ने बताया कि प्रशासन ने सभी इंतजाम किए हैं।
4: दिलीप की मड़ैया में कटान की शिकायत थी तो वहाँ कटान हुआ था, 25 जो मकान है वो भी बह गए थे, तो उन सभी को राहत धनराशि भी दी जा रही है 1,20,000 और उन लोगों को पट्टा भी दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है।

0: क्योंकि गांव में बच्चे हैं, स्कूल से बिल्कुल संपर्क मार्ग टूट गया है, तो कल से वहीं पे टीचर्स जाके बच्चों को पढ़ाएंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी। चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को बायो एनर्जी राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर को मिला पहला स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया पुरस्कृत। और प्रदेश में कल से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शाम सुहानी। आप भी सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा। करें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9419225575। 9412225575।

आप जुड़े अपने व्हाट्सएप संदेश के साथ में श्रोता साथी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बिरड़ी से नाना लाम से मीना ताम से और हर्षिता लाम से का ये संदेश मिला। अगला संदेश है आपका हरमन शिंदे संगीता ऋषिकेश और वसुंधरा का शिरडे जिला सांगली से आपने ये मैसेज भेजा। हरियाणा जज्जर से बिट्टू भाटिया रीटा रजत और मयंक भाटिया का संदेश। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार डैनी मनीष पवार संदेश के साथ में आप उत्तम नगर नई दिल्ली से हैं। ये सभी श्रोता साथी कार्यक्रम में हैं मानसी गौरव अनिल कविता ये सभी सुधी श्रोता कार्यक्रम में सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका गव्या सुच्चा और विनोदपुरी जयपाल यादव अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से संदेश भेजते हैं। मैसेज आपका भी मिला। नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़ विकास गायकवाड़ प्रीति गायकवाड़ आशा दीपांजलि दीक्षा बागमारे शशांक वाघ मरेगा संदेश मिला। अगले संदेश के साथ में गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ मंजुला राठौड़ विशाल और निशा मैसेज के साथ में जलगांव जंक्शन से दिनेश काले वंदना काले आदेश प्रोफेसर वसुधा वज्र सेन मैसेज के साथ में डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्बू अंसारी और सोनम अदीबा बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी और आसमा खातून अंसारी का ये मैसेज मिला। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब अब्दुल हक डावर और जियाउल हक का ये मैसेज मिला है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता भी जुड़े कार्यक्रम में। मैसेज के साथ में है सुधी श्रोता ततरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र और मणि वर्मा सैयद आलम हाशमी गुलनाज सलमा असद

और आइए सुनते हैं सुधि श्रोताओं की पसंद पर ये नगमा, जिसे लिया फिल्म बहू बेगम से, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत रोशन का, और आवाज़ दे रहे हैं गीत को लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथी। फिल्म बहू बेगम से ये गीत।

जी हाँ, ये गीत सुना अभी आपने, साहिर लुधियानवी का गीत, संगीत रोशन का, आवाजें लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की, फिल्म बहू बिगम के इस गीत का लिया आनंद। और लेते हैं श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश।

इस गीत की फरमाइश हम तक भेजी ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह नगला राणा सिहुरा से, शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा से, अशोक जसवत आनंदलोक कॉलोनी से, सूरज पाल चौधरी, राजू लवानिया खंदौली आगरा से, यादराम उसवार से, राधेलाल सारस्वत सिहुरा से हम तक ये संदेश भेजते हैं। और अगले संदेश के साथ में है सुधी श्रोता मैसेज के साथ में आप जुड़े कार्यक्रम में चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार पटवा, विनीति कुमारी कृष्टि, दरदई सरगांव छत्तीसगढ़ के। अगले संदेश के साथ में जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, चाचा चाची इनके, ये सभी फूल चिंचोली पंढरपुर से मैसेज भेजते हैं। आप भी जुड़े कार्यक्रम में दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, डब्बू और बब्बू का ये मैसेज मिला। आप जुड़े कार्यक्रम में कलानौर से नरेंद्र, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, मुकेश गोस्वामी, मधु आशी गोस्वामी, शिवन्या और अनु गोस्वामी, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मैसेज, मुल्डाना वर्ण शिंगी महाराष्ट्र से, अमोन मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली, श्लोक कुमार बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से, सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमित कुमार। एक और मैसेज के साथ मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम कुमारी, आरती कुमारी का भी मैसेज मिला। मैसेज में गणेशपुर गणेश डुडावारा एटा से एम फारूक शेख, शेख शमा, परवीन, साहिमा, सरफराज, गुलफराज, बीबी मुस्कान, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेश और रेखा धनेश्वरी, ये सभी बठेना पाटल जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज भेजते हैं। पद्मा टॉकीज नेपिया नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन का ये मैसेज मिला। आपने भी संदेश भेजा, जाहिद अली, मोहम्मद साजिद अली, मोहम्मद शाहिद ने ये सभी मधुबनी बिहार से ये हम तक मैसेज। आप जुड़े कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सनिका, पुनावाले पुणे से अजय सोनमनी, करिश्मातिका, विशाखा का मैसेज मिला। एक और संदेश के साथ में प्रकाश रमाणे, भारती रमाणे, जानवी और वैष्णवी, काशी निवासी बंगाली पंजा नागपुर से ये मैसेज भेजते हैं। राजेश कुमार वर्मा, पीती कार्तिक, आर्यन वर्मा, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस, मंगनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हम तक मैसेज ये पहुंचा। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, मोहन कांगले, जिगांव विदर्भ से वसंत राव भोजने, पीएस नवानकर और नारायण इंगली का भी मैसेज। भिलाई छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं मुकेश शर्मा, गौरव गर्मा, कार्यक्रम है आप भी जुड़े। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर आई, मेहराज जहां का ये मैसेज मिला हमको कार्यक्रम में और आपने लिया आनंद। शाहू नगर यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल और बेबी प्रियांशी, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम, अक्षय का संदेश, बठिंडा रोड मंडी डबाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी नारंग, तानिया, शेख रेडियो श्रोता से है भोईवाड़ा पैठण से शेख चांद, नुमान, अदनान और जाकिया बाजी, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम कुमार, प्रमिला, चीनू और दीपक, अनुश्री, सोंगा मगर लोड धमतरी से छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन साहब।

आप भी जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में। कल्याण मुंबई से किशोर इवराले, सुजाता प्रतीक, भारत भूषण अंजू, दिवेशु संस्कृति पौरुष, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षता गोश्री गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश ट्विंकल, मीनाक्षी तुलसी और दिशा नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण और कपिल का भी संदेश मिला, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित और पीयूष कुमार जुड़े कार्यक्रम में। आप जुड़े कार्यक्रम में अलका श्रोता साथियों ने हीरामन शेंडे, शीला शेंडे, सिद्धार्थ गुंडाने, किशोर नगर अमरावती से ये मैसेज हम तक मिला, अजय सोनवणी, करिश्मा विकास, आयशा कोयते वस्ती पुनावले से। लीजिए सुनते हैं श्रोता साथियों की पसंद पर ये गीत, फिल्म जीने की राह से ये नगमा, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज है इस गीत में मोहम्मद रफी और साथियों की।

जुड़े हैं और भी श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से। गांव गोपी की नगरिया से मिट्टनलाल सरस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा। गांव नगला पोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन और भोला, डुग्गू और इनके परिवारीजन। गांव नौधरा से कोमल मास्टर, यशोदा, सूरज, रोहित, चंचल, अंजना और इनके मम्मी पापा। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, अमित, शिवांश, शिवांशी, चुन्ना और इनके परिवारी जन। अगले संदेश के साथ में जुड़े हैं आप भी। प्रकाश नगर मथुरा से नियमित श्रोता खड़क सिंह छौकर एडवोकेट का ये मैसेज मिला। आप भी जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में। कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़ और बेगम अफजल, ये रामगढ़ कैंट झारखंड से हम तक। नागपुर महाराष्ट्र से निप्पी साहनी और सुनीता साहिनी का मैसेज। अगले संदेश के साथ में जुड़े हैं आप। राजुर तहसील मोताला महाराष्ट्र से राज गवई और राजवीर गवई, सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव, डाबकी रोड अकोला से ये मैसेज। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी, कल्पित और बेबी गर्वी भी जुड़े एक और संदेश के साथ में। ये मैसेज हमको शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने भेजा। मैसेज के साथ रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, देवाश्री, वर्षा, सुमन जुड़े हैं कार्यक्रम में अपने मैसेज के साथ में।

और आपका मैसेज कार्यक्रम में फजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा विशु विशाल लाड़ी शालिनी खेड़ा टिवांशी मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति और भूमिका पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से मैसेज के साथ में सुधीर नूतन किरण ठाकुर ये सभी मॉडल टाउन करनाल से मैसेज भेजते हैं। गांव दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप शीतल सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तंडी लक्ष सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान ये सभी परिवारीजन ऊपरकोट बुलंदर शहर से नियमित श्रोता। एक और संदेश के साथ में हैं जुड़े बेगम आशियन खान हादिया सदाफ ये सभी सईद भाई सूफियान अनस अहजा पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से ये मैसेज। जयराम सिंगणकर वार्ड नंबर एक पुफाली जिला यवतमाल से दिशांत और सूरज अर्पिता। मैसेज के साथ में जुड़े हैं आप नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालगढ़ वर्मा प्रवीण मनीष राहुल शर्मा पांडु चंदन उषा रानी प्रतीक्षा अभिषेक कुमार गली कारीगांव से विनोदपुरी वीपीपुरी रंजू अशोकपुरी सुशील बीकेपुरी कैलाश नीलम मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से ये मैसेज हम तक। और आप भी जुड़े मोहम्मद कलीम जख्मी भुवन प्रकाश गौतम डॉक्टर जमीरुल हसन शबनम अनवार नजमा बेगम भावी सरिता गौतम का रेलवे रोड गंजवारा से ये मैसेज। डुमेंद्र नेताम गंगेश्वरी नेताम चंचल और कामेश माहिर मुंड मुटोला डोडीलोहारा छत्तीसगढ़ से ये मैसेज। एक और मैसेज के साथ में रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से सुनीता शिंदे प्रशांत यशराज और कृष्णा। अगला मैसेज गोकुल चौक गंजगला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे विद्यार्थी राकेश रंजन राजीव संजय कुमार ओम कुमार कुमकुम साक्षी श्वेता रंजन आनंद ये सभी अच्छे लाल ने मैसेज भेजा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा अनिल जयवीर अमनदीप।

मीनू मरावी, लता मरावी, अनुराग और अभिनव मरावी का भी संदेश मिला और मैसेज के साथ में जुड़े हैं आप एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हौदा कार्यक्रम में।

कार्यक्रम में जुड़े सुधी श्रोता हैं मैसेज के साथ में। आपने संदेश भेजा लातूर से संगीता जैन, सूरज और पीआर जैन जुड़े कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम में जुड़े राजेंद्र कुमार, मलकीत, आरती, राघव हरमन, गांव उवाला, जिला अम्बाला से ये सुधी श्रोता। और आपका पीएस नवान का, निर्मला, विशाल, नारायण, सोपान, आशीष का भी संदेश मिला, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से ये सुधी श्रोता। कार्यक्रम में मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा भी जुड़े, और सागर लखनऊ दौर मध्य प्रदेश से लाडली जी चौबे, लाडली रिमझिम सक्षम चौबे का मैसेज, माँ कौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से ये सभी, सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी और ये सभी बहनें जुड़ी। एक और मैसेज के साथ में सुधी श्रोता जुड़े आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी और सौरभ साइना नेवान का संदेश मिला। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा मैसेज के साथ में। जलगांव जंक्शन से दिनेश काली, वंदना, आदेश

0: थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी है, अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सोलता देव, डीएमके सदस्य के आर एन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, डॉक्टर एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि ये कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राय, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसीएम सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार पी, आईयूएमएल के हारिस बीरन, यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी और डीएमके सदस्य एल के सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान

के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार-बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हों। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थीं। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और एफसीआरए विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को

निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने FCRA विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि यह सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। DMK नेता TR बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। RSP के NK प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके की इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है। विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं। 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृह मंत्री इस पर जवाब दें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देश गान FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आज की फिल्म ब्रज भूमि।

अभी आपने सुना रविंद्र जैन और साथियों को फिल्म ब्रज भूमि में। आइए सुनते हैं चंद्राणी मुखर्जी के स्वर में फिल्म ब्रज भूमि से ये अगला गीत, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

चंद्रानी मुखर्जी और सुशील कुमार को अभी आपने सुना फिल्म ब्रज भूमि में, और आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल को इस अगले गीत में। गीत संगीत रविंद्र जैन का,

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल को फिल्म ब्रजभूमि में, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। इसके साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब संपन्न होता है। आज की फिल्म थी ब्रजभूमि। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
3: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं

0: पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
2: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
3: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में

0: युवा शामिल हुए।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहाँ पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को पुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good night.
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुहाने तराने। कार्यक्रम का गीत फिल्म पुकार से, आवाज राहुल देव वर्मन और आशा भोसले की।

अभी आप सुन रहे थे राहुल देवर्मन आशा भोसले को फिल्म पुकार में। और ये सुनते हैं राहुल देवर्मन और साथियों को जमाने को दिखाना है गीत मजी सुल्तानपुरी का, संगीत राहुल देवर्मन का।

ज़माने को दिखलाएंगे। अभी आपने सुना राहुल देव वर्मन को इस गीत में। आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल को फिल्म जहर में, गीत सईद कादरी का, संगीत रूप कुमार राठौड़ का।

अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को फिल्म जहर में। गीत साहिद कादरी का, संगीत रूप कुमार राठौड़ का था। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुहाने तराने अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार। जब किसी शहर की एक गली में वर्कशॉप का शटर उठता है, जब किसी गांव में एक छोटा कारखाना शुरू होता है, तो सिर्फ मशीनें नहीं चलती, देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चलती है। देश की

0: जीडीपी में 30% से अधिक की हिस्सेदारी और करोड़ों हाथों को रोजगार देने में एमएसएमई सेक्टर का कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या हो जब एक छोटा उद्यमी काम करने के बाद अपनी मेहनत के पैसे के लिए वर्षों इंतजार करे? क्या हो जब उसे कानूनी दांवपेच या कागजी कार्रवाई में लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़े? इन्हीं अड़चनों को जड़ से समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। क्या है इसके प्रावधान, या फिर यूं कहें कि क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा और एमएसएमई सेक्टर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं एमएसएमई मंत्रालय में सचिव भरत खेड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: नमस्कार।
0: यहीं से शुरुआत करते हैं। 2006 में एमएसएमई एक्ट बना, 20 वर्ष यानी 2 दशक बीत गए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि 20 वर्षों के बाद अमेंडमेंट बिल की जरूरत क्यों पड़ी?
1: आनंद जी, 2006 में जैसे आपने बताया, सबसे पहले ये एक्ट बना था एमएसएमई क्षेत्र के लिए, और इन 20 वर्षों में कई ऐसे चेंजेस आए जिसके लिए ये आवश्यक हो गया था कि हम इस एक्ट में संशोधन करें। और 20 वर्षों बाद जब संशोधन होता है तो वो बड़ा स्वाभाविक है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किए जाते हैं, और इस पीरियड में टेक्नोलॉजी का भी बहुत स्वीपिंग चेंजेस आए, और उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोविजंस थे जो कि रिडंडेंट और ऑब्सोलीट लगने लगे, और हमें ज़रूरत लगी कि आज के युग के साथ उनको भी आगे बढ़ाया जाए। और कुछ चुनौतियां रहीं हमारे एमएसएमई क्षेत्र में जो हम अनुभव कर रहे थे पिछले कुछ वर्षों में, उनसे भी निपटारा करने के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि हम एक्ट के प्रोविजंस के अंदर प्रावधानों में अमेंडमेंट करें। इसी के चलते ये चेंजेस इस बार लाए गए हैं, और जैसे आपने कहा, 3 अगस्त को राज्यसभा से और 7 अगस्त को लोकसभा से हमारा एमएसएमई बिल पारित हुआ है।
0: कई सारी चुनौतियों के समाधान को खोजने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। एक एक करके अगर आपसे समझना चाहें तो मध्यस्थता के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है कि अगर कोई भी समस्या होती है तो पहले मध्यस्थता में उसे भेजा जाएगा, जिसे मीडिएशन भी कहते हैं, और 90 दिन एक समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन फैसिलिटेशन सेंटर्स के पास अभी भी हजारों की समस्याएं पेंडिंग है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या राज्यों के साथ मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, कोई एक कार्यप्रणाली बनाई जा रही है जिससे 90 दिनों की समय सीमा के अंदर उस मामले को निपटारा किया जा सके?
1: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र के अंदर पेमेंट्स का डिले होना एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। छोटे सप्लायर्स हैं जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम श्रेणी के सप्लायर्स हैं, और उनके लिए लिक्विडिटी बहुत क्रिटिकल रहती है। उनके लिए वर्किंग कैपिटल समय से उपलब्ध हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से वो खरीदारी करके अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि पेमेंट्स में विलंब हो जाता है। इसी के चलते प्रावधान पहले एक्ट में किया गया था कि डिलेड पेमेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए। हालांकि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के भी प्रावधान थे, लेकिन ये देखने में आ रहा था, पिछले वर्षों में अनुभव ये किया जा रहा था कि इसमें उसके बावजूद, इन प्रावधानों के बावजूद विलंब हो रहा था। तो इस नए संशोधन के अंदर एक तो ये तय किया गया है कि हर चीज़ की अपनी समय सीमा हो, और उस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले प्रयास ये हो कि जो सप्लायर है और जो ऑर्डर प्लेस करता है, उन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल नेगोशिएशन और डिस्कशन से भी मामला सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है छोटे सप्लायर के ऊपर, उनका भी बड़ा लंबे समय तक एक रिश्ता बन जाता है आपस में, तो वो चाहते भी नहीं कि कोई डिस्प्यूट हो, और प्रयास भी सबसे पहले यही होता है कि उसको आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर वो निपटारा नहीं हो पाता और किसी वजह से उसमें डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है, तो मीडिएशन के लिए समय निर्धारित किया गया कि वो 90 दिन के भीतर भीतर किया जाए, और अगर मीडिएशन में भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो 30 दिन के अंदर अंदर उसके लिए आर्बिट्रेशन में मूव किया जाएगा, और आर्बिट्रेशन में आने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। तो ये जो समय सीमा है, इसको एक्ट में ही निर्धारित किया गया है। प्रयास ये है कि बहुत ज्यादा विलंब इन डिस्प्यूट्स के अंदर भी ना हो। आपका कहना सही है, जो MSEFCs हैं जहां पर फैसिलिटेशन काउंसिल्स के अंदर ये डिस्प्यूट्स आती हैं, उनमें कई समय तक कई बार डिलेज भी हो जाते हैं चूंकि प्रोसेस उनके लंबे होते हैं, तो प्रोसेस को भी सरल किया गया है चूंकि अब प्रावधान किया गया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। तो एक ODR पोर्टल है हमारा जो पिछले साल हमने लॉन्च भी किया था, उसमें हमारा जो सेलर और परचेजर दोनों उस पर रहेंगे और पहले प्रयास करेंगे कि आपसी बातचीत से हो जाए, नहीं होगा तो उसी के माध्यम से मीडिएशन के लिए जाएगा और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी। अपने घर

0: के या एंटरप्राइज के कंफर्ट में बैठ करके कहीं फिजिकली दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो पाएगी और आर्बिट्रेशन का काम भी ऑटोमेटिकली वहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं इस समय सीमा को निर्धारित करने से इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में और आसानी होगी और जो पेमेंट्स समय से नहीं हो रही थी वो समय से होने लगेंगी, डिलेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे।
1: थोड़ी चर्चा अगर ट्रेड्स की कर लें इस बिल पर, ट्रेड्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, उसको बहुत अहमियत दी गई है। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए हम बता दें कि मान जाइए कि आपने ए साथ आपकी डील हुई, वो डील 25 करोड़ रुपए की है। ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने वहां पर अपनी इनवॉइस जेनरेट की, किसी दूसरी कंपनी को लगता है कि वो 24 करोड़ रुपए आपको अभी तत्काल दे सकती है, बायर के पैसे 2 सालों के बाद आएंगे तो उसको 25 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन हमने अपना पैसा लगाया है तो हम 24 करोड़ में अगर सेटल होना चाहें तो वो हम सेटल हो सकते हैं। ये ट्रेड्स की खासियत है इनवॉइस सेटलमेंट के लिए, इसको कैसे प्रभावी बनाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से?
0: देखिए, ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, सप्लायर के लिए, परचेजर के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तीनों के लिए। और जैसे आपने बड़े सरल रूप से बताया, ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है 2017 में आरबीआई ने शुरुआत की थी और शुरुआती दौर में इस पे ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती थी। रादर मैं ये कहूंगा 2021-22 में भी हम तकरीबन 40,000 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे, जो पिछले वर्ष में 2025-26 में बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज हमारी ऑनबोर्ड कर रही हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। इस नए संशोधन के अंदर जितने हमारे केंद्रीय उपक्रम हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि जितने भी एमएसएमई से संबंधित पेमेंट्स हैं उनको ट्रेड्स के माध्यम से इनवॉइसेस को वहां पर रेज किया जाए ताकि उनकी पेमेंट्स ट्रेड्स के माध्यम से की जा सके। तो इसके चलते काफी आराम हमारे एमएसएमईज को मिलेगा, क्योंकि कई बार उनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता था, उसके चलते वो आगे रॉ मटेरियल की खरीद नहीं कर पाते थे, तो उसमें उनको आसानी होगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बेझिझक आगे बढ़ेंगी। तो अभी तक ट्रेड्स का एक्ट के अंदर प्रावधान नहीं था, अब उसकी एक बाकायदा स्टैट्यूटरी बैकिंग है और जो एक सिर्फ नोटिफिकेशन से चल रहा था उसका एक्ट में प्रावधान किया गया, सीपीएससीज को मैंडेट दिया गया कि वो इस पर ऑनबोर्ड भी हों और इसके माध्यम से करें और उसके साथ साथ वो उसकी पब्लिक डिस्क्लोजर भी करेंगी कि हमारे इन इन एमएसएमई से संबंधित जो इनवॉइसेस थी वो रूट की गई ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पीरियड के दौरान, तो वो भी करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा।
1: यहाँ एक छोटा सा सवाल और उठता है कि बड़े कॉरपोरेट्स घरानों को ट्रेड्स तक लाने के लिए क्या एमएसएमई मंत्रालय के पास कोई योजना है या उस पर काम किया जा रहा है?
0: देखिए, जहां तक केंद्रीय उपक्रम है उनके लिए तो अब एक्ट में ही प्रावधान हो गया। हमारे 291 इस समय केंद्रीय उपक्रम है और ये सब उपक्रम अब ट्रेड्स के माध्यम से ही करेंगे। जहां तक प्राइवेट इंडस्ट्री है, 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले उपक्रमों को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ट्रेड्स के माध्यम से करें और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस नए संशोधन के अंदर प्रावधान ये किया गया है कि वो भी चाहें तो अपने स्टेट के जो उपक्रम हैं उनको भी मैंडेटरी कर दें ट्रेड्स के माध्यम से ऑपरेट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ पूरा इकोसिस्टम जब इसका बेनिफिट उठाएगा तो हमारे एमएसएमईज के लिए ये व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी और लिक्विडिटी क्रंच जो अक्सर वो फेस करते हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा।
1: एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि कोई भी जो उद्यमी है अगर उसने बायर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन की है और उसके पक्ष में वो निर्णय आता है, लेकिन बायर चूंकि मजबूत होता है, उसके पास आर्थिक ताकतें ज्यादा होती हैं, वो कोर्ट में उस मामले को ले जाता है और फिर वो मामला काफी लंबा खींचता है। जो छोटा उद्यमी है जिसने अपना पैसा लगाया है, जिससे उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वो सैलरी दे पाएगा, जो रॉ मटेरियल्स लाया है उसका भुगतान कर पाएगा, ऐसे में जो कोर्ट में लंबा मामला खींच रहा है, क्या इस बिल में उसके लिए प्रावधान है?
0: इसके लिए भी बड़ा प्रभावी प्रावधान किया गया है। अगर कोई डिक्री या अवार्ड को अपील के अंदर चैलेंज किया जाता है तो उस अवार्डेड राशि का 75% अनिवार्य है कोर्ट के पास जमा करवाना। अब उस राशि में से कोर्ट्स को ये एम्पावर किया गया है कि अवार्डेड अमाउंट का 50% राशि वो उसको तुरंत जारी करवा सकते हैं एमएसएमईज के फेवर में अगर कोई अपील 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है। एक समय सीमा आ गई 6 महीने की, अगर 6 महीने से ज्यादा कोई अपील लंबित रह जाती है तो कोर्ट्स 50% राशि अवार्डेड अमाउंट की उस एमएसएमई को तुरंत जारी कर देंगे ताकि विलंब अगर होता भी है तो भी 50% राशि तो उसको मिली गई फैसला होने तक, बाद में बाकी भी मिल जाएगी। ये नया प्रावधान इस संशोधन में लाया गया है।
1: एक और प्रावधान किया गया है उद्यम पंजीकरण पोर्टल का, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए, जो

0: वो लोग एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से ये सहायक होने वाला है?
1: देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि उद्यम पोर्टल पर या अन्य कहीं पर पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। यही प्रावधान एक्ट में भी किया गया है और उद्यम पोर्टल पर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है इसकी। इसमें उद्यम पोर्टल हमने लॉन्च किया था 2020 के अंदर और धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन काफी हुई, क्योंकि पहले अक्सर ये देखा जाता था कि एंटरप्राइजेस इनफॉर्मल क्षेत्र में तो कई साल काम करते थे लेकिन फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बनते थे। शायद इस बात से भी घबराते हों कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा और परेशानी आने लगेगी। तो सरकार ने बड़े प्रयासों के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर कंप्लायंस बर्डन भी कम किया। इसके भी चलते प्रेरित हुई एंटरप्राइजेस की हम फॉर्मल रूप से अपना पंजीकरण करवाएं और मैं ये समझता हूं इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई पिछले कुछ वर्षों में। 1.65 करोड़ हमारे एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम में थे आज से 4 साल पहले और आज हमारी संख्या 9 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। तो ये तभी संभव हो पाया जब उनको लगा कि ये इससे उनको लाभ मिलेंगे, सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसका भी वो लाभ उठा पाएंगे, तो आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। अब चूंकि उद्यम पोर्टल का प्रावधान एक्ट में ही किया गया है तो ये फॉर्मलाइजेशन की हमारी जो कैंपेन है ये और बेहतर रूप से चलेगा और इसमें हम सैचुरेशन प्राप्त करेंगे।
0: आपने अभी कैंपेन का जिक्र किया, ये नए प्रावधान से एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को रूबरू कराने के लिए किस तरह के कैंपेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में सोचा जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कई सारे मंत्रालय एक्सपोज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार करते हैं और जहां पर बहुत सारे छोटे बड़े उद्यमियों को मिलाकर विशेषज्ञ उनको बारीकियां समझाते हैं, क्या इस तरह की भी कोई योजना है?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया इससे पहले भी फील्ड में हमारे बहुत अच्छा एंगेजमेंट रहा सभी एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, इंडस्ट्री के लोगों से, उन्हीं से ये फीडबैक लेकर के उन्हीं के सुझावों के आधार पर ये प्रस्ताव तैयार किया गया और अब चूंकि बिल पारित हो गया है आने वाले समय में हम एमएसएमईज के साथ डायरेक्टली एंगेज करके उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करेंगे। हमने अभी तकरीबन 5 करोड़ मैसेजेस एक ही दिन में सभी एमएसएमईज को डायरेक्टली भी भेजे हैं, ईमेल्स भी भेज रहे हैं और एसोसिएशंस के माध्यम से भी हम उन तक ये सारे प्रावधान जो नए हैं उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो पूरा इसका लाभ उठा सके।
0: सचिव साहब, एक और यहाँ पर एक जो पेच समझ में आता है वो ये है कि जो रिकवरी का मामला है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी राज्यों की होती है, ऐसे में एमएसएमई मंत्रालय राज्यों के साथ किस तरीके का संगठनात्मक समन्वय की स्थिति बना रहा है जिससे रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सके?
1: देखिए, समन्वय तो इसमें हमेशा राज्यों के साथ रहता ही है लेकिन इस संशोधन के अंदर एक एक्ट में भी प्रावधान किया गया है, अगर कोई सेटलमेंट होता है मीडिएशन के आधार पर या आर्बिट्रेशन के बाद कोई अवार्ड होता है तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी घोषित किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने नॉर्मली जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होते हैं उनको अधिसूचित किया गया होता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर करने के लिए, वो प्रावधान भी पहली बार इस एक्ट में किया गया है ताकि कोई अमाउंट अगर ड्यू है तो वो अनरिकवर्ड ना रह जाए, उसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए ये भी प्रावधान किया गया है। और ये हमें राज्यों से ही फीडबैक भी आया, राज्य सरकारों से, और मैं ये समझता हूँ ये जो प्रावधान है ये आने वाले समय में और प्रभावी रूप से काम कर पाएगा।
0: एक और इसमें व्यवहारिक बदलाव किया गया है, पहले अगर कोई उद्यमी जो है वो छोटी मोटी गलती कर देता था या चूक कर देता था उसके लिए जेल या जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन इसमें उसको हटाकर वार्निंग की व्यवस्था की गई है, क्या इससे वो जो इंस्पेक्टर राज वाला कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त करके एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस देने की सोच है?
1: देखिए, डीक्रिमिनलाइजेशन और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर पूरी केंद्र सरकार में आप देख ही रहे हैं सभी एक्ट्स के अंदर बदलाव लाया जा रहा है। हमारा जो ये एक्ट है इसमें जेल का प्रावधान तो खैर नहीं था लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस जरूर था, क्योंकि उसमें कन्विक्शन बेस्ड पेनल्टी थी कि कोर्ट के माध्यम से कन्विक्शन होगा और फिर उस पर पेनल्टी लगेगी, उसको अब सरल कर दिया गया है। उसमें ग्रेडेड फाइन, जो ग्रेडेड पेनल्टी का प्रावधान किया गया है और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसका डिसीजन लिया जा सकता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पहले कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, किसी कारणवश नासमझी की वजह से कोई लैप्स होता है तो पहले इंस्टेंस पर वार्निंग देने का प्रावधान है, दूसरे इंस्टेंस पर पेनल्टी लगेगी वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर 1,000 से 50,000 के बीच में, और अगर उसके बाद भी वो करता है तो तो पेनल्टी के अमाउंट बढ़ जाएगी, लेकिन कन्विक्शन के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए हमने डेवलपमेंट

0: कमिश्नर को एडजुडिकेट करने के लिए अधिकृत किया है, और अगर उसमें भी अगर कोई अपील करना चाहे तो वो सचिव के पास अपील भी कर सकता है, उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो मैं ये समझता हूँ ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये ट्रस्ट के आधार पर काम करने के लिए बनाया गया है।
1: एक और व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि जब भरोसा दिया जा रहा है, और आपने शुरू में भी कहा कि चूंकि 20 वर्षों में तकनीक बहुत बदल गई इसलिए इस संशोधन बिल की जरूरत आन पड़ी, आज का जमाना AI का जमाना है, क्या इस बिल में तकनीक को लेकर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे समस्याओं को सुलझाने को लेकर भी कोई प्रावधान है या कोई चर्चा है?
0: देखिए, जो हमारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पोर्टल है वो नया पोर्टल बना, बहुत ही रोबस्ट है, और उसमें सारा जो प्रक्रिया है वो उस पोर्टल के माध्यम से हो रही है। उसमें AI भी मदद करेगा ड्राफ्ट करने में भी, कि आपने कोई डिस्प्यूट है उसको ड्राफ्ट करना है, वो भी AI भी मदद करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मीडिएशन के अंदर, आर्बिट्रेशन के अंदर भी AI का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी, जो कि मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के अच्छे यूजेज को दर्शाता है। और जो MSCFCs हैं हमारी, जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स है, उनके कार्य में भी और ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि वो भी अपने पुराने फैसलों का अध्ययन कर पाएंगे, सब तरह के केसेस का एक साथ निपटारा करना भी उनके लिए सरल हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग पोर्टल के अंदर किया जा रहा है, उसके साथ ही जो उद्यम पोर्टल है उसमें भी टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया है। आज हम बड़ी सरल रूप से बता पाते हैं कि हमारे कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने मीडियम हैं, किस सेक्टर में कितने हैं, किस राज्य में, किस जिले में, कितने महिलाओं के हैं। ये सारी जो सेग्रीगेशन है, ये सारा जो एनालिसिस है, ये हम कुछ सेकेंड्स के अंदर कर पाते हैं, और ये एनालिसिस हमें मदद करता है नीतियां निर्धारित करने में, नई योजनाओं को प्लान करने में। तो मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीजें और सरल होती जा रही।
1: आकाशवाणी से युवाओं का एक बड़ा वर्ग हमेशा से जुड़ा रहा है, उनके जहन में जरूर एक सवाल उठ रहा होगा कि अब तक बहुत सारे हाथों को रोजगार देने का काम किया है MSME ने, क्या इस नए बिल से रोजगार के अवसरों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है?
0: देखिए, हमारे देश में MSME का रोजगार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और कृषि के बाद ये दूसरा क्षेत्र गिना जाता है रोजगार के टर्म्स में, तकरीबन 38 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में हमारे MSMEs जो हैं ग्लोबल वैल्यू चेन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं, और ये तभी संभव है जब उनमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, उनमें इनोवेशन रहेगी। तो नवाचार में सबसे ज्यादा योगदान युवा पीढ़ी का रहता है। हमारी MSME चैंपियंस योजना के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम इनोवेशन के लिए हमारी युवा पीढ़ी को इंसेंटिवाइज करें, उनको प्रेरित करें, और वो अपनी क्वालिटी को भी इंश्योर कर पाएं, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ला पाएं, और अलग अलग प्रोडक्ट चेन के अंदर किस प्रकार से वो एक इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाएं, Tier 2 और Tier 3 वेंडर से बढ़ करके पूरी वैल्यू चेन संभाल पाएं और स्केल अप करें अपने एंटरप्राइज को। आज भी हमारे MSME क्षेत्र में 98% माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, तो हमारा प्रयास है फॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्केलिंग अप करें, माइक्रो बढ़ करके स्मॉल बने, स्मॉल बढ़ करके मीडियम बने, मीडियम के बाद लार्ज एंटरप्राइजेस बने। तो ये स्केलिंग करने में इनोवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और मैं ये समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत इसमें रुचि भी रखती है। पहले वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान रहता था, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढे वो खुद रोजगार देने के लिए तैयार है, और स्कूल कॉलेज के अंदर ही प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार से अपना एंटरप्राइज खोलें और लोगों को रोजगार दे पाए।
1: आपने अभी बात की एक सपने की, उस आपकी बात में एक सपना छिपा था कि छोटे से बड़े स्तर तक अपने कारोबार को लेकर जाने की। आपने बात की कि ग्लोबल स्तर पर अपने प्रोडक्ट की अहमियत को बनाने की, लेकिन इसमें एक जो बड़ी भूमिका है वो आपके स्किल सेट की होती है, कौशल विकास की होती है। क्या MSME जो दूर दराज के छोटे शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ के उद्यमियों को स्किल बढ़ाने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए किसी कार्यक्रम पर, किसी योजना पर काम कर रहा है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्किल अपग्रेडेशन है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, खासतौर पे युवाओं के लिए, और हमारे मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं हैं इसको लेकर के। एक तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, हमारे 55 टेक्नोलॉजी सेंटर्स देश भर में बन रहे हैं, और इसमें से 35 ऑलरेडी फंक्शनल हैं, कुछ बाकी अभी बन रहे हैं। इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन दिया जाता है, और हाल ही में इसमें ऐड की गई हैं रोबोटिक्स, AI, IoT, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज जिसमें हमारे सक्षम बन रहे हैं युवा। उसके साथ ही साथ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट योजना भी है, जिसके माध्यम से

0: वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है पूरे देश भर के अंदर, और हम दूसरे जो मंत्रालय हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उनके साथ कॉन्वर्जेंस करके भी हम कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान देते हैं।
1: इस बिल में क्लासिफिकेशंस की भी थोड़ी चर्चा है, इस बारे में भी बताएं।
0: देखिए, पहले क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर अंतर रखा जाता था और अब वो खत्म हो गया 2020 के अंदर, जब हमने कहा कि चाहे वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग में लगा हो या सर्विसेज में कार्यरत हो उसके क्राइटेरिया सिमिलर होंगे, और उसी से ट्विन क्राइटेरिया लाया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट आधार रहता था, अब कितना निवेश किया गया प्लांट एंड मशीनरी में और कितनी उसकी टर्नओवर है, इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन की जाती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम के अंदर। तो अब इसको बकायदा एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया, चूंकि ये पहले सरकार की नोटिफिकेशन के माध्यम से तो किया गया था लेकिन अब ये एक्ट का हिस्सा बन चुका है कि ये ट्विन क्राइटेरिया को फॉलो करके क्लासिफिकेशन की जाएगी। उसकी सीमा कितनी होगी वो समय समय पर सरकार निर्धारित करती रहेगी। जैसे आप जानते हैं 2025 के अंदर पिछले वर्ष ही इसकी जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया था। आज के समय में 125 करोड़ तक के निवेश और 500 करोड़ तक का जो टर्नओवर है वो एमएसएमई क्षेत्र को डिफाइन करता है, तो इसमें पिछले वर्ष ही बढ़ोतरी की गई थी। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में और ज्यादा एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे डेफिनेशन में बदलाव आने के कारण।
1: सचिव साहब, कोई अगर बैंक से लोन लेता है एमएसएमई के तहत, लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अगर वो 6 महीने या निर्धारित समय में वो वापस नहीं कर पाता है तो जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई गई है इस बिल में उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है, उसमें भी कोई जोड़ घटाव किया गया है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर?
0: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और क्रेडिट इन्फ्यूजन इस क्षेत्र में काफी बढ़ा भी है। 2014 में तकरीबन 10 लाख करोड़ का क्रेडिट था इस क्षेत्र को, जो आज के समय में तकरीबन 38 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है, और ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने क्रेडिट गारंटी को बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी, और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जब बैकिंग मिली बैंक्स को तो उनका भी विश्वास और बेहतर हो गया, और बैंक्स ने यह भी अनुभव किया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार गिरते आए हैं इस क्षेत्र के अंदर। हमारा परसेप्शन पहले ये रहता था कि जो छोटा उद्योग है वो शायद डिफॉल्ट करेगा, लोन वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी आई पिछले वर्षों में, और ये जब बैंकों ने अनुभव किया तो वो और ज्यादा प्रेरित हुए क्रेडिट बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट का आने वाले समय में और ज्यादा भूमिका बढ़ेगी और बैंक्स जो हैं प्रेरित होंगे और बेहतर रूप से क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे उद्यमियों को।
1: एक थोड़ा अलग सा सवाल जहन में आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत में जीआई टैग्स भी मिले हैं, बहुत सारे शहरों की अपनी खासियत है, जैसे हम बनारस की बात करें तो वहां बनारसी साड़ियों की खासियत है, कहीं का दाल काफी फेमस है, कहीं के मसाले बहुत फेमस हैं। क्या मंत्रालय का कोई यूनिट उन छोटे शहरों में जहां कुछ विशेष चीजें बनती हैं वहां पर किसी को सिलेक्ट करता है या वहां कोई कैंप का आयोजन करता है कि यहां की ये खासियत अगर आप इसको लेकर कुछ करना चाहते हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात है, वोकल फॉर लोकल की भी बात है, अगर आप इसको लेकर कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो मंत्रालय आपको विशेष योगदान देगा या आपको सपोर्ट करेगा?
0: देखिए, DPIIT जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और GI टैग को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो GI टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना आवेदन करने के लिए और GI सर्टिफिकेशन लेने के लिए अगर MSMEs सामने आते हैं तो उसमें हम लोग भी अपने MSME चैंपियंस स्कीम के तहत उनको इंसेंटिव्स प्रदान करते हैं, और इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ वर्षों में। बिकॉज कुछ साल पहले तक शुरुआती दौर में तो बहुत ही कम GIs थे, लेकिन पिछले सालों में आज हम करीब 800 के करीब GIs ऑलरेडी देश में रजिस्टर्ड हैं, और आने वाले समय में भी हमने MSME चैंपियन स्कीम में ये प्रावधान रखा है कि GI लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लगभग 100% इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं अपने मंत्रालय के माध्यम से।
1: ये जो बिल आया है क्या इसमें कोई नेशनल डैशबोर्ड बनाने की भी कोई पहल की गई है जिससे कि रियल टाइम जो लोकेशन है मामलों के निपटान की उसको लेकर कोई प्रावधान है जो कि आसानी से बायर भी देख सके उद्यमी भी देख सके?
0: देखिए, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल के बारे में बताया, ये एक ऐसा पोर्टल रहेगा जो कि देश भर में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और ये इंटीग्रेटेड पोर्टल रहेगा, तो इसमें बायर और सेलर दोनों रहेंगे और साथ ही साथ MSEFCs भी इसमें ऑपरेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें काफी कमी आने की संभावना है, ये हमारी सोच है।
1: 2047 भारत विकसित भारत बने, ये सपना प्रधानमंत्री का है और हर भारतीय चाहता है कि जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करें तो एक विकसित भारत का निर्माण हो।

0: सके। ये जो बिल है, और एमएसएमई चूंकि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि 30% जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी 30% से थोड़ी ज्यादा ही है, क्या लगता है इस बिल के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
1: देखिए, मैं ये समझता हूँ विकसित भारत 2047 के संदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और अधिक बढ़ेगी आने वाले सालों में। आपने सही कहा कि आज के समय में भी जीडीपी में 31% हमारा योगदान है और निर्यात में 48% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये तकरीबन 40% जीडीपी का बन जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी हम 60% के करीब पहुंचेंगे। तो इन प्रयासों को ध्यान में रखकर, इस विजन को ध्यान में रखकर के ही हम अपनी योजनाओं को भी और बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो एमएसएमईज हैं वो स्केल अप करें और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों ताकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकें, और उसके लिए हम उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों, बेहतर गुणवत्ता के हों, तभी वो ग्लोबल मार्केट्स में पहुंच पाएंगे, उसमें भी उनको हम सहायता प्रदान करेंगे। और साथ ही जो प्रोसेसेस हैं वो सस्टेनेबल हों, कम लागत के हों, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों, उसकी ओर भी हमारी कुछ स्कीम्स हैं एमएसएमई चैंपियंस के तहत, जिसको अब हम और आगे प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे।
0: आपको बहुत सारे छोटे उद्यमी या फिर मध्यम उद्यमी सुन रहे हैं या वैसे युवा भी सुन रहे हैं जो भविष्य में एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे उन्हें आप?
1: देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि ये क्षेत्र और आगे बढ़े, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं वो ये विजन रखें कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, स्केल अप करें, और जो युवा सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ कर के भविष्य में क्या करना है, वो बजाय इसके कि नौकरियां ढूंढें, बेहतर है कि अपना खुद का एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इनोवेशन लेकर के आएं और प्रयास करें और रोजगार प्रदान करें, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढें, रोजगार प्रदान करें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी से,
0: ये नया भारत है, नए भारत में नई संभावनाएं होती हैं और उन संभावनाओं को संभव बनाना जीवन की भी सच्चाई है और साथ ही साथ सरकार का भी दायित्व बन जाता है। सरकार ने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए और खासकर ऐसे एमएसएमई क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए इस बिल में कई प्रावधान किए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की हमारे साथ भरत खेड़ा ने, और उम्मीद है कि एमएसएमई क्षेत्र आने वाले वर्षों में और तरक्की करेगा। भरत जी, आकाशवाणी में बात करने के लिए और विस्तार से इस अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद आनंद जी।
2: अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है।
4: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस गीत को लिया फिल्म घर से, आवाज लता मंगेशकर की।

0: अभी सुन रहे थे आप लता मंगेशकर को फिल्म घर में। गीत गुलजार का था, संगीत खय्याम का, और आई सुने कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक अनु मलिक शंकर महादेवन के स्वर में फिल्म घातक से। संगीत राहुल देववर्मन का, शब्द अनु मलिक के।
1: हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद

अभी आपने सुना अलका याग्निक, अनु मलिक और शंकर महादेवन को फिल्म घातक में। गीत अनु मलिक का था, संगीत राहुल देव वर्मन और साथियों का। और ये सुने फिल्म बंटी और बबली से ये अगला गीत शब्द। स्वर इस गीत में अलीशा चुनाव, शंकर महादेवन और जावेद अली का।

0: गीत गुलजार का, संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: Damn.

अभी आप सुन रहे थे फिल्म भूल भुलैया में नीरज श्रीधर को, और अगला गीत सुखविंदर सिंह, सत्या हिंदुजा और साथियों के स्वर में फिल्म फैशन से। संदीप नाथ के गीत को संगीत दिया सलीम सुलेमान ने।

अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों को फिल्म फैशन में संदीप नाथ के गीत को संगीत दिया सलीम सुलेमान ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 10:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। आप सुनेंगे इनसे बांसुरी पर बजाया राग मालकोस। तबले पर संगत कर रहे हैं आपके साथ अरिंदो चटर्जी।

अभी आपने सुना पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन जो राग मालका उसमें निबद्ध था। तबले पर संगत कर रहे थे अरिंदो चटर्जी। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जैसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की

0: लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देशभर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of